मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 4 जुलाई सन 2026, प्रातः के 5:58 और 50 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की ये प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव 314.47 मीटर पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6 बजे हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज।
2: प्राइम मिनिस्टर विल आल्सो बी विजिटिंग
3: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे बालतोरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। वे चुरू साधुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 125A के 4 लेन वाले हिस्से को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सानंद जाएंगे, जहां वे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। ये देश की शुरुआती आधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाइयों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया की यात्रा पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि E20 यानी 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में

0: शामिल हुए। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले जा रहे राउंड ऑफ 32 के मैच में अर्जेंटीना और कार्बो वर्डे 3-2 गोल की बराबरी पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:05 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना शनिदेव। क्योंकि आज श्रोताओं शनिवार है तो बात करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत भी करते हैं शनिदेव के इस भजन के साथ, क्योंकि शनिदेव किसी के साथ अन्याय नहीं करते, वे केवल हमारे कर्मों का हिसाब रखते हैं। अच्छे कर्मों का फल देर से भले मिले, क्योंकि श्रोताओं शनिदेव के न्याय में अंधेर कभी नहीं होता, देर भले हो सकती, क्योंकि शनिदेव ही कर्म फल दाता है। जो इंसान गरीब असहाय और बेजुबानों की मदद करता है उस पर शनिदेव हमेशा मेहरबान होते हैं।

श्रोताओं, दुनिया की सबसे सुरक्षित अगर स्थान की बात करें तो वो है ईश्वर की शरण, जहां पहुंचकर हर चिंता और हर डर खत्म हो जाता है। जब हम अपनी परेशानियां ईश्वर को सौंप देते हैं तो श्रोताओं, वो हमारी चिंताओं को सही समय पर चमत्कार में बदल देते हैं। ईश्वर पर बस हमें अटूट विश्वास रखने की जरूरत है, क्योंकि प्रार्थना शब्द नहीं बल्कि दिल का ईश्वर से सीधा संपर्क है, जिसे वो चुप होकर भी सुन लेते हैं।

आकाशवाणी नजीबाबाद से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। श्रोताओं, जब वाहेगुरु जी का हाथ हमारे सर पर है तो दुनिया का कोई भी तूफान आपका रास्ता नहीं रोक सकता। चिंताओं को वाहेगुरु जी के चरणों में छोड़ दें, और क्योंकि वो जो करेंगे हमेशा अच्छा होगा और भक्तों के लिए, हमारे लिए सब बहुत बढ़िया होगा।

श्रोतो, हम सब के प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, सादगी और उनकी रहमत से हम सब बखूबी वाकिफ है। जब जुबान पर नबी का नाम आता है तो दिल को एक अनोखा सुकून और रूह को पाकीजगी मिल जाती है।

श्रोताओं, भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना का समापन हम कर रहे हैं इस भजन के साथ। श्रोताओं, जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी पुकार ईश्वर सुनता है, और जिसका कोई नहीं होता उसके सहारा हमेशा भगवान ही बनते हैं। भगवान से जब भी मांगो तो उनकी मर्जी मांगो, क्योंकि हमारी पसंद अधूरी हो सकती है, लेकिन प्रभु की कृपा जब होगी तो अपार होगी।

इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार हैं सुरेश वाडकर और संगीत सतीश भाटिया का।

अवध के राज सिंहासन पर बैठना अस्वीकार करते हुए भरत ने अपने हृदय में धधकती जिस ज्वाला और पश्चाताप की व्यथा कथा गुरुजनों को सुनाई, उससे सबके हृदय में मर्मांतक पीड़ा के साथ एक आनंद का संचार भी हुआ। श्री राम के प्रेम रूपी अमृत से सने भरत के प्रिय वचन सभी के हृदय में दहकती राम विरह की ज्वाला को शांत करने वाले सिद्ध हुए। सबने भरत को मुक्त कंठ से श्री रामचंद्र के प्रेम की प्रतिमूर्ति मानकर उनके वन जाने के लिए सहमति प्रकट की। भरत के इस निश्चय से जैसे शोक सागर में डूबी अयोध्या नगरी को एक सहारा मिल गया। सबके हृदय में ऐसे आनंद का संचार हुआ जैसे मेघों की गर्जना से चातक और मोर आनंद विभोर हो उठते हैं। भरत का जीवन धन्य है, इस उद्गार के साथ सभी उनके शील और स्नेह की प्रशंसा करते नहीं आघाते।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का। गायक कलाकार थे सुरेश वाडकर और संगीत था सतीश भाटिया का। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है चिंतन।
1: भारत एक विशाल देश है। इतने बड़े देश में स्वाभाविकतया भिन्न भिन्न आचार विचार, वेशभूषा एवं धर्म का आचरण करने वाले तरह तरह के लोग भारत की इस विविधता का दर्शन कराते हैं। ऊपर से लगता है यहां विषमता है, पर अंतरंग में एक अखंड सांस्कृतिक एकता सदा से यहां चली आ रही है। भिन्नता में भी एकता है। इस एकता का आधार यहां के लोक जीवन की परंपराएं, देश की भौगोलिक स्थिति और सांस्कृतिक रीति नीतियां हैं। भारत में अनेक भाषाएं सदैव से बोली जाती हैं, किंतु इनमें भी एक भाषा सदैव प्रधान संपर्क भाषा रही है। प्राचीन काल में यह प्रधानता संस्कृत को मिली थी, अब इस राष्ट्रभाषा का स्तर हिंदी को मिला है। राष्ट्रभाषा का प्रयोग और प्रचार कार्य राष्ट्र निर्माण का कार्य है। श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ठीक ही कहा है, राष्ट्रभाषा सब उन्नति है, सब उन्नति को मूल। हिंदी साहित्य को बनाने वाले परोक्ष और अपरोक्ष रूप से विभिन्न भारतीय हैं, जैसे रहीम, मलिक मोहम्मद जायसी, सूर, तुलसी, औरंगटी वेंकटेश्वर, जी सुंदर रेड्डी, शंकर कुरूप, स्वाति तिरुनाल, गुरु नानक, सुनीत कुमार चटर्जी आदि। अतः हिंदी का पढ़ना, लिखना, सीखना और पढ़ाना दोनों ही कार्य हमारे राष्ट्रीय कर्तव्य हैं। अनपढ़ होना अज्ञानता का द्योतक है। इसे जीवन में जब भी दूर कर लिया जाए तभी ठीक है। प्रत्येक बालक और बालिका को स्कूल पढ़ने भेजना हर अच्छे मां बाप का कर्तव्य है। प्रौढ़ और वृद्ध स्त्री पुरुष भी अपने को साक्षर कर लें तो धर्म और ज्ञान की पुस्तकें पढ़कर वे अंतिम समय में भी जीवन उन्नत कर सकेंगे और अपनी संतानों को सन्मार्ग दिखा सकेंगे। उच्च आकांक्षाएं रखना मनुष्य का प्राकृतिक स्वभाव है। वह उच्च पद पर बैठना चाहता है और परिश्रम से बैठ भी जाता है। यहां उसका कर्तव्य समाप्त तो नहीं हो जाता बल्कि प्रारंभ होता है। जितना ऊंचा पद आसन होगा उसके वांछित कर्तव्य भी उतने ही अधिक और गंभीर होंगे। उनका पूर्ण सत्यता और निष्ठा से पालन करना ही ईश्वर सेवा है। दफ्तर के दैनिक कार्य में नियम और कानून पालन, हमारे आपसी रिश्तेदारियां जातिगत, धर्मगत अथवा राजनैतिक संबंधों से ऊपर हैं। किसी भी अनुचित दबाव में आकर कार्य करने से आत्मबल घटता है और अंत में दुख की प्राप्ति होती है। इससे आत्मिक संतोष, बल और कार्य कुशलता बढ़ती है, जिनसे जीवन सुखी और वैभवशाली होता है।
0: ये था आज का चिंतन। मीडियम वेव 314.47 मीटर पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:45 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम काव्यधारा। काव्यधारा के आज के संग में श्रोताओं, हम आपको सुनवा रहे हैं सुधीर कुमार शर्मा का ये पूर्व प्रसारित काव्य पाठ।
2: मेरी पहली रचना है पल पल में ढूंढे जिंदगी। पल पल में ढूंढे जिंदगी खुद अपने पांवों के निशान। पल पल में ढूंढे जिंदगी खुद अपने पांवों के निशान। गुजरी है किस किस मोड़ से, गुजरी है किस किस मोड़ से, हासिल किए कितने मकाम। खाई हैं कितनी ठोकरें, खाई हैं कितनी ठोकरें, और चूमे कितने आसमां। पल पल में ढूंढे जिंदगी, खुद अपने पांवों के निशान, खुद अपने पांवों के निशान। और इन लम्हों को, इन निशानों को मैंने तीन हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले पिछला कल, पिछले कल के इस साये में, पिछले कल के इस साये में, यादों के इस सरमाए में, पिछले कल के इस साये में, यादों के इस सरमाए में, चमके कुछ पल जुगनू से, हाँ चमके कुछ पल जुगनू से, कुछ लगते अब भी भरमाए से, कुछ लगते अब भी भरमाए से, छोड़ गए मन के पर्दे पर, यूं छोड़ गए मन के पर्दे पर, चंद लकीरें कुछ अरमा, पल पल में ढूंढे जिंदगी, खुद अपने पांवों के निशान, खुद अपने पांवों के निशान। और इसके बाद अगला कल, बदलते हालातों के कोहरे के उस पार कहीं, इस गिरगिट जैसे वक्त के एक मोहरे पर सवार कहीं, एक चिराग सा टिमटिमाता, एक चिराग सा टिमटिमाता कोई सपना, एक चिराग सा टिमटिमाता कोई सपना, क्या हो सकेगा, क्या हो सकेगा ये मेरा अपना, या लिखने बैठेगा ये भी, या लिखने बैठेगा ये भी कुछ आंसुओं की दास्तां, पल पल में ढूंढे जिंदगी, खुद अपने पांवों के निशान, खुद अपने पांवों के निशान। और आखिर में आता है हमारा आज, मगर ये है कहां, पिछले कल और अगले कल, पिछले कल और अगले कल, इन दो पार्टों के बीच कहीं, पिछले कल और अगले कल, इन दो पार्टों के बीच कहीं, अपना आज फंसा है जैसे, अपना आज फंसा है जैसे, बिछड़े मन का मीत कहीं, क्यों ना इसे मुट्ठी में कर लूं, क्यों ना इसे मुट्ठी में कर लूं, इसकी खुशबू सांसों में भर लूं, क्यों ना इसे मुट्ठी में कर लूं, इसकी खुशबू सांसों में भर लूं, इसकी सब बूंदों को पी लूं, इसकी सब बूंदों को पी लूं, इसके हर लम्हे को जी लूं, इसके हर लम्हे को जी लूं, यूं हाथ थाम कर हर पल का, यूं हाथ थाम कर हर पल का, बढ़ चले आज का कारवां, पल पल में ढूंढे जिंदगी, खुद अपने पांवों के निशान, खुद अपने पांवों के निशान। मेरी दूसरी रचना है धरती माँ की यथा। तुम खोज रहे इतिहास, तुम खोज रहे इतिहास, चीर कर मेरा सीना, तुम खोज रहे इतिहास, चीर कर मेरा सीना, मेरे अंतस्थल में क्या कभी बसाया मेरी व्यथा को तुमने अपने अंतर मन में, क्या पाओगे निष्प्राण पत्थरों के अवशेष में, क्या पाओगे निष्प्राण पत्थरों के अवशेष में, तुम ढूंढो मेरे राम को, तुम ढूंढो मेरे राम को, मेरे इस देश में, मेरे इस देश में, ढूंढो उसको संस्कार में, ढूंढो उसको संस्कार में और चरित्र में, कहीं मिले तो, ढूंढो उसको संस्कार में और चरित्र में, और कहीं मिले तो किसी मनीषी विश्वामित्र में, मनीषी विश्वामित्र में। निर्दोष अहिल्या को जहां पर अभयदान मिलता है, और निर्वासित निष्पाप जानकी, निर्वासित निष्पाप जानकी को सम्मान मिलता है, जानकी को सम्मान मिलता है। राम नहीं है देश घृणा के राहु केतु में, राम नहीं है देश घृणा के राहु केतु में, ढूंढो कोटि कोटि जन जन के, ढूंढो कोटि कोटि जन जन के प्रेम सेतु में, जन जन के प्रेम सेतु में, इस बैशीपन का भी क्या कोई, इस बैशीपन का भी क्या कोई मजहब होता है, इस बैशीपन का भी क्या कोई मजहब होता है, इस नफरत पागलपन का भी, इस नफरत पागलपन का भी कुछ मतलब होता है, तुम जियो दूसरों को भी जिंदा रहने दो, तुम जियो दूसरों को भी जिंदा रहने दो, तुम कहो बात अपनी, तुम कहो बात अपनी, दूसरों को भी कहने दो, दूसरों को भी कहने दो, मत बांधो विचारधारा को, मत बांधो विचारधारा को इन बांधों में, मत बांधो विचारधारा को इन बांधों में, नदी सा बहने दो, मत करो हवा को कैद बंद कमरों में, मत करो हवा को कैद बंद कमरों में, आजाद रहने दो, आजाद रहने दो, मत करो लाल इस तरह मुझे, मत करो लाल इस तरह मुझे यूं निर्दोषों के खून से, मत करो लाल इस तरह मुझे यूं निर्दोषों के खून से, बस हरा भरा रहने दो, बस हरा भरा रहने दो। मत करो चीर हरण मेरा, मत करो चीर हरण मेरा, मुझको यूं काट छाट कर। इतिहास के दुशासनों, इतिहास के दुशासनों, मैं तो मां हूं। मेरी गोदी को हरा, मेरी गोदी को हरा, मेरा ये आंचल भरा। मेरी गोदी को हरा, मेरा ये आंचल भरा, मेरा भूगोल बना रहने दो, मेरा भूगोल बना रहने दो। इतिहास की कड़वाहट को, इतिहास की कड़वाहट को सिर पर क्यों ढो रहे हो? इतिहास की कड़वाहट को सिर पर क्यों ढो रहे हो? अपने कल की राह में, अपने कल की राह में कांटे क्यों बो रहे हो? कांटे क्यों बो रहे हो? है लाल रंग ही प्यारा तो, है लाल रंग ही प्यारा तो सीमा पर जाओ। है लाल रंग ही प्यारा तो सीमा पर जाओ। लाल रंग से रचा रंगोली, नूतन इतिहास बनाओ, नूतन इतिहास बनाओ। और मेरी तीसरी रचना है, कुछ अनकहे सत्य, वो सत्य जिन्हें हम कह नहीं पाते, वो सत्य जिन्हें हम कह नहीं पाते, वो तथ्य जिन्हें हम सह नहीं पाते, वो सत्य जिन्हें हम कह नहीं पाते, वो तथ्य जिन्हें हम सह नहीं पाते। जाने कितने दर्द समेटे, ना जाने कितने दर्द समेटे, वो आंसू जो बह नहीं पाते, वो आंसू जो बह नहीं पाते। आशा की कितनी पंखुड़ियां, आशा की कितनी पंखुड़ियां खिलने से पहले बिखर गई, आशा की कितनी पंखुड़ियां खिलने से पहले बिखर गई। नन्ही सी कोई अभिलाषा, नन्ही सी कोई अभिलाषा झंझावातों से सिहर गई, झंझावातों से सिहर गई। और कुछ बचपन मुरझाए से, कुछ बचपन मुरझाए से अपना अल्हड़पन खो बैठे, कुछ बचपन मुरझाए से अपना अल्हड़पन खो बैठे। बन गए मुखोटे कुछ चेहरे, बन गए मुखोटे कुछ चेहरे और मन का दर्पण खो बैठे। हाँ, मन का दर्पण खो बैठे। ना जाने क्यों कैसे, ना जाने क्यों कैसे अक्सर, ना जाने क्यों कैसे अक्सर ऐसा ही होता है। है ना ये सब कड़वा सच, है ना ये सब कड़वा सच। हाँ, सच तो कड़वा ही होता है, सच तो कड़वा ही होता है। आखिर कब तक, आखिर कब तक, आखिर कब तक एक दिन तो इस अंधकार को मिटना होगा। आखिर कब तक एक दिन तो इस अंधकार को मिटना होगा। तू श्रम के कंकड़ उठा, तू श्रम के कंकड़ उठा, हाथ पर रेखाओं को खींचना होगा, हाथ पर रेखाओं को खींचना होगा। और मानव अपना भाग यहीं पर, मानव अपना भाग यहीं पर तुझको ही लिखना होगा। जो छुपा बीज में अंकुर बन, जो छुपा बीज में अंकुर बन, वो वृक्ष धरा पर दिखना होगा, वो वृक्ष धरा पर दिखना होगा। लगता तो है सपना सा, ये लगता तो है सपना सा, लेकिन ये भी सच होता है। ये लगता तो है सपना सा, लेकिन ये भी सच होता है। हो इच्छा शक्ति मन में तो हर एक प्रयास सफल होता है, हर एक प्रयास सफल होता है।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम काव्यधारा, और काव्यधारा कार्यक्रम के आज के इस अंक में आप सुन रहे थे सुधीर कुमार शर्मा का ये पूर्व प्रसारित काव्य पाठ। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:55 हुए हैं, कुछ ही पलों में आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे।
3: इयम् आकाशवाणी, सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका ऋचा झा। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य राजस्थान गुजरात राज्ययोः एकदिवसीय यात्रायै प्रस्थास्यति। प्रधानमन्त्री सर्वप्रथमं राजस्थानस्य यात्रां करिष्यति, यत्र असौ अद्य प्रातःकाले जोधपुर विमानपत्तनस्य नूतन टर्मिनल इति भवनस्य उद्घाटनं करिष्यति। 80+ 400 कोटि रूप्यकाणां इयं परियोजना वार्षिकं 20 लक्ष यात्रिणः संचालयितुं परिकल्पितमस्ति। असौ जोधपुरे संशोधित उड्डयन योजनायाः शुभारम्भोऽपि विधास्यति। अस्याः योजनायाः उद्देश्यं विमानन आधारित विकासस्य अग्रिमचरणस्य गतिं वर्धयितुमस्ति। एतदनन्तरं श्रीमोदी बालोतरा नगरस्य यात्रायां भविष्यति, यत्र असौ अद्य मध्याह्ने प्रायः 6,000,000,000,000,000 रूप्यकाणां विकास परियोजनानां लोकार्पणम् उद्घाटनम् आधारशिलाञ्च स्थापयिष्यति। श्रीमोदी राजस्थान प्रशासनस्य विभिन्न विभागेषु नियुक्तेभ्यः प्रायः 45 युवकेभ्यः नियुक्तिपत्राणि अपि प्रदास्यति। अनन्तरं सायंकाले प्रधानमंत्री मोदी गुजरातस्य यात्रां करिष्यति। पाकिस्तान देशात् सीमापारस्य भयोत्पादनस्य निरन्तर प्रयोजकत्वस्य प्रतिक्रिया रूपेण सिंधु जलसन्धि स्थगितः अस्ति। गतरात्रौ नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः सह वार्तालापं कुर्वन् विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः अवदत् यत् सिंधु जलसन्धि विषये भारतस्य स्थितिः सुसंगता अस्ति। सः अवदत् यत् पाकिस्तानदेशः सीमापारस्य भयोत्पादनस्य समर्थनं विश्वसनीयरूपेण अपरिवर्तनीयरूपेण च त्यक्तव्यम्। तीस्ता नद्याः समग्र प्रबन्धन पुनर्स्थापन परियोजनायाः विषये श्रीजायसवालः बांग्लादेशस्य विकास साहाय्यं प्रति भारतस्य दृष्टिः अपि प्रकटितवान्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः, कृषि कृषक कल्याण मन्त्री शिवराज सिंह चौहान च एल नीनो इत्यस्य कारणेन देशस्य केषुचित् भागेषु सामान्यात् न्यूनवृष्टेः तस्य प्रभावस्य च स्थितिं समीक्षितवन्तौ। श्रीशाहः सभायाम् अवदत् यत् एल नीनो इत्यस्य कारणेन देशस्य केषुचित् भागेषु सामान्यात् न्यूनवृष्टिं सम्भावित अनावृष्टेः स्थितिं च प्रशासनं निरन्तरं निरीक्ष्यमाणमस्ति। अद्यावधि सम्पूर्ण राष्ट्रिय राजधान्याम् 1,02,000 गणना प्रपत्राणि अंगीकृतानि। दिल्ल्याः मुख्य निर्वाचनाधिकारिणः कार्यालयस्य अनुसारं दिल्ल्यां मतदात्री सूच्यां विशेष गहन पुनरीक्षणस्यांशरूपेण प्रायः 14,000,033,00,000 प्रपत्राणि अधुना यावत् वितरितानि सन्ति। सम्प्रति दिल्ल्यां मतदात्री गणना प्रपत्राणां प्रतिगृहं वितरणं प्रचलति। अन्तिम मतदात्री सूची अक्टूबर मासस्य 7 दिनांके प्रसारयिष्यते। पुरुषाणां क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां भारत इंग्लैंड देशयोः मध्ये द्वितीया 20-प्रति20 अन्ताराष्ट्रिय स्पर्धा अद्य मैनचेस्टर इत्यत्र भविष्यति। स्पर्धा भारतीय समयानुसारं सायं 7 वादने प्रारप्स्यते। चेस्टर ले स्ट्रीट इत्यत्र वृष्टिकारणात् 5 स्पर्धानां श्रृंखलायाः प्रथमा स्पर्धा निरस्तीकृता आसीत्। तृतीया स्पर्धा जुलाई मासस्य 7 दिनांके नॉटिंघम इत्यत्र क्रीडिष्यते। ब्रिस्टल साउथहैम्प्टन इत्येते नगरे 20-प्रति20 अन्ताराष्ट्रिय श्रृंखलायाः अन्तिमयोः द्वयोः स्पर्धयोः आतिथ्यं करिष्यतः, यत् जुलाई मासस्य 11 दिनांके समाप्यते। एतदनन्तरं भारत इंग्लैंड देशौ त्रिस्पर्धानां एकदिवसीयाम् अन्ताराष्ट्रिय श्रृंखलां क्रीडिष्यतः। इति वार्ताः।

0: मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे, जिसकी कुल लागत 13,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन के निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल तक $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। गुजरात में आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने के लिए काम कर रहे थे। जांच में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन से फंडिंग का भी पता चला है। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरेटा ने कहा कि उन्होंने सरकार और भारतीयों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 7:05 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम में आज जानकारी का विषय है व्यायाम का महत्व।
2: व्यायाम हर किसी के जीवन में इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर हम बात करें बच्चों से, अगर शुरू करें तो बच्चों की जो ग्रोथ होती है, उनका जो डेवलपमेंट होता है, उसके अंदर व्यायाम का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो जो बच्चों की ग्रोथ होती है, आप देखेंगे कि जो बच्चे खेलने कूदने में ज्यादा लिप्त होते, ज्यादातर उन बच्चों की शारीरिक परिस्थितियां दूसरे उन सभी बच्चों से बेहतर होती है जो बच्चे खेल कूद में कम दिलचस्पी लेते हैं। अगर हम बात करें एक अडल्ट यानी कि एक पूर्ण रूप से एक जो व्यस्क होता है उसकी अगर हम बात करें, तो आजकल हम देखते हैं कि शारीरिक तनाव, मानसिक तनाव, ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जो आजकल के बिजी लाइफस्टाइल की वजह से, आजकल का जो लाइफस्टाइल है वो इतना ज्यादा बिजी हो गया है कि मानसिक तनाव बहुत ज्यादा हो गया। अब उसमें देखा जाए तो जो व्यायाम है, व्यायाम का हमारे शरीर के हार्मोनल सिस्टम पे कुछ इस तरह का प्रभाव होता है कि जो तनाव है वो बहुत ही कम हो जाता है। और शायद सभी श्रोताओं ने भी इस चीज का अनुभव किया होगा कि व्यायाम के बाद रात को जो नींद है वो और ज्यादा गहरी और शांतपूर्ण तरीके से आती है और आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं, आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। तो यही सब प्रभाव है व्यायाम। और इसीलिए आज के जीवन में अगर मैं बात करूं वृद्ध जनों की, तो वृद्ध जनों में एक बहुत ही आम समस्या है फॉल्स की। तो फॉल्स होता है कि उसके अंदर शरीर में कमजोरी की वजह से गिरना, आमतौर पे डिसबैलेंस की वजह से या फिर कहीं लड़खड़ाने की वजह से वृद्ध जनों का गिरना। तो उसमें भी अगर आप व्यायाम करते हैं तो आप अपने शरीर की उम्र और उसका बैलेंस बढ़ा के आप इन सब चीजों को रोक सकते हैं। व्यायाम वैसे बहुत तरह के होते हैं। सबसे पहले तो व्यायाम आप घरेलू तरीके से भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि अगर आपके शहर में या गांव में या घर के पास जो भी अस्पताल हो, वहां पे आजकल हर जगह फिजियोथेरेपी सेंटर्स खुल गए हैं, तो वहां पे आप अगर एक फिजिकल ट्रेनर या फिजिकल थेरेपिस्ट की मदद से उनके सुपरविजन में और उनके दिए गए निर्देशों के अनुसार अगर आप व्यायाम करते हैं तो वह व्यायाम सही माना जाता है। क्योंकि व्यायाम आपकी जो परेशानी है उसके हिसाब से भी होता है, इसके अलावा अपनी तंदुरुस्ती और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए भी होता है। तो आजकल जैसे बहुत सारी परेशानियां शुरू हो गई हैं, किसी को गर्दन में दर्द होता है, किसी को कमर में दर्द होता है, किसी को घुटने का दर्द है, उसके लिए अलग तरह के व्यायाम है। अगर कोई इंसान अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए व्यायाम करना चाहता है तो उसके लिए अलग तरह के व्यायाम है। एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल इसमें देना चाहूंगा। एक नॉर्मल रूप से जो चलना होता है हमारा, उसी चलने को अगर हम थोड़ा सा उसके अंदर स्पीड को बढ़ा के लगभग 20 से 30 मिनट तक अगर हम लगातार चलें, तो इस तरह का चलना जनरली लगभग हफ्ते में 4 या 5 दिन अगर कोई भी इंसान चलता है तो वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकता है। तो ये बड़ा ही आवश्यक है, बल्कि मैं कहूंगा कि हर किसी के लिए बहुत आवश्यक है, चाहे वो गांव में रह रहे हों, चाहे वो शहर में रह रहे हों, और खासकर जो शहर के लोग हैं। गांव के लोगों में ज्यादातर देखा गया है कि बहुत ज्यादा सुविधाएं ना होने की वजह से खेतों तक या शहर तक भी अगर उनको जाना है तो भी पैदल रास्ता उनको काफी नापना पड़ता है। तो इस वजह से गांव के लोगों में इस तरीके की परेशानियां कम पाई गई। गांव के लोगों में ज्यादा परेशानियां इसलिए आती हैं क्योंकि उनका जो खेती का कार्य होता है उसके अंदर उनको बहुत ज्यादा कमर झुका के काम करना पड़ता है। तो बल्कि हमारे अस्पताल में भी कुछ इस तरीके के मरीज ज्यादा आते हैं जिनकी कमर दर्द की समस्या होती है, जो बहुत ज्यादा कमर दर्द से परेशान होते हैं और वही दर्द उनके पैरों तक भी आ जाता है। तो इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आज की डेट में व्यायाम की आवश्यकता बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर किसी को है, गांव से लेकर शहर तक हर किसी को है। इस बात से फर्क बिल्कुल नहीं है कि कौन किस तरह का जीवन स्तर जी रहा है। फर्क इस चीज से पड़ता है कि क्या आपके जीवन में व्यायाम के लिए समय है, क्या आपके जीवन में व्यायाम के लिए महत्व है। अगर है तो आप एक सुलभ जीवन जी सकते हैं।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे ये जानकारी जिसका विषय था व्यायाम का महत्व। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। किसान भाई सुने खेती की बातें। इस कार्यक्रम में श्रोताओं आज जानकारी का विषय है धान की रोपाई और सावधानियां।
3: किसान भाइयों खेती की बातें कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों खेती की बातें कार्यक्रम में आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं धान की रोपाई और सावधानियां विषय पर। किसान भाइयों खरीफ का मौसम शुरू हो चुका है और अब वर्षा काल भी आरंभ हो गया है, तो किसान भाइयों हमें धान की रोपाई करनी है और धान की रोपाई करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है, तो इसके लिए किसान भाइयों सबसे पहले हमें अच्छे तरीके से खेत को तैयार करना है। खेत में पानी भरने के बाद हमें रोटावेटर चलाकर उसकी कदर काटनी है, पडलिंग करनी है, कादल काटनी है और किसान भाइयों फिर हमें पाटा लगाकर, यानी कि जिसे हमारे किसान भाई गहना भी बोलते हैं, गहना लगाकर पाटा लगाकर हमें मिट्टी को समतल करना है, इकसार करना है और जो घास फूस उसमें आती है उसे हमें बाहर निकालना है। किसान भाइयों रोपाई के समय खेत में पानी की मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए। खेत में केवल पर्याप्त गारा कीचड़ या हल्का पानी लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर ही रहना चाहिए। रोपाई के शुरुआती 15 से 20 दिनों तक खेत में लगभग 5 सेंटीमीटर से अधिक पानी नहीं होना चाहिए। किसान भाइयों जब हम खेत में पडलिंग करते हैं, कदर काटते हैं और उसमें पाटा लगाते हैं, तो अक्सर हम देखते हैं कि हमारे जो किसान भाई होते हैं वो तुरंत खेत में रोपाई के लिए शुरू हो जाते हैं, उसमें जो हमारा पनीर होता है उसको ले जाते हैं और हम देखते हैं कि हमारी मिट्टी जब तक सेट नहीं हो पाती है, मिट्टी स्थिर नहीं हो पाती है, पानी के साथ में मिट्टी घुली हुई होती है, तो पौध को रोकने के लिए किसान भाइयों हमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है और काफ़ी गहरे तक हमें उसकी रोपाई करनी पड़ती है, तो ऐसा हमें नहीं करना है। खेत को तैयार करने के बाद में लगभग 2 से 3 घंटे बाद अगर हम रोपाई का काम शुरू करें तो बहुत ही अच्छा रहता है और हमारी जो मिट्टी होती है वो सेट हो जाती है, मिट्टी हमारी स्थिर हो जाती है, पानी हमारा स्थिर हो जाता है। किसान भाइयों हमें रोपाई के लिए लगभग 21 से 25 दिन की पौध का ही इस्तेमाल करना है और जो हम ये पौध उखाड़ते हैं रोपाई के लिए, इसके लिए हमें ध्यान ये रखना है कि हमेशा धान की नर्सरी है उसके खेत में पानी भरने के बाद ही हमें नर्सरी उखाड़नी है, पनीर को उखाड़ना है और उसे हमें गुच्छों में बांध देना है। साथ ही किसान भाइयों जो उसके जड़ों की मिट्टी होती है वो हमें बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं करना है कि हम देखते हैं कि कुछ हमारे किसान भाई बहुत ज़्यादा धुल कर उसे साफ़ कर देते हैं, तो ऐसा ना करें क्योंकि उसे मिट्टी में ही रहना है। बस मोटे मोटा उसको साफ़ कर लीजिए, बहुत ही अच्छा रहता है और बहुत बढ़िया रहेगा किसान भाइयों अगर हम रोपाई से पहले जो हमारी पौध होती है उसे शोधित कर लें, तो शोधन करना भी बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा किसान भाइयों पौधों की रोपाई हमेशा लाइनों में करनी है ताकि निकाय गुड़ाई और रसायनों का छिड़काव आसानी से उसमें हो सके, निरीक्षण भी हम आसानी से कर सकें। रोपाई में हम किसान भाई ध्यान रखते हैं कि पौधे से पौधे के बीच की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर और लाइनों से लाइन के बीच की दूरी 20 से 22 सेंटीमीटर हम रखते हैं। एक जगह पर केवल 2 से 3 पौधे ही लगाएं। पौधों की रोपाई 2 से 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरी ना करें और ज़्यादा गहरी रोपाई होने पर पौधे की बढ़वार रुक जाती है और कल्ले फूटने में भी हमें दिक्कत होती है, कल्ले फूटने में बहुत ही समय लगता है। हमें एक बात का ध्यान ये भी रखना है कि जब हम रोपाई करते हैं तो जो ऊपर की हमारी चोटी होती है तो उसको हम तोड़ देते हैं और ऊपर की जो चोटी होती है उसको मिट्टी में दबा देते हैं, नष्ट कर देते हैं, गाड़ देते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो हानिकारक रोगों और कीटों के अंडे होते हैं वे ज़्यादातर जो पौधों की चोटी होती है उस पर ही दिए होते हैं, तो किसान भाइयों अगर हम ऊपर की चोटी तोड़कर नष्ट कर देते हैं, उसको मिट्टी में दाब देते हैं, तो ज़्यादातर जो हमारे अंडे होते हैं जो हानिकारक कीटों के या बीमारियों के रोगाणु होते हैं वो हमारे नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही किसान भाइयों हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि रोपाई से पहले जब हम खेत में पानी भरते हैं तो अच्छे तरीके से हमें मेड़बंदी करनी है और जो हमारी मेड़ है उनकी हमें मिट्टी लगाकर मजबूत मेड़बंदी करनी है ताकि जो हमारे खेत का पानी है वो बाहर ना निकले। और इसके साथ ही किसान भाइयों हमें एक बात का भी ध्यान रखना है, जुताई करने के बाद में किसान भाइयों हमें कंप्यूटर लेजर लेबलर के माध्यम से उसको समतल करवाना है और समतलीकरण का कार्य करना है, क्योंकि अगर खेत हमारा समतल होता है, मिट्टी हमारी समतल होती है तो खेत में एक समान पानी भरता है। साथ ही ऊंचा नीचा खेत होने की वजह से कहीं पर कम पानी होता है और कहीं पर पानी का जो दबाव है वो ज़्यादा होता है और ज़्यादा पानी का दबाव होने की वजह से जहाँ पर मेड़ हमारी कमज़ोर हो जाती है और वहाँ मेड़ के टूटने का अंदेशा भी रहता है और जो हमारा पानी रहता है वो बाहर निकल जाता है। तो किसान भाइयों हमें ये सारी बातें ध्यान में रखनी है और बढ़िया उत्पादन हमें धान की फसल से लेना है। और इसी के साथ हमारा आज का खेती की बातें कार्यक्रम संपन्न होता है। कल आपके लिए हम कुछ और बातों के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए सब बहन भाइयों को हमारी राम राम।
1: किसान भाई सुन रहे थे खेती की बातें। जानकारी का विषय था धान की रोपाई और सावधानियां। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। सवेरे के 7:15 हुए हैं। श्रोताओं, आइए अब आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। तो सबसे पहले हम श्रोताओं आपको बता दें कि आज रात 9:30 पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय साहित्य पत्रिका कार्यक्रम साहित्य भारती। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 10:00 और शाम 5:10 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत विशेष पॉडकास्ट श्रृंखला कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल देवेंद्र सुरा से बातचीत। ये सभी कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या होगा रात 8:00 और 8:30 पर होगा कार्यक्रम एक ही फिल्म से। रामेश्वर प्रसाद शर्मा के गाए भजन आप सुन सकते हैं सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत शाम 7:32 पर। छाया गीत फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम होगा शाम 6:55 पर और 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विविधा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर नीरजा शर्मा से ज्योति पाल की बातचीत, जिसका विषय होगा एग्रो पर्यटन के क्षेत्र में संभावनाएं। लोक संगीतों व रागनियों का सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो लोक मंजरी आप सुनेंगे कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:05 पर। गीत आपके नाम ये क्रम होगा आज शाम 5:15 पर, कार्यक्रम रहेगा युववाणी। मेरा सपना उन्नत भारत ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 5:00। दोपहर 2:30 पर एक ही गीतकार कार्यक्रम के अंतर्गत आज के गीतकार होंगे भरत व्यास। धरती गाती है लोक संगीत के इस कार्यक्रम में सवेरे 9:25 पर आज आप सुनेंगे अखिलेश कुमार की गाई रागिनी। और जिले की हलचल होगी सवेरे 9:15 पर, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। तो श्रोताओं, ये तो थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। सवेरे के 7:18 हुए हैं। थोड़ी देर बाद आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
0: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
0: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार।

0: आपात स्थितियों में उपचार सुनिश्चित करने को स्थापित होगा प्रदेश व्यापी एकीकृत ट्रॉमा एवं इमरजेंसी नेटवर्क। उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अकादमी के नवीन परिसर का किया लोकार्पण। कहा, जनहितकारी नीतियों को जमीनी स्तर पर लागू करना प्रशासन का काम। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसवाले ने कहा, दोषियों को मिलना चाहिए कठोर दंड। और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आदर्श पशु चिकित्सालय की स्थापना करेगी सरकार। सघन उपचार के लिए पशुओं को भर्ती करने की भी होगी सुविधा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग और विभिन्न विशेषज्ञों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर उत्तर प्रदेश राज्य कैंसर टास्क फोर्स तथा उत्तर प्रदेश ट्रॉमा एवं इमरजेंसी नेटवर्क UPTEN द्वारा प्रस्तुत कार्य योजनाओं की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश में प्रत्येक जिले तक कैंसर उपचार सुविधाएं विकसित करने तथा सड़क दुर्घटनाओं व अन्य आपात स्थितियों में गोल्डन आवर के भीतर उपचार सुनिश्चित करने के लिए प्रदेशव्यापी एकीकृत ट्रॉमा एवं इमरजेंसी नेटवर्क स्थापित करने के निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
1: उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक जिले में चरणबद्ध रूप से कैंसर उपचार सुविधाओं का विकास किया जाए तथा प्रत्येक मंडल में आधुनिक कैंसर केंद्र स्थापित किए जाएं। मरीजों की स्क्रीनिंग से लेकर उपचार और फॉलोअप तक की पूरी व्यवस्था डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ी जाए। बैठक में बताया गया कि ट्रॉमा एवं इमरजेंसी नेटवर्क के अंतर्गत एकीकृत चिकित्सा इकाइयों का विकास किया जाएगा। इसके माध्यम से प्रदेश की लगभग 95% आबादी को 60 मिनट के भीतर विशेषज्ञ आपात चिकित्सा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। समाचार कक्ष से रितेश।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में 464 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन और प्रबंधन अकादमी के नवीन परिसर का लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रशासन में नवाचार और उत्कृष्टता का भाव होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर जनहितकारी नीतियां बनाई गई हैं। उन्हें जमीनी स्तर पर लागू करना प्रशासन का काम है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी राष्ट्रहित की भावना से काम करेगा तो विकसित उत्तर प्रदेश विकसित भारत की आधारशिला जरूर बनेगा।
2: संवेदनशील प्रशासन को प्रोत्साहित करना होगा। विकसित उत्तर प्रदेश विकसित भारत की आधारशिला बने, ये जज्बा हम सब के लिए हमारे मन में हो। ये पंच संकल्प जब हम लेकर के चलेंगे परिणाम आएंगे। याद रखना, विकसित भारत की आधारशिला यूपी तब बनेगा जब यूपी का हर गांव, यूपी का हर कस्बा, हर वार्ड आत्मनिर्भर बनेगा, विकसित बनेगा। और उस संकल्प को पूरा करने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना हो।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में 3 दिवसीय आम महोत्सव 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के मैंगो टूरिज्म को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके लिए आम की सभी किस्मों की GI टैगिंग कराई जाएगी। महोत्सव में 50 ग्राम के अंगूर दाना आम और 5 किलो तक के वजन वाले गजानन आम आकर्षण का केंद्र रहे। प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल EV चार्जिंग को बढ़ावा देने के लिए सोलर आवर्स में 20% टैरिफ छूट की व्यवस्था लागू की गई है। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने इसे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा है कि इससे स्वच्छ और हरित ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा। टैरिफ में यह छूट सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मिलेगी। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET की दूसरे दिन की परीक्षा कल शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुई। 3 दिवसीय परीक्षा को पारदर्शी और शुचितापूर्ण तरीके से कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा के दौरान शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से सभी परीक्षा केंद्रों के AI कैमरों से निगरानी सुनिश्चित की गई है। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि UPTET परीक्षा के अंतिम दिन आज एक पाली में परीक्षा आयोजित होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसवाले ने अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे में हुई अनियमितता की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर कानूनी प्रक्रिया शुरू की है। इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर

0: दंड मिले यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि न्यास से उम्मीद है कि वह व्यवस्था और संचालन की सभी कमियों को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाएं।
1: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित संपूर्ण हिंदू समाज की न्यास से स्वाभाविक अपेक्षा है कि इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मानकर गंभीरता से व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर करने हेतु परिणामकारक कदम उठाए, ताकि अयोध्या मंदिर पर करोड़ों राम भक्तों की आस्था व श्रद्धा अखंड एवं अटूट बनी रहे।
0: वहीं इस मामले में गिरफ्तार 8 आरोपियों में से एक अविनाश शुक्ला को पुलिस ने कल रिमांड पर लेकर पूछताछ की। पूछताछ के आधार पर पुलिस उसे लेकर कौशलपुरी कॉलोनी स्थित योग आश्रम गई, जहां वह कुछ समय के लिए अपने भाई के साथ रहता था। पुलिस की टीम ने आश्रम की तलाशी ली। भारत सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना नहीं बंद करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
2: India's position on the Indus Waters Treaty.
3: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
0: श्री अमरनाथ जी यात्रा कल जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के पहले दिन कुल 12,168 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ जी गुफा में भगवान शिव की पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच तीर्थयात्रियों ने गुफा के दर्शन किए। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में श्रेष्ठ कार्य करने वाले बैंकों, बैंक कर्मियों और बैंक मित्रों को कल लखनऊ में सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण के महाप्रबंधक प्रवेश कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब तक 1,47,00,000 लोग अटल पेंशन योजना से जुड़ चुके हैं। उन्होंने बैंकों से इस महत्वाकांक्षी योजना का प्रसार प्रसार कर इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया। प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया है कि राज्य सरकार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक आदर्श पशु चिकित्सालय की स्थापना करने जा रही है। इन चिकित्सालयों में पशु को सघन उपचार के लिए भर्ती भी किया जा सकेगा। बनने वाले प्रत्येक आदर्श पशु चिकित्सालय में 2 पशु चिकित्सा अधिकारी और पर्याप्त संख्या में अन्य स्टाफ की तैनाती की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह तथा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। राज्य के कई जनपदों में कल भारी बारिश से मध्यम वर्षा दर्ज की गई, जबकि कुछ जिलों में उमस भरी गर्मी का दौर बना रहा। मौसम विभाग ने आज राज्य के पूर्वी हिस्से के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। वहीं पश्चिमी जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने और कहीं कहीं बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि भी हो सकती है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आपात स्थितियों में उपचार सुनिश्चित करने को स्थापित होगा प्रदेशव्यापी एकीकृत ट्रॉमा एवं इमरजेंसी नेटवर्क। उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अकादमी की नवीन परिसर का किया लोकार्पण, कहा जनहितकारी नीतियों को जमीनी स्तर पर लागू करना प्रशासन का काम। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा दोषियों को मिलना चाहिए कठोर दंड। और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आदर्श पशु चिकित्सालय की स्थापना करेगी सरकार, सघन उपचार के लिए पशुओं को भर्ती करने की भी होगी सुविधा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
4: जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ, यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।

मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।

0: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में। और आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ आपका साथी धर्मेंद्र। श्रोताओं, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बरसात शुरू हो चुकी है, बरसात का मौसम है, तो ऐसे में जो है ये मौसम बदल रहा है और संचारी रोगों का खतरा बना रहता है। उसी क्रम में श्रोताओं, आज अब हम आपसे बात करेंगे क्योंकि संचारी रोग नियंत्रण अभियान उत्तर प्रदेश के बारे में। क्योंकि देखिए श्रोताओं, उत्तर प्रदेश में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान मुख्य रूप से मानसून और मौसम बदलाव के समय डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, दिमागी बुखार और डायरिया जैसी जानलेवा बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए हर साल 3 चरणों में मनाया जाता है। इस महा अभियान की शुरुआत साल 2017 में की गई थी। इसकी शुरुआत स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने और संक्रामक रोगों को जड़ से मिटाने के उद्देश्य से की गई थी। श्रोताओं, इसके तहत स्वास्थ्य विभाग समेत राज्य सरकार के करीब 13 विभाग आपसी समन्वय के साथ युद्ध स्तर पर काम करते हैं। इससे मनाने का सबसे बड़ा कारण ये भी है श्रोताओं कि बारिश के मौसम में जगह जगह जलभराव और गंदगी के कारण मच्छरों का प्रकोप ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे गरीब व कुपोषित बच्चों के साथ साथ बड़े भी तेजी से गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। इसी अभियान के साथ दस्तक अभियान को भी जोड़ा जाता है, जिसमें आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां घर घर जाकर बुखार, खांसी या कुपोषण के लक्षण वाले मरीजों की पहचान कर उन्हें ई कवच पोर्टल पर दर्ज करती हैं और तुरंत मुफ्त इलाज की व्यवस्था कराती हैं। इसके तहत श्रोताओं, हर हफ्ते यानी के हर रविवार 10:10 मच्छर पर वार जैसे नारे के साथ लोगों को पानी जमा ना होने दें, सफाई व्यवस्था रखने, क्लोरीन की गोलियां बांटने व पूरी आस्तीन के कपड़े पहनने के लिए जागरूक किया जाता है। श्रोताओं, इससे पूरे उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी इलाकों में एंटी लार्वा छिड़काव, फॉगिंग व नालियों की सफाई से मच्छरों का खात्मा होता है। समय रहते गंभीर बीमारियों की पहचान होने से मरीजों को समय पर सही और मुफ्त इलाज मिल जाता है, जिससे मौतों के आंकड़ों में भारी गिरावट आई है और स्वास्थ्य विभाग सीधे जनता के द्वार पर पहुंचकर दवाइयां व चिकित्सा परामर्श उपलब्ध कराता है, जिससे समाज की सबसे अंतिम और गरीब व्यक्ति भी पूरी तरह सुरक्षित और रोग मुक्त महसूस करता है।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
0: संदेश के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। कार्यक्रम है सूरज के साथ साथ। और श्रोताओं, हम सभी जानते हैं कि श्री अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है, तो बात करते हैं श्रोताओं उसी के बारे में कि श्री अमरनाथ जी यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु जो हैं वो क्या क्या सावधानी बरते हैं। जी हाँ श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा एक अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक यात्रा है, लेकिन इसके दुर्गम रास्ते, ऊंचे पहाड़, अप्रत्याशित मौसम के कारण श्रद्धालुओं को अत्यधिक

सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। यात्रा शुरू करने से पहले सभी यात्रियों को अपना अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अवश्य बनवा लेना चाहिए। जी हाँ श्रोताओं, और शारीरिक रूप से फिट होने के कारण के लिए यात्रा से कुछ सप्ताह पहले से ही नियमित रूप से टहलना, प्राणायाम और योग शुरू कर देना चाहिए। अपने साथ पर्याप्त मात्रा में गर्म कपड़े जैसे भारी जैकेट, थर्मल इनरवियर, ऊनी मोजे, दस्ताने और एक अच्छी गुणवत्ता का वाटरप्रूफ रेनकोट, छाता जरूर अपने साथ रखें, क्योंकि श्रोताओं हम सब जानते हैं कि वहां का मौसम पल भर में बदलता रहता है। इसके अलावा तेज बारिश, बर्फबारी, लैंडस्लाइड आदि होती रहती है, जिस कारण कई बार यात्रा बीच में ही रोकनी पड़ती है। पथरीले और फिसलन भरे रास्तों पर चलने के लिए मजबूत ग्रिप वाले ट्रैकिंग जूते पहने और संतुलन बनाए रखने के लिए एक मजबूत छड़ी या लकड़ी की लाठी का उपयोग कर सकते हैं। ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी और एल्टीट्यूड सिकनेस यानी कि जो पहाड़ी बीमारी होती है उसे बचने के लिए कभी भी जल्दबाजी या दौड़कर चढ़ाई ना करें, बल्कि धीरे धीरे बढ़ें। शरीर में पानी की कमी ना होने दें और अपने पास ग्लूकोज, सूखे मेवे, चॉकलेट और प्राथमिक चिकित्सा किट जिसमें दर्द निवारक दवा, उल्टी और पेट दर्द जैसी दवाएं अपने साथ रखें। यात्रा के दौरान कभी भी अपने समूह से अलग ना हो। आपातकालीन स्थिति के लिए अपनी जेब में एक पर्ची पर अपना नाम, पता व इमरजेंसी का फोन नंबर लिखकर जरूर रखें। जी हां श्रोताओं, और रास्ते में तैनात सुरक्षा बलों व प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देशों का पूरी तरह से पालन करें, ताकि आपकी ये पावन यात्रा पूरी तरह सुरक्षित, सुखद और मंगलमय हो सके। इस वर्ष ये यात्रा श्रोताओं 3 जुलाई यानी कि कल से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलेगी। इस यात्रा को करने की जो 13 वर्ष से कम और 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को अनुमति नहीं मिलेगी। 6 सप्ताह से ज़्यादा गर्भवती महिला को यात्रा के पंजीकरण की अनुमति नहीं है। यात्रा के मुख्य 2 मार्ग होंगे। पहला बालटाल, ये मार्ग छोटा है लेकिन इसकी चढ़ाई सीधी और कठिन है। दूसरा है पहलगांव, ये पारंपरिक व पुराना मार्ग है। इस मार्ग पर चढ़ाई धीरे धीरे होती है, जिससे शरीर को ऊंचे पहाड़ों के माहौल में ढलने का समय मिल जाता है। और श्रोताओं, इन पहाड़ी व दुर्गम रास्तों पर अपना ख्याल रखें, साथ ही अपने साथियों का भी पूरा ख्याल रखें। बाबा बर्फानी से हम तो बस यही प्रार्थना करेंगे श्रोताओं कि वो आपकी यात्रा को सुगम, सरल और मंगलमय बनाए। जय बाबा बर्फानी।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में श्रोताओं आपका एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और श्रोताओं अब आपको बताते हैं आज यानी कि 4 जुलाई के दिन घटी कुछ घटनाओं के बारे में। तो श्रोताओं हम आपको बता दें कि आज 4 जुलाई सन 1881 में ही दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की पहली टाइट्रन पूरे पर्वतीय मार्ग को पार कर दार्जिलिंग पहुंची और इतिहास रच दिया। लगभग 88 किलोमीटर लंबी इस नैरोगेज लाइन ने पहाड़ों में परिवहन को एक नई पहचान दिलाई। बाद में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। और श्रोताओं साथ ही आपको बता दें कि 4 जुलाई 1997 में नासा का मार्स पाथ फाइंडर मंगल की सतह पर उतरा। इसके साथ भेजे गए सोजार्नर रोवर ने पहली बार किसी अन्य ग्रह पर चलकर वैज्ञानिक अध्ययन किया। मिशन ने मंगल की चट्टानों, मिट्टी और वातावरण संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई। इसके अलावा श्रोताओं ब्रिटेन के थॉमस सेवरी ने 4 जुलाई सन 1698 में पहले व्यावसायिक स्टीम इंजन का पेटेंट हासिल किया था। स्वीडन के रसायन शास्त्री और खदान विशेषज्ञ फ्रेडरिक क्रॉन्स्टलर ने निकेल नामक धातु का पता लगाने में 4 जुलाई 1751 में सफलता हासिल की थी। लंदन में पहली बार रंगीन टीवी कार्यक्रम का प्रसारण 4 जुलाई सन 1928 में हुआ था और 4 जुलाई को ही ब्रिटिश संसद के सामने 1947 में भारतीय स्वतंत्रता बिल का प्रस्ताव रखा गया था जिसके तहत देश का भारत और पाकिस्तान में बंटवारा हुआ था। महेश भूपति और मैरी पियर्स ने सन 2005 में विंबलडन टेनिस का मिश्रित युगल खिताब जीता था। और श्रोताओं अब बात उन महान पुरुषों की जिनका आज जन्मदिन है। तो श्रोताओं हम आपको बता दें कि आज 4 जुलाई को जन्मे गुलजारी लाल नंदा का जन्म हुआ था सन 1898 में, जो अविभाजित पंजाब के सियालकोट अब पाकिस्तान में है वहां हुआ था। वे स्वतंत्रता सेनानी व प्रख्यात श्रमिक नेता थे। उन्होंने श्रमिकों के अधिकारों के लिए उल्लेखनीय कार्य किए तथा योजना, श्रम और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली। सन 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु व 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद वे 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। श्री गुलजारी लाल नंदा के सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों के लिए वे जाने गए। राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के लिए उन्हें सन 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया और 15 जनवरी 1998 को उनका निधन हुआ। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म 4 जुलाई 1897 में हुआ था। भाषा विज्ञान, कोश निर्माण, पाठालोचन, अनुवाद और सांस्कृतिक अध्ययन के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान करने वाले भारतीय विमलेश कांति वर्मा का जन्म 4 जुलाई सन 1943 में हुआ था। फिल्म अभिनेता सुशील कुमार का जन्म 4 जुलाई सन 1945 में हुआ था। और अब बात करें उन महान व्यक्तियों की जो आज के दिन इस दुनिया को अलविदा कह गए, तो उनमें हैं साहित्य, दर्शन और इतिहास के प्रकांड विद्वान स्वामी विवेकानंद। इनका निधन 4 जुलाई सन 1902 में हुआ था। राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने वाले स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया का निधन 4 जुलाई सन 1963 में हुआ था। बॉलीवुड के प्रसिद्ध गीतकार भरत व्यास का निधन सन 1982 में हुआ था, तो वहीं गांधी शांति पुरस्कार विजेता व भारत में जर्मनी के पूर्व राजदूत गरहार्ड फिशर का निधन सन 2006 में हुआ था। और श्रोताओं, अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और अब बात करते हैं इस मानसून पौधारोपण अवश्य करें, यानी कि क्योंकि श्रोताओं जुलाई में पहले सप्ताह में हम मनाते हैं वन महोत्सव सप्ताह। तो अगर हम बात करें तो भारत में हम हर वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह मनाते हैं। मानसून की पहली फुहारों के साथ ही प्रकृति को हरा भरा बनाने और धरती का श्रृंगार करने का ये सबसे पावन अवसर श्रोताओं आ जाता है, जिसे हम वन महोत्सव सप्ताह के रूप में मनाते हैं। इस वर्ष भी जुलाई के प्रथम सप्ताह में हमें केवल ये रस्म अदायगी नहीं करनी बल्कि इस मानसून पौधारोपण अवश्य करें के संकल्प को जन आंदोलन में बदलना है। जी हाँ, वृक्ष हमारे पर्यावरण की रीढ़ है। ये न केवल हमें जीवन दायनी प्राणवायु देते हैं बल्कि दूषित वायु को सोखकर हमें सांस लेने योग्य स्वच्छ माहौल प्रदान करते हैं। श्रोताओं, मानसून का समय पौधारोपण के लिए सबसे सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि इस दौरान मिट्टी में प्राकृतिक नमी होती है और निरंतर होने वाली बारिश नए पौधों की जड़ों को गहराई से जमाने में मदद करती है, जिससे उनके जीवित होने की संभावना कई गुना तक बढ़ जाती है। आधुनिक दौर में श्रोताओं, कंक्रीट, जंगलों और बढ़ते प्रदूषण के कारण हमारी धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है और जल स्तर नीचे गिरता जा रहा है, जिसका एकमात्र स्थायी समाधान पौधारोपण ही है। हमें अपने घरों के आसपास खाली पड़ी जमीनों पर, पार्कों और सड़कों के किनारे नीम, आम, पीपल, बरगद, जामुन और आंवले जैसे औषधीय व फलदार स्वदेशी पौधे लगाने चाहिए, जो स्थानीय पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। वन महोत्सव श्रोताओं मात्र एक पौधा जमीन में गाड़ देने का उत्सव नहीं, बल्कि उस नन्हे से पौधे को हमें एक बच्चे की तरह पालना, उसे पानी देने, उसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी का नाम है। क्योंकि श्रोताओं, पेड़ तो हम लगा देते हैं लेकिन देखभाल ना होने की परिस्थिति में सूख जाते हैं, उसकी देखभाल जरूरी है। जब एक एक व्यक्ति ये जिम्मेदारी उठाते हुए कम से कम एक एक पौधा लगाएगा और उसकी देखभाल करेगा, तभी हमारी आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी और एक सुरक्षित भविष्य मिलेगा। इस मानसून श्रोताओं, आइए या यूं कहें कि हर मानसून हम सब मिलकर अपनी धरती माँ के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और इस वन महोत्सव सप्ताह को पूरी तरह से सार्थक बनाएं। क्योंकि श्रोताओं, अगर हर व्यक्ति ठान ले कि हर साल एक पेड़ लगाकर उसकी देखभाल करनी है, तो जरा सोचो केवल आने वाले ही कुछ सालों में धरती पर कितने पेड़ होंगे। जी हाँ श्रोताओं, करोड़ों पेड़ धरती पर लहराएंगे और पूरी धरती को हरा भरा बना देंगे। तो श्रोताओं, आइए हम मिलकर इस वन महोत्सव सप्ताह में संकल्प लें कि हर व्यक्ति एक पेड़ जरूर लगाए। और श्रोताओं, देखिए आपसे बात करते करते हम पहुंचे हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर, यानी कि अब आपको बताते हैं आज के समाचार पत्रों में प्रकाशित सुर्खियों के बारे में। तो श्रोताओं, हम आपको बता दें कि बिजनौर जिले के गांव नांगल सोती क्षेत्र के गांव खानपुर निवासी खड़क सिंह की पुत्री भावना परमार मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना पर शोध कर रही हैं। उनके शोध में अत्यंत महत्वपूर्ण एंजाइम मिले हैं, ये भविष्य में दवाई बनाने और प्रदूषण को कम करने में मददगार साबित होंगे। जी हाँ श्रोताओं, भावना परमार ये शोध कर रही हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिण परिषद शिक्षण करा रहे डॉक्टर रामकरण के साथ में। शोध में लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियों पर खोजे गए हैं दुर्लभ सूक्ष्म जीवी। और श्रोताओं, अमर उजाला लिखता है कि बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन से श्रद्धालु हुए गदगद, श्री अमरनाथ यात्रा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बालटाल व पहलगाम दोनों मुख्य मार्गों से हुई शुरू। तहजीब के शहर लखनऊ, जी हां श्रोताओं, अमर उजाला ही लिखता है कि तहजीब के शहर लखनऊ में इठलाएगी बिजनौर की आम्रपाली और दौड़ेगा लंगड़ा। इसके अलावा आम महोत्सव में अजब नजारा देखने को मिला, जहां 50 ग्राम का अंगूरदाना और 5 किलो का गजानन जी हाँ श्रोताओं, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3 दिवसीय आम महोत्सव शुरू हो चुका है। और श्रोताओं, सबसे अजब नज़ारा तो रहा, सबसे बड़ी धूम रही मोदी मैंगो और योगी राज की। जी हाँ श्रोताओं, मोदी मैंगो जहां पर 400 से 500 तो वहीं पर योगी राज की कीमत हुई 600 से 700 रुपए प्रति किलो। अमर उजाला ही लिखता है कि वीबी जी रामजी योजना में बिजनौर जिले में अब आंखों से होगी बायोमेट्रिक हाजिरी। 1 जुलाई से योजना की शुरुआत हो चुकी है और अब तक 1000 से ज्यादा मजदूरों को रोजगार दिया जा चुका है। और अब बात श्रोताओं कुछ करते हैं खेल जगत की। और सबसे पहले खबर हिंदुस्तान से और बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप की। तो फीफा विश्व कप इतिहास के सबसे नाटकीय मुकाबलों में से एक, क्रोएशिया का सपना टूटा। रोनाल्डो गोल दागने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने और वीएआर को लेकर विवाद। श्रोताओं, 5 बार के वैलन डी ओर विजेता और 41 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई। उन्होंने मैच के 68वें मिनट में पेनल्टी को गोल में बदलकर अपने विश्व कप इतिहास के 9वें नॉकआउट मैच में पहला नॉकआउट गोल दागा। इस गोल के साथ 41 वर्षीय रोनाल्डो विश्व कप नॉकआउट इतिहास में गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने। दूसरी तरफ मैड्रिड ने भीगी आंखों से छोड़ा मैदान। 2 दशकों तक अपने जादुई पैरों से फुटबॉल की लय तय करने वाले क्रोएशियाई मेस्ट्रो लुका मॉड्रिक की विश्व कप यात्रा का भावुक अंत हो गया। बात करें शतरंज की, तो विश्व चैंपियन डी गुकेश ने अपने सफेद मोहरों का अच्छा उपयोग करते हुए दिन के अंतिम गेम में नीदरलैंड की ग्रैंड मास्टर अनीश गिरी को हराया। अब बात श्रोता विंबलडन की भी कर लेते हैं, तो ईला तीसरे दौर में पहुंचने वाली फिलीपींस की पहली खिलाड़ी बनी। ऑल इंग्लैंड के मुख्य दौर में खेलने वाली 21 साल की एलेक्स ने ऑस्ट्रेलिया की माया को दी शिकस्त। अब गत चैंपियन ईगा स्वियातेक से होगा सामना। तो श्रोताओं, ये तो थी कुछ खबरें आज के समाचार पत्रों से। और अब ये गीत

और श्रोताओं, चलते चलते बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के बारे में। तो श्रोताओं, हम आपको बता दें कि हर साल जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है सहकारिता दिवस, और इस वर्ष यानी कि आज 4 जुलाई 2026 को मनाया जा रहा है। इस वर्ष का मुख्य विषय है श्रोताओं, शांतिपूर्ण विश्व के लिए सहकारिता। और इसके जो मुख्य उद्देश्य हैं उसकी बात अगर हम करें तो श्रोताओं, समाज और अर्थव्यवस्था में सहकारी समितियों के योगदान के प्रति लोगों को जागरूक करना है। ये दिन आर्थिक विकास, सामाजिक समानता और वैश्विक शांति के सहकारी आदर्शों को बढ़ावा देता है, और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सहकारी आंदोलन और संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्यों के बीच समन्वय को बढ़ाना है। और अगर इसके इतिहास की बात करें श्रोताओं, तो इसकी शुरुआत हुई थी सन 1923 को। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन द्वारा पहली बार इसे 1923 में मनाया गया था, और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर 1995 से इसे हर साल मनाने की शुरुआत की थी। और इसी के साथ कार्यक्रम सूरज के साथ साथ संपन्न करने की मुझे यानी धर्मेंद्र को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: साथ साथ।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर पर। सवेरे के 8 बजे हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।

0: शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में मियामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों में फैली हुई हैं। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के

0: संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
1: प्रधानमंत्री चूरू शाहजुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजधानी 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे साणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ये उद्घाटन भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: साणंद में शुरू हो रही यह अत्याधुनिक सीजी सेमी औसत सुविधा भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण के मानचित्र पर एक भरोसेमंद केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। पूरी क्षमता से शुरू होने के बाद इस संयंत्र से हर साल लगभग 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन किया जा सकेगा। यह प्लांट डिजाइनिंग वेफर्स

अहम भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही यहाँ निर्मित होने वाली चिप्स की विशेष रूप से ऑटोमोटिव, दूरसंचार, 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी अग्रणी क्षेत्रों को आपूर्ति की जाएगी। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार।

0: गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
1: गृहमंत्री ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। श्री शाह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को देश के सभी जल भंडारों की निगरानी करने तथा विद्युत मंत्रालय के सचिव को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी दिया। श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय के अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल को असम और अरुणाचल प्रदेश भेजा जाए ताकि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10 से 11% की वृद्धि की उम्मीद है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में $863 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और फ्रांस के वित्त मंत्री होला लेस्ट्यूर ने कल फ्रांस में भारत फ्रांस आर्थिक और वित्तीय वार्ता की सह अध्यक्षता की। दोनों मंत्रियों ने भारत में आर्थिक विकास के लिए फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के काम की महत्ता को स्वीकार करते हुए भविष्य की परियोजनाओं की संभावनाओं का स्वागत किया। दोनों मंत्रियों ने भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक वित्तीय तकनीकी निवेश और व्यापार से जुड़े मामलों पर बातचीत के लिए इस आर्थिक और वित्तीय वार्ता को मुख्य मंच के तौर पर इस्तेमाल करने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज कराए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज मध्य प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री कुमार आज इंदौर पहुंचेंगे, जहां वे लता मंगेशकर सभागृह में आयोजित बूथ लेवल अधिकारियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान वे इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1,500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला

तेहरान के मुसल्ला में आयतुल्लाह अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियन, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबोफ, विदेश मंत्री अब्बास अराकची और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी शामिल थे। भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल

0: के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। अंतिम संस्कार यात्रा अगले कुछ दिन तक जारी रहेगी और इस महीने की 9 तारीख को पवित्र शहर मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। इसके बाद 40 दिन तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। पेरू में केको फुजिमोरी को राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर का विजेता घोषित किया गया है। इस महीने के अंत में पदभार ग्रहण करने पर वे पिछले 10 वर्ष में पेरू की 9वीं राष्ट्रपति बनेंगी। पेरू के चुनाव आयोग ने कल औपचारिक रूप से उनकी जीत की पुष्टि की। फुजिमोरी ने 7 जून को दूसरे दौर के चुनाव में रॉबर्टो सांचेस को हराया। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। इन परीक्षणों में गाड़ियों की ईंधन दक्षता पर कोई खास असर नहीं देखा गया। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले गए रोमांचक राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट में अपना 7वां गोल करते हुए मैच के 29वें मिनट में अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई। मैच का फैसला 111वें मिनट में निर्णायक गोल से हुआ। प्री क्वार्टर फाइनल में अब मंगलवार को अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इससे पहले मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से कर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की थी। फिलहाल राउंड ऑफ 32 के मैच में कोलंबिया और घाना का मुकाबला अभी जारी है। और अगर बात करें क्रिकेट की तो भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच ने पुरुष सिंगल्स वर्ग में सर्वाधिक मैच जीतने में रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर आज तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद कनक। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की बैठक में 52,000 करोड़ रुपए के सौदे स्वीकृत, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है ड्रोन, टैंक, मिसाइल की खरीद को दी मंजूरी। लोकसत्ते लिखता है सेना की बढ़ेगी ताकत। हिंदुस्तान, पंजाब केसरी, अमर उजाला, दैनिक ट्रिब्यून सहित अनेक अखबारों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिक्रिया को प्रमुखता से छापा है। लोकसत्ते ने संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसवाले का बयान दिया है, राम भक्तों को पहुंचा आघात, दोषियों को मिले सजा। सरकार द्वारा 7 चीनी एप हटाए जाने पर दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, अब बीच रास्ते बंद नहीं होंगे ई रिक्शा। अमर उजाला ने लिखा है बैठ BMS जैसे ऐप पर सख्ती, ब्लूटूथ से कमजोर पासवर्ड वाली बैटरियों को बंद कर देते थे बदमाश। राजस्थान पत्रिका ने 3 तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 9 आरोपियों की याचिका खारिज करते हुए फटकार लगाने की खबर दी है। हलाला 3 तलाक की आड़ में नहीं दे सकते यौन शोषण की अनुमति। दैनिक भास्कर ने आजकल की

0: दिल दिमाग रिचार्ज होंगे। देशबंधु ने लिखा है, अमरनाथ श्राइन बोर्ड और प्रशासन के सामने खड़ी हुई नई चुनौती, बिना पंजीकरण हजारों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का आकलन, जनसत्ता की पहली खबर है, अलनीनो के ताकतवर होने से दुनिया के कई हिस्सों में लू, सूखा और भारी वर्षा का बढ़ेगा खतरा।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एक्यूक्रेस रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में म्यामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। वो बालोतरा में मुल्क के पहले ग्रीनफील्ड मरबूत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करेंगे। दहशतगर्दी की रोकथाम के गुजरात स्क्वाड ने पाकिस्तान में कायम दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद से वाबस्ता 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। मरकज ने एलनीनो के सबब मुल्क के कुछ इलाकों में मामूल से कम बारिश और खुश्कसाली की इम्कानी सूरतहाल का जायजा लिया। भारत के महकमा मौसमियात ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा आलमी कप में

0: जान जाएंगे जहां वो आज सुबह जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह करेंगे। इसके बाद जनाब मोदी बालोतरा जाएंगे जहां वो आज दोपहर तरक्याती प्रोजेक्टों को मुल्क के लिए वक्फ करेंगे, इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों पर तकरीबन 1.06 लाख करोड़ रुपए की लागत आई है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: उम्मीद है कि रियासत के मगरबी जिलों में रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स से सरमायाकारी, रोजगार और सनअती तरक्की के नए मौके पैदा होंगे। राजस्थान रिफाइनरी प्रोजेक्ट से एमएसएमईज, पैकेजिंग, कपड़े की सनअतों, ऑटो कलपुर्जों और एग्री फिल्म जैसे शोबों को भी फरोग हासिल होगा, जिससे रियासत की मईशत में एक नई तकवीत पैदा होगी। ये प्रोजेक्ट राजस्थान के चैलेंजिंग सहरा में बनाया गया है, जो इंजीनियरिंग का एक शाहकार है। जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले से शुमाल जनूब राहदारी, खासतौर पर शहर की कसीर मॉडल कनेक्टिविटी को फरोग हासिल होगा। इस राहदारी से मेट्रो ट्रेन, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और बस टर्मिनल से मरबूत हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म के प्रोग्राम के रवां टेलीकास्ट के लिए रियासत के सभी जिला सदर दफ्तरों, शहरी बलदियाती इदारों और ग्राम पंचायतों में खसूसी इंतजाम किए गए हैं। जोधपुर से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: बाद में शाम को वजीर आजम मोदी गुजरात का दौरा करेंगे। यहां वो अहमदाबाद के सनन इलाके में बाहर से मंगाए गए सीजी सेमीकंडक्टर के कलपुर्जों के तरतीब और तजुर्बाती मरकज का इफ्तिताह करेंगे। ये इफ्तिताह भारत के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के सफर में एक अहम संगे मील है, जिसके तहत भारत के पहले शुरू से आखिर तक चिप पैकेजिंग यूनिट में कमर्शियल प्रोडक्शन का आगाज हो जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: बाहर से मंगाए गए सीजी सेमीकंडक्टर के कलपुर्जों के तरतीब और तजर्बाती मरकज ओसैट से एक खुदकफील टेक्नोलॉजी इको निजाम की जानिब भारत के सफर में एक बड़े संगे मील की अक्कासी होती है। इस यूनिट में मसनूई जहानत और आला कारकर्दगी वाली कंप्यूटिंग के शोबों में तेजी से तरक्की हुई है। ये यूनिट एडवांस्ड मेमोरी और स्टोरेज के लिए आलमी मांग को पूरा करने के मकसद से कायम किया गया है। सनंद में ज्यादा पैदावार से अहम सनतों में आलमी और घरेलू सारिफिन को

0: और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
1: शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के अखबारों ने अलग अलग खबरों को अहमियत दी है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में होने वाली मीटिंग में हुकूमत ने 52,000 करोड़ रुपए के दिफाई सौदों को मंजूरी दी, जिसे मुसल्ला अफवाज की सलाहियत बढ़ाने और उन्हें जदीद तरीन हथियारों से लैस करने की सम्त में बड़ा कदम माना गया है। इस खबर को रोजनामा इंकलाब ने खसूसी तौर पर शाया किया है। रोजनामा प्रताप ने वजारत खारजा की जानिब से जारी एक बयान को जली सुर्खी के साथ शाया किया है, जिसमें वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान को दो टोक अल्फाज में बता दिया है कि पहले दहशतगर्दी का खात्मा होगा, फिर सिंध तास आबी माहदे पर बात होगी। आयतुल्ला अली खामनेई की आखिरी रसूम के आगाज की खबर पर आज के बेशतर अखबारों ने तवज्जो मरकूज की है, जिसमें शिरकत के लिए भारत समेत मुख्तलिफ मुल्कों के वफूद की आमद का सिलसिला जारी है। आखिरी रसूम 4 जुलाई से 9 जुलाई तक ईरान और इराक के मुख्तलिफ शहरों में अदा की जाएंगी।
0: और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। वो बालोतरा में मुल्क के पहले ग्रीन फील्ड मरबूत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करेंगे। दहशतगर्दी की रोकथाम के गुजरात स्क्वाड ने पाकिस्तान में कायम दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद से वाबस्ता 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। मरकज ने एलनीनो के सबब मुल्क के कुछ इलाकों में मामूल से कम बारिश और खुश्क साली की इम्कानी सूरत हाल का जायजा लिया। भारत के महकमा मौसमियात ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा आलमी कप में अर्जेंटीना मियामी में कैबो वर्डे को एक सनसनीखेज मैच में 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल मरहले में दाखिल हो गया है। मिस्र भी प्री क्वार्टर फाइनल्स में दाखिल हो गया है। और आज शाम मैनचेस्टर में दूसरे T20 में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 8:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गोल्डन हिट्स।

कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे इंदिवर का लिखा गीत। आवाजें थी मोहम्मद रफी और मुकेश की। फिल्म का नाम था समझौता।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: Hey girls, आज तो पार्टी चाहिए।
2: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज्जा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन OTP CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: कार्यक्रम में श्रोताओं एक बार फिर से स्वागत है। आकाशवाणी नजीबाबाद से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। कार्यक्रम का अगले गीत हमने लिया है फिल्म भाभी से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, गीत के बोल हैं राजेंद्र कृष्ण के और संगीत चित्रगुप्त का।

0: मोहम्मद रफ़ी को श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे रवि के संगीत निर्देशन में। गीत के बोल थे राजेंद्र कृष्ण की, फिल्म का नाम था भरोसा। कार्यक्रम गोल्डन हिट्स का अगला गीत श्रोताओं हमने लिया है फिल्म बॉबी से। इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह ने। गीत के बोल हैं आनंद बख्शी के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुक न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

कार्यक्रम का अगला गीत श्रोताओं आइए सुनते हैं, अमित और सुरेश वाडकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है बॉन्ड 303। गीत के बोल हैं गुलशन बावरा के और संगीत राहुल देव परमन का।

कार्यक्रम गोल्डन हिट्स का अंतिम गीत श्रोताओं आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में, जिसे हमने लिया है फिल्म गीत से। गीत के बोल हैं इंदिवर के और संगीत बप्पी लहरी का।

0: गीत फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गोल्डन हिट्स अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 9:15 हुए हैं। कुछ ही पलों में आप जिले की हलचल सुनेंगे।
1: नमस्कार,

0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए उन्नाव और हापुड़ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं उन्नाव जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विकास शुक्ला का।
2: जनपद उन्नाव में बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सदर विधानसभा के ग्राम पंचायत डीह में 570 करोड़ की लागत की 101 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा कार्यक्रम में पहुंचकर सर्वप्रथम सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया गया तथा बाल विकास सेवा एवं पोष्टाहार विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉल पर पहुंचकर दो गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कर पोषण पोटली भेंट की गई व दो नवजात शिशुओं का अनुप्राशन कर उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को डेमोचेक प्रमाण पत्र व आवास की चाबी देकर सम्मानित किया। जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उन्नाव आध्यात्मिक साहित्य व क्रांति की धरा है। उन्होंने कहा कि आज जनपद उन्नाव हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। विकास की हर योजना उन्नाव में लागू है। आज यहां की कनेक्टिविटी हर तरफ से 4 लाइन हो गई है। गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए उन्नाव वासी लखनऊ को बाईपास कर सीधे दिल्ली प्रयागराज जा सकते हैं। कानपुर के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी बन रहा है। उन्नाव व कानपुर की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए गंगा नदी में अतिरिक्त ब्रिज की भी मांग पूरी की गई है। हम उन्नाव को पिछड़ने नहीं देंगे। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर व गंगा एक्सप्रेसवे पर इंडस्ट्रियल क्लस्टर विकसित करने के लिए जमीन अधिग्रहण हो चुका है। उन्होंने कहा कि डिफेंस कॉरिडोर के लिए लगभग 700 एकड़ और 200 एकड़ लैंड इंडस्ट्रियल क्लस्टर के लिए उन्नाव जनपद के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि लखनऊ से उन्नाव होते हुए कानपुर तक रैपिड रेल का प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। चारों ओर रिंग रोड बनेगी। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की तैयारी चल रही है। सरकार 100 वर्ष की कार्य योजना को लेकर कार्य कर रही है।
3: यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलप हो सके इसके लिए भी हम लोगों ने उन्नाव जनपद में जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई पूरी कर दी है और तेजी के साथ नए उद्योग अब उन्नाव जनपद में लगेंगे। यहाँ के नौजवानों को यहीं पे रोजगार प्राप्त होगा।
2: जिले के पुलिस लाइन ग्राउंड परिसर में राज्य ललित कला अकादमी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा व जिलाधिकारी घनश्याम मीना की उपस्थिति में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों शिक्षकों समाज सेवियों द्वारा सामूहिक योग अभ्यास किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि योग को मानव जीवन में महत्व के बारे में कहा कि योग स्वास्थ्य संतुलित एवं तनाव मुक्त जीवन का आधार है। उन्होंने सभी नागरिकों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए आह्वान किया। जिले में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सोरामू में आयोजित एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुई। इस अवसर पर उन्होंने निराश्रित 108 बालिकाओं से संवाद किया। इस दौरान राज्यपाल ने बालिकाओं की शिक्षा स्वास्थ्य रहन सहन और उनके भविष्य से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर जानकारी ली। उन्होंने बालिकाओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि समाज के प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित और बेहतर वातावरण प्रदान करना सरकार और समाज दोनों की ही सामूहिक जिम्मेदारी है। इस अवसर पर राज्यपाल ने निराश्रित बालिकाओं की सुरक्षा देखभाल और सुविधाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों एवं स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बालिकाओं के समुचित पालन पोषण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार कार्य करने पर जोर दिया। साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया कि बालिकाओं को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जाए। जिले में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान एवं दस्तक अभियान का शुभारंभ किया गया। जिला अस्पताल परिसर से शुरू हुए इस अभियान का उद्देश्य लोगों को संचारी रोगों से बचाव के प्रति जागरूक करना। इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने जागरूकता रैली निकालकर स्वच्छता और स्वास्थ्य सुरक्षा का संदेश दिया। जागरूकता रैली में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। बच्चों ने हाथों में संचारी रोगों से बचाव संबंधी संदेश लिखी तख्तियां ले रखी थी। उन्होंने नारे लगाकर लोगों को अपने घरों और आसपास के क्षेत्रों में साफ सफाई बनाए रखने की अपील की। छात्र छात्राओं ने लोगों को जल भराव से होने वाली खतरे के बारे में बताया। उन्होंने समझाया कि घरों के आसपास पानी जमा होने से मच्छरों का प्रकोप बढ़ता है जिससे डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां फैलती हैं।
1: उन्नाव जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हापुड़ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रविंद्र कुमार का।
4: इस सरकार की एक जनपद एक उत्पाद ODOP और वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन पहल के तहत हापुड़ के पेठे को आधिकारिक तौर पर शामिल किए जाने से हापुड़ के पेठा निर्माताओं और जनता में काफी हर्ष है। हापुड़ के पेठे को आगरा के समान राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिलेगी। वर्तमान में जनपद हापुड़ में 6 इकाइयां स्थापित हैं जो तरह तरह के पेठे बना रही हैं। सरकार की इस पहल के तहत हापुड़ जनपद में लगभग 150 नई पेठा इकाइयां लगाई जाएंगी जिससे पेठा उद्यमियों और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक इकाई पर पर 10 लाख रुपए तक का अनुदान सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। अब हापुड़ के पापड़ के बाद हापुड़ के पेठे को भी नई पहचान मिल रही है।
5: ये जो ODOC में हापुड़ के पेठे को जो शामिल किया गया है, इससे न केवल प्रदेश में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पे भी पेठे की पहचान बनेगी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सरकार का, जिन्होंने हमारे हापुड़ के पेठे को भी ODOC में लिया।
4: विश्व योग दिवस के अवसर पर हापुड़ जनपद में जगह जगह योग शिविर आयोजन किए गए, जिसमें लोगों ने योग के माध्यम से स्वस्थ रहने के गुर सीखे, योग क्रियाओं को करके स्वस्थ रहने और योग को अपने जीवन में उतारने का संकल्प भी लिया। हापुड़ जनपद में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह पहुंचे, जिन्होंने योग क्रियाओं को करके योग से होने वाले लाभ के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को एक नई पहचान दी है। वहीं हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण ने अवैध भूमाफियाओं की कमर तोड़ने का भी काम किया है। जिले में हजारों वर्ग मीटर में हो रही अवैध प्लाटिंग पर SPDA ने बुलडोजर की कार्रवाई की है। SPDA की कार्रवाई से अवैध प्लाटिंग माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। प्राधिकरण ने ऐसे कॉलोनाइजर को चिन्हित भी किया है जो अवैध प्लॉटिंग कर सरकार के राजस्व को लाखों करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे थे। SPDA क्षेत्र में कई जगह भू माफियाओं द्वारा अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी और बिना मानचित स्वीकृति प्लॉटिंग की जा रही थी, जिससे प्रदेश सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा था। साथ ही राजस्व को ऐसे भू माफिया चूना लगा रहे थे, साथ साथ लोगों को भी धोखा दिया जा रहा था, जिसकी सूचना के आधार पर SPDA के अधिकारी और कर्मचारी ने मौके पर पहुंचकर ऐसी अवैध प्लॉटिंग को चिन्हित किया जो राजस्व को चूना लगा रही थी। प्राधिकरण के अधिकारियों ने आम लोगों से अपील की है कि ऐसी किसी भी कॉलोनी या जगह पर प्लॉट न खरीदें जिसका मानचित्र स्वीकृत न हो, और ऐसे लोगों से भी सावधान रहें जो लोग मानचित्र स्वीकृति का वादा करके लोगों के साथ धोखाधड़ी कर प्लॉट बेचने का काम करते हैं। प्राधिकरण के अधिकारियों ने यह भी अपील की है कि अप्रूव्ड कॉलोनी में ही प्लॉट खरीदें ताकि सुरक्षित रह सकें। जनपद हापुड़ में आयुष्मान योजना लोगों के स्वस्थ रखने में वरदान साबित हो रही है। आयुष्मान योजना से लोगों को स्वस्थ होने का वरदान मिला है। 15 जून से आयुष्मान कार्ड के लाभ के लिए विशेष शिविर आयोजन किया जा रहा है। जनपद में कार्ड धारक इसका लाभ ले रहे हैं। अस्पतालों में आयुष्मान वार्ड बनाए गए हैं, जिनमें आयुष्मान कार्ड धारकों को प्राथमिकता के आधार पर भर्ती किया जाता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान कार्ड का लाभ देकर जन जन को स्वस्थ रखने का काम किया, जिसके लिए जनता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जता रही है। हापुड़ जनपद में पल्स पोलियो अभियान के तहत 692 बूथों पर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। जनपद हापुड़ में जिला अधिकारी कविता मीना के निर्देशन एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर किशोर कुमार आहूजा के नेतृत्व में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत 692 पोलियो बूथ का सफल आयोजन किया गया। अभियान के दौरान 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो रोधी दवा की खुराक पिलाई गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर किशोर कुमार आहूजा ने बताया कि जनपद में कुल 274,600 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। 15 जून से जनपद में आयुष्मान केंद्रों, CHC, आंगनबाड़ी केंद्रों, पंचायत सहायकों के द्वारा ऐसे लाभार्थियों के कार्ड बनाए जा रहे हैं जो कार्ड बनवाने से छूट गए थे। ऐसे लोगों को कार्ड बनवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। जनपद हापुड़ में मुहर्रम के पर्व पर ताजिया जुलूस और मातमी जुलूस निकाला गया। जनपद हापुड़ में अंजुमन हुसैनी के रजाकारों ने कर्बला के शहीदों को इस शहादत को याद करते हुए खिराजे अकीदत पेश की। आगामी मानसून एवं संभावित बाढ़ की चुनौती से प्रभावी ढंग से निपटने के उद्देश्य से जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हापुड़ द्वारा ब्रजघाट गंगा गढ़मुक्तेश्वर में व्यापक बाढ़ आपदा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल का उद्देश्य बाढ़ जैसी आपदा की स्थिति में राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारियों को परखना था, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना तथा आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता का परीक्षण किया गया।
1: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
6: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 9:25 हुए हैं। लोक संगीत के कार्यक्रम धरती गाती है में श्रोताओं आइए अब सुनते हैं अखिलेश कुमार की गाई रागनी।

आकाशवाणी नजीबाबाद से लोक संगीत के कार्यक्रम धरती गाती है में श्रोताओं आप सुन रहे हैं अखिलेश कुमार की गाई ये पूर्व प्रसारित रागनी।

0: लोक संगीत के कार्यक्रम धरती गाती है में श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे अखिलेश कुमार की गाई ये पूर्व प्रसारित रागनी। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 354 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 10 बजे हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत तुम्हारे। श्रोताओं नमस्कार, मैं धर्मेंद्र स्वागत करता हूं आप सभी का कार्यक्रम गीत तुम्हारे में। और श्रोताओं जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम होता है आपके व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित, तो जो भी श्रोता हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं अपनी पसंद के गीत, तो आप अभी सीधे हमारे स्टूडियो में हमें व्हाट्सएप भेज सकते हैं। और व्हाट्सएप आप हमें किस नंबर पर भेजेंगे वो नंबर बता रही हैं आपको हमारी साथी, हमारे साथ जुड़ी हैं निधि भारद्वाज।
1: नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आप सबको हम बताते हैं अपना व्हाट्सएप नंबर, नोट कर लीजिएगा 9457078288। इस नंबर पर जुड़कर आप अपनी पसंद के गीत की फरमाइश हमसे कर सकते हैं। और धर्मेंद्र जी, जैसे कि हम देखते हैं कि जो पुराने श्रोता हैं
0: जी,
1: वो तो बिफोर टाइम तैयार रहते हैं।
0: हाँ, बिल्कुल देख रहे हैं, 9:30 बजे से भी मैसेज आना शुरू हो गए, लेकिन नंबर बताना जरूरी होते हैं उन श्रोताओं के लिए जो नए हमारे साथ जुड़ते हैं।
1: जैसे कि जब हम छोटे थे तो हम भी सोचते थे कि अगर हम आकाशवाणी के केंद्र से कोई कार्यक्रम सुनते हैं तो इसका पता मालूम हो जाए, तो हमेशा हम ये मानते हैं कि हर दिन एक नया है तो नया साथी हमें मिल सकता है। और कार्यक्रम का पहला गीत अपने श्रोताओं को हम किस फिल्म से सुनवाएंगे?
0: गीत भी सुनवाएंगे लेकिन श्रोताओं के मैसेज तो आना शुरू हो गए, लेकिन श्रोता हमारे जैसे श्रोताओं को पता है कि इस कार्यक्रम में हम उनके पत्र भी शामिल करते हैं।
1: हाँ, पत्र भी मैं शामिल करने वाली हूँ और लगातार हम प्रयास करते हैं।
0: देख रहा हूँ कि बहुत सारे पत्र आपके हाथ में है।

0: इसमें कुछ पत्र ऐसे हैं जिनके हमारे पास व्हाट्सएप मैसेजेस भी है, जैसे कि पहला पत्र मैंने ले लिया, मेरे हाथ में है और देख रही थी मैं स्क्रीन पर, ये मैसेज भी करते हैं।
1: मौला हलवाईयान से श्रोता हमारे जुड़े रहते हैं।
0: हाँ, ये हमारे साथी मौला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से, मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी खान, बिट्टू भैया, शारदा रानी और हिना कौसर। और व्हाट्सएप पर आप इसको देखिएगा तो हमारे साथी हमसे जुड़े हैं।
1: व्हाट्सएप पे ये हमारे श्रोता हमारे साथ हैं, गांव गद्दा रोना से मदनगिरी, बिमलागिरी, बलरामगिरी, भारतगिरी, मधुगिरी, सोनिया, गोविंद, सिमरन, वंशिका और रमनगिरी के साथ हैं दिव्यागिरी।
0: पत्र एक और लेते हैं, आप हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव, मीका, बलविंदर, विरक, जैत विरक और मीका विरक।
1: और हमारे साथ मैसेज के माध्यम से ये श्रोता शामिल हो रहे हैं कार्यक्रम में, जिला अमरोहा नई बस्ती पतई खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद शिफान, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, अनाबिया सिद्दीकी, इनकी बिटिया है अलीशा, शकील, फहीम, मोहम्मद यासीन अंसारी और सुदेश चौहान।
0: धर्मेंद्र जी, बीच में ये कहना चाहती हूँ कि पत्र भी हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि पत्रों का जो कार्यक्रम है वो खत्म हो चुका है। पत्र आपकी फरमाइश या आपके पत्र मिला और गीत तुम्हारे में भी शामिल होते हैं।
1: पत्र तो हमारे श्रोता हमें भेजते हैं तो हम लगातार सभी कार्यक्रमों में शामिल करते हैं पत्र भी।
0: जी जी, तो फरमाइश कर रहे हैं जतुका किशनपुरा से पत्र के माध्यम से, आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान रही, इमरान राजा, आलम शेख और चांदनी नाज।
1: हाँ बिल्कुल, और हमारे ये श्रोता का मैसेज हमें मिला है और ये मैसेज हमें मिला है आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से, भेजने वाले हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर रही और महराज जहां।
0: ये फरमाइश हमें बिजली है मजनू का टेला से, कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना मध्य प्रदेश से, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक की।
1: और ये श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं नसीब रेडियो श्रोता संघ नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से, अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब, अब्दुल हक डावर और जिया उल हक डावर। और भाटापारा छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता हैं सोहन जोशी,
0: ये मैसेज हमें किया है शाहजी नगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से, संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे ने।
1: अगला मैसेज हमें मिला है शेरकोट बिजनौर से और भेजने वाले हैं निजामुद्दीन, रऊफ अहमद, मोहम्मद अरसलान, मोहम्मद हन्नान, महक। और ये अगला मैसेज हमारे श्रोताओं का हमें मिला है
0: कस्बा गैती से, देवेंद्र गुप्ता, धीरज कुमार गुप्ता, पंकज कुमार, प्रिंस कुमार, प्रशांत कुमार, कार्तिक गुप्ता और निर्भय गुप्ता का।
1: बिल्कुल, और मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं सोपान ताड़े, बसंतराव भोजने और पी एस नवानकर।
0: आप हैं हमारे साथी जलालाबाद वेस्ट से, सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी, निमित आहुजा।
1: हमारे श्रोता हमारे साथ देखिए जो है ना पत्रों के फोटो खींच के भेज रहे हैं लेकिन
0: इसको डाउनलोड करना पड़ता है और ये है पतई खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी और उनके बहुत सारे साथी,
1: लेकिन ये हम मैसेज शामिल कर चुके हैं
0: क्योंकि और ये है कि अगर आपको ऐसे पत्र ही भेजना है तो आप डाक से भेज सकते हैं और अगर आप इससे जुड़ते हैं व्हाट्सएप पर लिखकर भेज सकते हैं।
1: और ये मैसेज
0: कुछ साथी बहुत अच्छे ढंग से लिखते हैं, नंबर वाइज अपने नाम है तो सीधे सीधे हम पढ़ लेते हैं। मोहल्ला अफगानान शेरकोट से, नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर, मोहम्मद जैन, जन्नत।
1: और ये इस तरह से जो पत्र आते हैं ना निधि जी, तो इनको पढ़ने में बहुत आसानी भी होती है।
0: हाँ।
1: है ना, जो नाम है वो मैशअप नहीं होते,
0: बिना रुकावट के
1: पढ़ सकते
0: जैसे
1: हैं।
0: जैसे कि ये भी बहुत सुंदर ढंग से लिखा है, आप पढ़ के सुनाइए। कमल के फूल के साथ पहले कमल है, फिर एक नाम है, फिर एक कमल है, फिर एक नाम है,
1: स्पेस देकर उन्होंने नाम लिखा है।
0: आप है जैन मंदिर वाली गली कुरावली से कमल के फूल के साथ,
1: राशिद
0: अंसारी, नसीर अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी, एक पत्र का सुंदर सा तरीका और हमारे पास पहुंचा है सभी लोगों का। यह है रेलवे रोड गंज डुंडवारा से, मोहम्मद गलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबरीरुल हसन, बेगम शबनम अनवार, नाजमा बेगम नावत और सरिता गौतम।
1: और हमारे ये सभी श्रोता निधि जी सुनना चाहते हैं चालबाज फिल्म का एक गीत जिसे आवाजें दी है मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति ने। गीत के बोल हैं आनंद बख्शी के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: गीत के बाद श्रोताओं एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम है गीत तुम्हारे।
1: गीत तुम्हारे कार्यक्रम में हमें पत्र के माध्यम से जो फरमाइश मिल रही है उसको हम शामिल करते हैं। आप है पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री।
0: और हमारे साथ ये श्रोता जुड़े हैं मैसेज के माध्यम से, जिला मुरादाबाद गांव दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह।
1: पत्र मिला है छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जाविंद्र कुमार वर्मा का हमें।
0: और ये मैसेज श्रोताओं ने हमें भेजा है रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से। भेजने वाले हैं उदय भान पाल, जय हिंद पाल, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश, दिव्यांश बघेल और इनका पूरा परिवार।
1: और ये अनुरोध किया है खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद ने अपना पत्र लिखकर, और लिखा है ये पत्र हमें जिला खंडवा ग्राम लोहरी से हमारे

0: साथ ही राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे और गायत्री धनजे ने भी।
1: गांव नीमनाबाद, जिला जींद, हरियाणा से हमारे श्रोता हैं जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, करमजीत कौर।
0: और ये मैसेज है नेहरू चौक पैठण से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बेबी सिया जाधव जालना शहर से भेजते हैं अपने अनुरोध। सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष जाधव, चंदन जाधव, एकनाथ जाधव और संगीता जाधव भी।
1: और हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख और करोला मुरादाबाद से हैं यूब खान, इरम गुड़िया, शुएब खान।
0: विनोदपुरी वीपी, रंजू अशोकपुरी, सुशीलपुरी, बीकेपुरी, कैलाशपुरी, नीलमपुरी, रमापुरी, पालीपुरी, सुनील पाठक और वीकेपुरी के साथ हैं विनोदपुरी फिर से, मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना से।
1: बिल्कुल, और सलार पहलगाम कश्मीर से हमारे साथ हमारे श्रोता जुड़े हैं पीरजादा मिराज।
0: और ये अगला मैसेज है हमारे पास ग्राम नगला उबन नजीबाबाद जनपद बिजनौर से, ठाकुर विजयपाल सिंह, जबर सिंह, जयपाल सिंह, राहुल, सचिन, सविता, नोनी, लालू, नमन, केजल, छोटी शिवी, क्रीधा, ओम प्रकाश, बलवंत, पूनम और इनके परिवार के सदस्यों का।
1: लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झाड़ावाड़ राजस्थान से हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं हर्षिता रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी, मनोहर भाई बागरी और प्रभुलाल बागरी।
0: ग्राम धनसनी नजीबाबाद जनपद बिजनौर से हैं मुनेश कुमार प्रजापति, दिनेश कुमार प्रजापति, महेंद्र प्रजापति, मुकेश, राजू, राजकुमार और राधेश्याम जी।
1: गांव नांगल सोती से हमारे साथ हमारे श्रोता जुड़े हैं मोहम्मद असलम पेंटर और तेलंगाना निजामाबाद से हैं हमारे श्रोता हैं निधि जी,
0: शेख अल्लाह बख्श, बेगम रबिया, राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, दानिश आसिफ शेख जी। और ये हमारे पास जुड़े हमारे साथी मनाली हिमाचल से हर्ष, विनय, विनीत, रोजस भाई, चंडीगढ़ सिटी से अपनी फरमाइश भेज रहे हैं शेफ अली, शेफी, डेविस, बिमला और सतीश अनेजा।
1: और ये हमारे श्रोता हैं मरहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, अनम यशफ अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी और रसीद वारसी, और किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से हैं जुबैर अली खान। और ये सभी श्रोता निधि जी सुनना चाहते हैं फिल्म चमत्कार का गीत, आवाजें कुमार सानू और अलका याग्निक की, गीत आनंद बख्शी का है और संगीत अनु मलिक का।

0: कार्यक्रम गीत तुम्हारे में एक बार फिर से स्वागत है हमारे साथियों का। और साथियों जो नए हमारे श्रोता जुड़े हैं उनको हम बता दें, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से कार्यक्रम गीत तुम्हारे। और इस पर अपनी पसंद का गीत सुनने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी पसंद के गीत के लिए 9457078288 इस नंबर पर।
1: बिल्कुल, नंबर एक बार फिर से बता दें, 94-570-78-288 इस नंबर पर श्रोताओं आप हमें अपनी फरमाइश भेज सकते हैं, सुन सकते हैं अपनी पसंद का गीत। और ये कुछ पत्र निधि जी आपके हाथ में है।
0: हाँ जी, ये हमारे साथी हैं ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से, मानिक राम प्रजापति, रीमती जानकी प्रजापति, घनश्याम हरिशंकर प्रशांत और रत्नेश प्रजापति जी। और एक और फरमाइश हमें मिली है, खेल साय मरकाम, नयन प्रकाश मरकाम, शारदा मरकाम, संतोषी मरकाम, रूपमती और नरकाम की। आप हैं हमारे साथी खेल जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से ही।
1: और भोपालगढ़ राजस्थान से हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा और पूजा परिहार। और ये श्रोता हमारे साथ हैं जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से, मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज, आयुषी, रमेश चंद, शेख मूसा, राजकुमार बोडाना, सुदामानगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, रितु और मुकेश जगताप।
0: और ये हमारे पास एक और पत्र हम ले लेते हैं, हमारे साथी हैं आप, इनका मैसेज भी शायद आ चुका गांधी चौक रोपड़ पंजाब से।
1: हाँ, ये तो, और ये इनके तो साथियों पत्र का भी हमने शामिल किया है।
0: हाँ, और ये भी हो गया, सब हो गया,
1: एक मैसेज और हमें मिल गया है, आप तब तक पत्र देखो। और ये मैसेज हमें मिला है उत्तम नगर दिल्ली से, भेजने वाले हैं बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश, गाँव जीतपुर खास पोस्ट नांगल सोती से। ये मैसेज हमें मिला है इशिका चंचल, आरव राजपूत और रंजना का।
0: आदर्श नगर मलोट से हमें पत्र भेजते हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा। और ये मैसेज हमारे पास आया है ग्राम फरासी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी का। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित राय, हैप्पी राय हमसे जुड़े हैं। और साथ ही अपना अनुरोध भेजते हैं दुविधा निवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और परांजल राय।
1: ये अगला मैसेज हमें भेजा है शाही मार्केट सिहारा जिला बिजनौर से आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना अराफात, अदीब और कादिर चौधरी।
0: नगर पंचायत बरहापुर बिजनौर से एम ताहिर और एम उजैफ, मालियान सरधना मेरठ से हमें फरमाइश भेजते हैं, अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन और इनके परिवार के सदस्यों के साथ जीवीएम जैन।
1: और ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं फिल्म बंटी और बबली का ये गीत, जिसे आवाजें दी है महालक्ष्मी अय्यर और सोनू निगम ने।

आकाशवाणी नजीबाबाद से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत तुम्हारे, और कार्यक्रम का अगला गीत श्रोताओं हमने लिया है फिल्म हाँ मैंने भी प्यार किया से। आवाजें हैं कुमार

0: सानू अलका याग्निक की, गीत समीर का और संगीत नदीम श्रवण का। और इस गीत को सुनने के लिए फरमाइशी मैसेज हमें मिले हैं
1: मगनपुर झारखंड से अब्बास आलम, अमजद अली, लाडली और बीबी निशा और इनके सभी मित्रगण।
0: कृष्ण की नगरी मथुरा से सबा अंसारी, शकील अंसारी, हिना अंसारी, बुशरा, गुलिस्ता रानी, नंदिनी और अंजलि।
1: आप हमारे साथी गांव जाखूत राजस्थान से समुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक और कुमारी पूजा खटक।
0: और ये श्रोता हमारे हैं सप्तरंग श्रोता परिवार कुंभार गली श्रीरामपुर से, भेजने वाले हैं अशोक दले, सविता दले, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश और जीविका दले। और पुनावले पुणे से हैं अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका और विशाखा सोनवने।
1: ये हमें मिला है पत्र मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगी सापुर से, मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन निशा, शबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक और लुबना का।
0: संघ मित्रा श्रोता संघ वार्ड नंबर 1 पोफाली जिला यवतमाल से हमारे श्रोता हैं जयराम सिंगणकर, दिशांत कुमार सिंगणकर और अर्पिता।
1: ये साथी हैं बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, पार ढींगिया जी। और ये हमारे
0: श्रोता हैं टोरोवाल नवा शहर पंजाब से गगनदीप धांधी, तृप्ता कुमार थांदी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, बेबी वामिका और वाणी थांदी।
1: आप हैं हमारे साथी गीत काली छठा। अच्छा ये अलग से इनके बाद मजनू का टीला से, मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और ये पुनः आ गया है ना। तो कल भी हमने अनुरोध किया था, हमेशा करते हैं कि जो साथी घर में अगर 5 फोन है तो अगर आपने 5 से मैसेज कर दिया और एक शामिल हो गया तो उस समय उसको रोक दीजिएगा। और ये हमारे साथी हैं
0: कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक। ये मैसेज पत्र हम शायद शामिल कर चुके हैं,
1: सबसे पहला था मोहम्मद वकार फरीदी साहब का। और आप सुन रहे होंगे कार्यक्रम को। आप हैं राजधानी रायपुर से नीलू में एक नीलम, डॉक्टर वंदा कुमार, बिट्टू कुमार और इनके परिवार के सदस्य राजधानी रायपुर से थे आप। और ये है हमारे पास अगली फरमाइश
0: नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। ये मैसेज भी हम शामिल कर चुके हैं।
1: मुकेश कश्यप जी का पुनः हमें दिखाई दे रहा है। और आप हैं हमारे साथी पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह,
0: कमल बालूजा। ये मैसेज भी शामिल हो चुका है। देखिए दोबारा से और डिजाइन और बदल बदल के है ना मैसेज करते हैं शो का हमारे।
1: लेकिन नाम हमें भी, हम भी तो आपके साथी हैं ना, हमें आपके नाम याद हो चुके हैं।
0: ये देखो ये भी फिर तीसरी बार ये मैसेज है। हम श्रोताओं से अनुरोध करेंगे, देखिए अलग अलग नंबर से और मैसेज बदल बदल कर ना करें। देखिए मैसेज तीन तीन बार, चार चार बार हमें मैसेज फ्लैश हो रहा है यहाँ पे, तो स्क्रॉल करने में बड़ी दिक्कत होती है हमारे श्रोता।
1: पंजाब से सुभाष गोदरा, विमला गोदरा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदरा,
0: मुंदीचक भागलपुर बिहार से हमारे श्रोता है दिलीप कुमार सोनी, सतीश मिगलानी, सीमा मिगलानी, विवान मिगलानी, ये हमारे श्रोता हैं मलोट पंजाब से।
1: इरशाद हुसैन अंसारी, सैयद चारिक अली, मेराज अंसारी, बाबू अंसारी, मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से।
0: तो लीजिए आप सभी श्रोता सुनिए फिल्म हाँ मैंने भी प्यार किया का ये गीत।

0: कार्यक्रम गीत तुम्हारे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। आज मैं आपके साथ हूं आपके सखी निधि भारद्वाज और हमारे साथ हैं
1: और मैं हूं श्रोताओं आपके साथ धर्मेंद्र। और चलिए श्रोताओं कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं आपको हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद पर फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड का ये गीत। आवाजें हैं ऐश किंग और शाशा तिरुपति की और फरमाइश है हमारे इन सभी श्रोताओं की।
0: कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा और सीटी दीवाना।
1: और ये श्रोता हमारे साथ हैं मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला सुरलकर आरती चिड़िया।
0: नाला सोपारा मुंबई से मोहम्मद आशिफ शेख बेगम रूमा माहिरा शेख नौमान शेख सुलेमान शेख और शेख मोहम्मद कलीम।
1: जिला बिजनौर पोस्ट बसी किरतपुर से हमारे श्रोता हैं जकी मिर्जा और इनके दोस्त हैं सलमान अख्तर।
0: ये फरमाइश भेज रहे हैं ग्राम लसूड़िया बाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव मुस्कान वैष्णव दिव्या सुमन कोमल परी कृतिका रमेश चंद्र डांगी जी।
1: और जेल रोड जालंधर से हमारे श्रोता हैं अमरजीत सोनम कौर परमजीत आसमा कौर और धर्मजीत फातिमा कौर।
0: छठिया पोखर डुमराव से फातिमा वली वेलदार डब्लू वली वेलदार आसमा वली वेलदार सोनम वली वेलदार जी और बिहार भवन दिल्ली से सैफुद्दीन कुटरिया उल्लाह वली कुटरिया भी हमें अपनी पसंद के गीत के लिए अनुरोध कर रहे हैं।
1: बिहार से हमारे श्रोता हमारे साथ हैं लेकिन कहाँ से हैं ये इन्होंने नहीं लिखा। और चलिए नाम हम अपने श्रोताओं के पढ़ देते हैं। ये है मोहम्मद याकूब आसमा फकीर मोहम्मद यूसुफ आसमा फकीर मोहम्मद सलीम आसमा फकीर और मोहम्मद कलीम आसमा फकीर।
0: आप हैं लोकू कॉलोनी लोहारू हरियाणा से बिल्लू सिंह चिंडालिया लक्ष्मी देवी सुरेंद्र कुमार चिंडालिया बरखा योगेंद्र कुमार चिंडालिया नरेंद्र कुमार चिंडालिया और इनके बहुत सारे साथी।
1: और ये हैं हमारे श्रोता हितेंद्र।

0: दास और लिखते हैं
1: आसाम
0: आसाम
1: से
0: से, इन्होंने भी जगह नहीं लिखी, केवल लिखा है स्टेट आसाम।
1: मोहम्मद इकबाल ग्राम जाजुरी जिला अमरोहा से अपने गीत को सुनने की फरमाइश भेजते हैं।
0: और ये हमारे श्रोता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं रविंद्र, अभिषेक, मोनी, सोनी, पवन, रॉबिन, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से।
1: और काफी पत्र हमने शामिल कर लिए हैं, लगता है कि गीत सुनवाया जाए। लेकिन एक और फरमाइश लेते हैं अभी। चांदनी चौक बिहार से सरफुद्दीन जाटव, फातिमा जाटव और सोनम वली जाटव और इनके साथी
0: चलिए, और सरगुजा मैन पार्ट से हैं रूबीना थापा, सोनम थापा, सोनिया थापा, रेशमा थापा, और जुट मिल रायगढ़ से हैं डब्बू बेलदार। ये मैसेज तो मेरे ख्याल से हम शामिल कर चुके हैं।
1: नहीं
0: चलिए
1: नहीं नहीं
0: तब
1: वैसे
0: तक हमें और मैसेज मिलते हैं, हम एक बार श्रोताओं को अपना नंबर फिर से बता देते हैं। हमारा नंबर है 94-570-78-288। इस नंबर पर श्रोताओं आप हमें व्हाट्सएप भेज सकते हैं और सुन सकते हैं अपनी पसंद का गीत। अभी समय काफ़ी है, और चलिए तब तक हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड का ये गीत।

0: और श्रोताओं, कार्यक्रम के अगले गीत के लिए ये हमें फरमाइशी पत्र हमें मिला है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। भेजने वाले हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा और कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल।
1: आप हैं हमारे साथ ही ग्राम पंचायत काले गांव जाफराबाद से श्री

0: देशमुख।
1: और ये पत्र हमें मिला है परिमहल कासगंज से, आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान और असलम सैफी का।
0: मोहिले नांदेही जिला बिजनौर से शालू वर्मा, रिया वर्मा, नैना वर्मा, मेधा वर्मा, गीता वर्मा, वीरेंद्र वर्मा, गुड्डू वर्मा और अनीता वर्मा।
1: यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से ये मैसेज हमें मिला है और ये भेजने वाले हैं संतोष खड़से और विनोद खड़से।
0: रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से फरमाइश कर रहे हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना और हर्षित।
1: समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति सिंह, रोहतास बिहार से सोनम सिंह और अनामिका सिंह।
0: आप हैं हमारे साथी,
1: ये मैसेज
0: दोबारा
1: हम
0: आ गया आपका।
1: हाँ
0: ताज मोहम्मद अंसारी साहब लक्सर हरिद्वार से, औरों को भी मौका दीजिएगा। आप तो हमारे कार्यक्रम में हमारे पुराने साथी हैं, अच्छे लगते हैं आप हमें, और साथी भी आएंगे तो बढ़िया लगेगा। संभलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव।
1: और दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से हमारे ये श्रोता हैं मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज और चाहत।
0: ये फरमाइश हमें भेज रहे हैं नरगौड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, गिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी।
1: उत्तम नगर दिल्ली से हैं बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश।
0: नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहार से मुसरत जहानाज, तलत जहानाज, फरत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत जहानाज, साजिया शाहीनाज के साथ हैं नाजिया नूरीनाज।
1: तो चलिए निधि जी, इन सभी श्रोताओं को सुनवा देते हैं इनकी पसंद का गीत। ये सुनना चाहते हैं फिल्म तुमको ना भूल पाएंगे का ये गीत। आवाजें हैं अलका याग्निक और कमाल खान की। गीत है जलीश राशिद का और संगीत साजिद वाजिद का।

0: तो कार्यक्रम का अगला गीत निधि जी हमारे कौन से श्रोता हैं सुनना चाहते हैं?
1: आप हैं वटिंग खेड़ा पंजाब से मिट्टू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा।
0: और ये श्रोता हैं हमारे फुलोंग निजामाबाद तेलंगाना से एम ए वहीद रूमानी, डॉक्टर मोहम्मद जमीर, मोहम्मद फासी, मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद मुकर्रम, मोहम्मद नौमान फुरकान और मोहम्मद जाकिर।
1: ये हमारे साथी भी सुनना चाहते हैं अपना पसंद का गीत। राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली युवान और आर के राजा लाल कुर्ती रुड़की कैंट से।
0: दीदार रेडियो श्रोता संघ बिलग्राम गेट कासगंज से एम असलम सैफी, जैबुनिशा बेगम, अक्रम सैफी, जाहिद सैफी, सद्दाम सैफी, सोनी सैफी और आबाद खान।
1: ये फरमाइश मिली है पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत और सुलोचना भगत की।
0: श्री गणेश अविका आर्ट श्रीरामपुर से डी अशोक कुम्भार, अविका जीविका सानू कुम्भार और अर्चना कुम्भार। और कोयते वस्ती पुनावले से हमारे श्रोता हैं अजय सोनवणे, करिश्मा, अविका और साइशा।
1: ये फरमाइश हमें भेजी है, इसमें पत्र तो बहुत बड़ा है और लिखा है कि सभी का कार्यक्रम अच्छा है,
0: चलिए
1: नाम
0: दूसरा
1: रह
0: नाम वगैरह
1: गया,
0: इन्होंने नहीं लिखा।
1: खुशहाल रहें, जय हिंद। बस चलिए, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं और हम आपको बताते हैं कार्यक्रम की तुम्हारे आकाशवाणी के नजीवा बात केंद्र से इस समय प्रसारित किया जा रहा है। डॉक्टर
0: जिनेंद्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से हैं हमारे श्रोता हैं, नाम आप पढ़ दीजिए।
1: रुपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई और प्रीतेश संघई के साथ पूरा संघेश
0: चलिए और इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर सुनवाते हैं इनको गीत उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज में, जिसे हमने लिया है फिल्म तुमसा नहीं देखा से। गीत के बोल हैं समीर के और संगीत नदीम श्रवण का।

0: निधि जी, देखो कार्यक्रम का समय भी समाप्ति की ओर
1: जी
0: है ना,
1: बिल्कुल,
0: तो चलते चलते हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं चलते चलते फिल्म का ही गीत, है ना,
1: वाह।
0: और आवाज है किशोर कुमार की।
1: और इस गीत को सुनना चाहते हैं कबीर, रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से, देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका प्रभा देवी और मास्टर अल कबीर। और ये गीत सुनना चाहते हैं आप भी हमारे साथी।
0: जनकपुरी सहारनपुर से हैं जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पल डिकैस्ट्रो और विलिस डिकैस्ट्रो।
1: कस्बा अग्रवाल टंडी टटीरी बागपत से आसिफ अली खान, मोमिना नाज, मुस्कान आसिफ, सादिक अली खान, सारिक अली खान।
0: लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से ये हमारे श्रोता हैं विश्वनाथ साहू, पंकज साहू और तिरुपति साहू।
1: गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी जी अपने अनुरोध करते हैं।
0: जिला हिंगोली महाराष्ट्र से ये हमारे श्रोता साहजी बोड़के, श्रीमती नंदा बोड़के, हनुमान बोड़के और उत्तम जमदाड़े।
1: जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से
0: ये मैसेज
1: ये
0: शामिल हो
1: पुनः
0: चुका है
1: आ
0: कार्यक्रम
1: गया
0: में।
1: है
0: जी
1: एक
0: जी
1: और नया दंबर से, और कासगंज से मास्टर राधे श्याम शक्के और ये इनके साथी।
0: गांव भोजपुर तागा सहारनपुर से मोहम्मद इंतजार, मोहम्मद जावेद, राहत अली खान, जाकिर हुसैन और वकील अहमद।
1: गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, धनंजय कटनकर, सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार और नसीम बेगम जी।
0: हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली सोनम और आशीष विश्वकर्मा। तो लीजिए आप सभी श्रोता सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म चलते चलते का ये गीत।

देखिए श्रोताओं, अलविदा तो आपसे अब कहना पड़ेगा क्योंकि कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। तो इसी के साथ कार्यक्रम संपन्न करने की मुझे यानी धर्मेंद्र को दीजिए अनुमति, और आगे कार्यक्रम में आपके साथ जुड़ी रहेंगी हमारे साथी निधि भारद्वाज।

श्रोताओं के पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत तुम्हारे आप सुन रहे थे। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 11 बज रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम चित्रपट संगीत में स्वागत करते हैं और सुनवाते हैं आपको पहला गीत लता मंगेशकर और एसपी बालसुब्रमण्यम के स्वर में। संगीत राम लक्ष्मण का है और शब्द रचना है देव कोहली की। फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन। साथियों, शादी का माहौल बन रहा है ना। कुछ लोग अपनी छुट्टियों के बाद शादी ब्याह में भी व्यस्त हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो पुरानी यादों को ताज़ा करना चाहते हैं। तो ऐसे में ये प्यारा संगीत आपके लिए है।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: चित्रपट संगीत का एक कार्यक्रम श्रोताओं आप सुन रखे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, उदित नारायण और श्रेया घोषाल की युगल आवाज में। संगीत रविंद्र जैन का है और शब्द रचना है रविंद्र जैन की ही। फिल्म का नाम है विवाह। दो लोगों का मिलना, केवल मिलना ही नहीं बल्कि हमें इसे नियति का कुछ आदेश भी मांगना चाहिए, और ऐसे में जब किसी पर अपना अधिकार होता है तो उसे वो अधिकार देना भी चाहिए कि वो हमसे कुछ भी कहे, उसके मन की बात हम सुने बहुत अच्छे ढंग से। जैसे वो कह सकता है कि शब्द मेरे होते हैं, शब्द मेरे होते हैं और एहसास तुम्हारा होता है। जब कोई भी प्रेम गीत इस दिल से रवाना होता है,

शादी में जरूर आना। ठीक है, हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन उस जगह जब कभी हम बुलाएंगे, लेकिन ये तो फिल्म का नाम है फिलहाल, शादी में जरूर आना। इस फिल्म का ये नगमा सुनिए, अशित त्रिपाठी के स्वर में, संगीत राशिद खान का है और गीतकार हैं शकील आजमी। हर समय किसी की चाहत का होना बस यही एहसास दिलाता है कि हम हर समय उसके साथ रहें, हिफाजत करें, बस इतना कह सकते हैं, मेरे इस दिल को तुम रख लो, मेरे इस दिल को तुम रख लो, बड़ी फिक्र रहती है से तुम्हारी।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: चित्रपट संगीत आप सुन रखे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और समय हो चला है हमारा दिन के 11:20। उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज़ में लीजिए सुनेगा कार्यक्रम का ये अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म बागवान से। संगीत आदेश श्रीवास्तव का है और गीत के बोल लिखे हैं समीर ने। मन मयूर नाचता है कभी, कभी उदास हो जाता है, कभी किसी के बारे में ख्यालों में खो जाता है, कभी अपनी ही बातों को भुला देता है ये दिल ये दिमाग। क्या ये प्यार है? देखिए हम तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि सबका अपना अपना अनुभव है, अपना अपना ख्याल है। हम तो बस यही कहेंगे कि दिल धड़कने का सबब याद आ गया, वो तेरी याद थी अब याद आ गया।

भाई कुछ तो होने लगा, ये तो पता चल गया कि पहली बार कभी ऐसा एहसास हो जाता है तो समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम आपको खूब समझते हैं। आप हमारे सुधीर श्रोता हैं और संदेश हम आपको बस यही देना चाहते हैं कि गीत संगीत तो आप खूब सुनेगा, लेकिन जीवन में कोई एक ऐसा उद्देश्य ज़रूर रखिएगा जिससे न केवल आपका फ़ायदा हो बल्कि औरों को भी उसका सुखद एहसास हो। सुनते रहेगा चित्रपट संगीत का एक कार्यक्रम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और जुड़ते हैं अगले गीत के साथ कुमार सानू और संजीवनी की युगल आवाज में। राहत इंदौरी के लिखे गीत को संगीत से सजाया है अनु मलिक ने और फिल्म का नाम है करीब।

श्रोताओं, दिल की बात एक अच्छी बात अभी हमने सुनी, और दिल की चोरी करना तो ठीक है लेकिन चोरी करना ही गलत है। दिल ये कहता है कि जो हमारे अपने हैं वो हमेशा खुशी से रहें, सुकून से रहें, और जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, हमारी यादों में रहें। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, वो लम्हे फिल्म से प्रीतम का संगीत, शहीद कादरी के लिखे गीत को आवाज़ दी है ग्लेन जॉन ने। एक चेहरा है, एक चेहरा है जो आँखों में बसा रहता है, एक तस्वीर है जो तन्हा होने नहीं देता।

वो लम्हे। इस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। इस समय आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम। आइए श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत सोनू निगम और श्रेया घोषाल की युगल आवाज में। फिल्म का नाम है लगे रहो मुन्ना भाई। गीत के बोल लिखे हैं स्वानंद किरकिरे ने और संगीत दिया है शांतनु मोइत्रा ने। जिंदगी के हर पल में अपनों का साथ हो, बस ऐसा हो जाए तो बस क्या ही बात हो।

फिल्म मर्डर 2 में आपने सुना मोहम्मद इरफान, अरिजीत और शमित सैम भट्ट को। संगीत मिथुन का था और शब्द रचना थी सईद कादरी की। चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम श्रोताओं आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। और देखिए आपके साथ वक्त कैसे गुजर जाता है हमें तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि आप हमारे साथ हैं तो फिर आपके साथ समय का एहसास भला कैसे हो सकता है। यही खासियत होती है कि जिन्हें हम प्यार करते हैं, जिनके हम साथ रहते हैं, या यूँ कहें कि जिनके साथ हम काम भी करते हैं, उनके साथ भी समय बहुत अच्छे से कट सकता है यदि हमारा व्यवहार अच्छा हो। तो आइए सुनते हैं हिमेश रेशमिया और तुलसी कुमार की युगल आवाज में फिल्म अक्सर का ये गीत। संगीत है हिमेश रेशमिया का और गीत के बोल लिखे हैं समीर ने।

श्रोताओं, चित्रपट संगीत का अंतिम गीत अब हम आपको सुनवाने वाले हैं इश्किया फिल्म से। राहत फतेह अली खान के स्वर में विशाल भारद्वाज का संगीत है और गीतकार हैं गुलजार। और इस गीत के साथ ही हम आपको अगले कार्यक्रम का भी बता देते हैं कि एक ज़रूरी बात क्या है। संदेश अगले कार्यक्रम का ये है कि जिंदगी लाइव कार्यक्रम में 12:05 पर आपकी सगे निधि भारद्वाज के साथ आप करेंगे आज ढेरों बातें अपने अनुभव के, और विषय रहेगा सार्वजनिक स्थानों की साफ सफाई या सार्वजनिक वाहनों की साफ सफाई और हमारा दायित्व। ये दोनों ही चीज़ हम लेंगे। सार्वजनिक वाहन सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे और उसमें हमारा दायित्व पर हम चर्चा करेंगे, फिर अन्य बातें आपसे होती रहेंगी। दिन में 12:05 पर आज आप जुड़ जाइएगा मैसेज के माध्यम से हमसे। और अब कार्यक्रम का अंतिम गीत आपके लिए

फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12 बज रहे हैं। आइए श्रोताओं, अब हम आपको देते हैं संक्षिप्त जानकारी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

जिंदगी लाइव ये कार्यक्रम आप सुनेंगे अब से कुछ ही देर में दिन में 12:05 पर। व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित ये कंपेयर्ड कार्यक्रम में आज हमारा विषय रहेगा सार्वजनिक वाहनों की सफाई और हमारा दायित्व। महिला जगत बहने सुन सकेंगे दिन में 1:15 पर, जिसमें आज के आकर्षण रहेंगे आधी आबादी से सजना है मुझे मेरी पाकशाला और गीत संगीत का आनंद भी आप ले सकेंगे।

लोक संगीत के कार्यक्रम लोकधारा के अंतर्गत आज आप सुनेंगे विविध कलाकारों के स्वर में हरियाणवी लोकगीत। एक ही गीतकार फिल्म संगीत पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 2:30 पर। दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे भरत व्यास एक ही गीतकार के कुछ गीत।

मेरा सपना उन्नत भारत, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 5 बजे, जिसमें आज आप सुनेंगे बच्चों की शिक्षा को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों पर जानकारी। जानकारी के विषय रहेंगे बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम यानी NPEGEL, और इसके अलावा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, और एक और विषय रहेगा अल्पसंख्यक संस्थानों में आधारभूत संरचना विकास योजना।

आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत विशेष पॉडकास्ट श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ सुनिएगा हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल देवेंद्र सूरा की ये बातचीत। हम इस कार्यक्रम को अपने दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे। समय रहेगा शाम 5:10।

शाम 5:35 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी, जिसमें आज के आकर्षण रहेंगे कुछ खास है आज, गीत आपके नाम और बूस्टर्स। शाम 6:05 पर किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत प्रसारित किया जाएगा, जिसमें आज का आकर्षण रहेगा लोक गीतों व रागनियों का फरमाइशी सजीव पुनीन कार्यक्रम हेलो लोक मंजरी।

शाम 6:45 पर विविधा क्रम में डॉक्टर नीरजा शर्मा से ज्योतिपाल की पूर्व प्रसारित बातचीत आप सुनेंगे। भेंट वार्ता का विषय रहेगा एग्रो पर्यटन के क्षेत्र में संभावनाएं। सुगम संगीत में शाम 7:32 पर आप आनंद लेंगे। भजन का कलाकार होंगे रामेश्वर प्रसाद शर्मा। राष्ट्रीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती और संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, ये दोनों कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे। राष्ट्रीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती सुनेगा 9:30 पर और 10:00 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। तो श्रोताओं, ये थी कुछ कार्यक्रम संबंधित जानकारी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं के व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित और हमारी कंपेयरिंग पर आधारित ये कार्यक्रम जिंदगी लाइव।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम जिंदगी लाइव लेकर हाजिर हो गई हूँ मैं आपकी सखी निधि भारद्वाज। कहिए कैसे हैं आप, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, जुड़े हैं अपने कार्यक्रमों में, लेकिन हमारे साथ हैं। और अब जब साथ आपका और हमारा बन ही गया है तो हम आपको बता दें, जिंदगी लाइव कार्यक्रम होता है आपके ही साथ से, क्योंकि आज हम आपके व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित इस कार्यक्रम से ही कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो इसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। इस नंबर पर जब आपके हमें मिल जाएंगे विचार तो ये कार्यक्रम एकदम लेगा रफ्तार। और जब तक ये रफ्तार लेता है, हम आपको बता तो दें, हमारा विषय है सार्वजनिक वाहनों की सफाई और हमारा दायित्व। यानी कि इस कार्यक्रम में हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे हम कहीं के यात्रा करते हैं, कभी हम बस में जाते हैं, कभी हम ट्रेन में जाते हैं, कभी छोटी छोटी यात्राएं करते हैं, रिक्शा में भी बैठते हैं, ऑटो में चलते हैं, मिनी बसेस में चलते हैं, सिटीज में घूमते हैं, तो ये टॉपिक जानते हैं क्यों लिया हमने, क्योंकि जब अभी कुछ दिनों में छुट्टियां पड़ी तो हम भी अपने बच्चों के साथ घूम रहे थे, तो देखा कि जिस बस में हम बैठे थे एकदम से झटका लगा और पैर के पास एक प्लास्टिक की बोतल टकराई। देखा क्या है भाई, देखा किसी का पिया हुआ थोड़ा सा पानी बस में इधर उधर लुढ़क रहा था बस। तभी बात दिमाग को अटक गई और सोच लिया कि जब भी जिंदगी लाइव कार्यक्रम होगा ना, अपने श्रोताओं से पूछेंगे, भाई क्या यही हमारी लाइफ है? भाई हम क्या डस्टबिन में रहते हैं? क्या आप डस्टबिन में रहते हैं? यानी बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं नहीं, हम गंदगी में रह ही नहीं सकते हैं। जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं तो फिर आसपास के माहौल की सफाई क्यों नहीं रखते भाई। सार्वजनिक वाहन भी तो हमारे लिए ही है। अगर मान लीजिए एक बस में खाने पीने के बाद चिप्स का पैकेट छोड़ दिया, पानी की बोतल छोड़ दी, मूंगफली के छिलके वहीं हमने डाल दिए, तो ये गंदगी के बीच में तो हम बैठते ही हैं, जो कि अच्छा मैसेज नहीं देती। साफ पता चल जाता है हमें सफाई पसंद नहीं है। दूसरी बात, जो व्यक्ति हमारे बाद आकर बैठने वाले हैं उनकी क्या गलती है? अगर वो सफाई पसंद हो तो उन्हें बैठना पड़ता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि सार्वजनिक वाहन में कोई टोक देता है तो भाई व्यक्ति लड़ने को तैयार हो जाते हैं। सही है क्या ऐसी बात? फिर बोलो बिल्कुल नहीं। तो ये मेरा नहीं क्या आपके नहीं से मैच करता है? देखिए, हम आपके मैसेज का कर रहे हैं इंतजार। लिखकर भेज दीजिएगा अपने विचार। और ये एक साथी जुड़ भी चुके हैं, आपका मैसेज हम शामिल कर लेते हैं और फिर उस पार गीत के साथ आपके साथ चलेंगे। आप लिखते हैं, कार्यक्रम पेश करने वालों को नमस्कार। निधि बारा जी मैम, हमारा प्यार भरा नमस्कार। जिला संभल ग्राम सिरसा से सचिन प्रजापति, कुश प्रजापति, वैष्णवी प्रजापति, हितांशी प्रजापति और पूरा प्रजापति परिवार सार्वजनिक जगह की साफ सफाई करने के बारे में बता रहा है। लिखते हैं कि सार्वजनिक जगह की साफ सफाई करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम ही साफ करेंगे तो हम ही उसका लाभ उठाएंगे। बस यही बात तो हम कह रहे थे ना, सार्वजनिक स्थान हो या सार्वजनिक वाहन हो, भाई हमें दोबारा भी जाना पड़ेगा, हमारे रिश्तेदार भी आएंगे, हमारे बच्चे भी उसी रास्ते से निकलेंगे। तो लिखते हैं आप आगे, हम ही उसका लाभ उठाएंगे। कहीं पर गंदगी दिखे तो एक दूसरे के ऊपर न डालने, बल्कि खुद ही उस काम को कर डालें। और लिखा है, मैसेज पढ़ने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अरे धन्यवाद की तो क्या ही बात है, आपके साथ तो ये कार्यक्रम हमें आगे बढ़ाना ही है और आपके विचार हमें पहुंचने लगे हैं, बस ये हमारा हौसला बढ़ाने के लिए काफ़ी है। क्योंकि विषय भी ऐसा नहीं है कि जिसमें आप जुड़ ना सकें, विषय ऐसा है जो हम सब रोज जीते हैं। अभी सुबह से लेकर अभी तक के टाइम में आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपके घर का व्यक्ति बाहर तो निकला ही होगा ना, और उसको वहीं कहीं रिक्शा में, कहीं बस में गंदगी मिल जाए, कितना बुरा लगेगा। देखिए, दिन के 12:10:06 हो गए, भला कोई ऐसा होगा हमारे आसपास जो अभी तक कहीं ना टहला होगा? भाई सफाई तो चाहिए ना, चाहिए तो लिखकर भेजिए अपने विचार। तब तक सुनते हैं ये संदेश।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
0: जिंदगी लाइव कार्यक्रम में आप जुड़ चुके हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से और मैं हूं आज आपके साथ आपकी सखी निधि भारद्वाज। जो नए श्रोता जुड़ रहे हैं और कुछ ने हमें मैसेज भेजना शुरू कर दिया, अभी हम और लेंगे उनके विचारों को, लेकिन जो नए जुड़े हैं उनको हम बता दें 9457078288 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र पर। ये हमारी स्क्रीन पर एकदम शो हो जाएगा कि आप सार्वजनिक वाहनों की साफ सफाई कैसे रखते हैं और हमारा क्या दायित्व है, या कभी जीवन में ऐसी कोई घटना घटी कि आप कहीं सार्वजनिक वाहन में कुछ गंदगी देख रहे थे, आपने सफाई के लिए कहा तो सामने वाले का रिस्पॉन्स क्या रहा, या आपने स्वयं सफाई करके लोगों को क्या संदेश दिया, या इस बार की छुट्टियों में जब आप बच्चों के साथ घूमने निकले तो आपको वाहनों में बैठकर कैसा लगा। देखिए आपके मैसेज आ रखे हैं, लेकिन एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और मटर गश्ती तो करते हैं। भाई आप हमारे साथ हैं, घूम रहे हैं वाहनों में, तो फिर देर क्यों की जाए। लीजिए आनंद इस गीत का, तमाशा फिल्म से मोहित चौहान के स्वर में।

0: देखिए तमाशा फिल्म में आपने गीत सुन लिया मोहित चौहान के स्वर में, मटर गश्ती भी हो गई, खुली सड़क पर बारिश का आनंद भी ले लिया, लेकिन विषय तो देखिए हम नहीं बदलने वाले हैं। विषय है आज हमारा सार्वजनिक वाहनों की साफ सफाई और हमारा दायित्व, और इस पर आपके सुझाव विचार और आपका अनुभव हमें चाहिए। और हमारा नंबर है 9457078288। इस पर आपके लगातार हमारे पास विचार पहुंच रहे हैं, लेकिन नए श्रोताओं के लिए बताना बहुत जरूरी है।
1: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2026 हेतु प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP के लिए नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। ये प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के उन बच्चों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने बहादुरी, समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त की हों। सभी इच्छुक अभ्यर्थी एवं संस्थाएं योग्य बच्चों के नामांकन सिफारिशें केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर भेज सकती हैं। पोर्टल है https://awards.gov.in। नामांकन भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। विशेष रूप से बालिकाओं, कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति जनजाति तथा दिव्यांग बच्चों में से प्रतिभाशाली बच्चों को चिन्हित कर उनके नामांकन हेतु प्रोत्साहित किया जाए। अधिक जानकारी हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल अथवा संबंधित विभाग से संपर्क किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई।
0: संदेश के बाद एक बार पुनः स्वागत आपका अपने ही कार्यक्रम जिंदगी लाइव में। और जिंदगी लाइव में आज हमारा विषय है सार्वजनिक वाहनों की सफाई और हमारा दायित्व। इस पर लोगों के सुझाव आने शुरू हो गए हैं। श्रोता हमारे सुधीर श्रोता है ना भाई, आपके साथ ही तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। ये मैसेज हमें भेजा है जिला मुरादाबाद, ग्राम दूलापुर, उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरान और नरगिस खातून ने लिखते हैं। देखिए इन्होंने सफाई वाहनों के बारे में तो नहीं लिखा, अपनी स्वयं की सफाई जरूर लिखी है कि यात्रा करते समय वायरस या संक्रमण से बचने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। बार बार हाथ धोना, रोजाना स्नान करना, भीड़ वाली जगह से दूर रहना, कीटाणुनाशक वाइप्स का इस्तेमाल करना यात्रा के दौरान अपनाए जाने वाले बुनियादी स्वच्छता के उपाय है। बिल्कुल सही कहा आपने, अपनी स्वच्छता की बात तो आपने कर ली भाई साहब, लेकिन जरा उनकी भी सफाई की बातें बताइए ना जिनसे हम संक्रमित होते हैं। कई बार लोग खाते पीते हैं कुछ भी, बस में, ट्रेन में, रिक्शा में, वही छोड़ देते हैं ऑटो में, तो और समझाने पर नाराज होते हैं। क्या आपका कोई ऐसा अनुभव है या आप कैसे करते हैं, कैसे रखेंगे हम सफाई, ये हमारा क्या है दायित्व? इस पर ये विचार हमें मिले हैं श्रीनगर से गरिमा शुक्ला या शुक्ला, शौर्य शुक्ला और वैभव शुक्ला ने लिखा है कि हमारा अभी बच्चे छोटे हैं, जब हम बस में, ट्रेन में, कहीं पर भी यात्रा करते हैं तो हम अपने बच्चों के खाने पीने के सामान यदि उन्हें देते हैं तो उसको वापस अपने पास एक बैग ऐसा रखते हैं जिसमें हम सामान को वापस रख लेते हैं थैले में अलग। जी हाँ, और थैला भी लिखा है क्योंकि पॉलीथिन के लिए भी तो हम मना ही करते हैं भाई। और सार्वजनिक स्थानों पर सफाई रखना हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि पुनः कभी फिर हम किसी वाहन का उपयोग करेंगे तो हमें सफाई ही मिलेगी। बहुत सुंदर संदेश आपने हमें दिया शुक्ला परिवार ने। और ये अगला मैसेज हम देखते हैं, आप हैं गधारोना जिला हरिद्वार उत्तराखंड से, मदन गिरी जी लिखते हैं। निधि भारद्वाज जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, लिखा है आज का विषय अच्छा है, हम सभी का कर्तव्य है कि सार्वजनिक वाहनों की सफाई रखें। हमारा कर्तव्य है कि अगर हम सार्वजनिक वाहनों में कोई चीज पड़ी देखते हैं तो उसे उठाकर उसे कूड़ेदान में डाल दें, और यदि कोई सामान सार्वजनिक स्थानों पर डाल रहा है तो उसे टोक देना चाहिए। जिस तरह से हम घर की सफाई रखते हैं हमें सार्वजनिक स्थानों की भी सफाई रखनी चाहिए, ये हम सभी नागरिक का कर्तव्य है। सही बात कही भाई आपने, हरिद्वार उत्तराखंड से जो हमारे साथी हमेशा जुड़ते हैं ये हमेशा हर चीज पर अपना विचार भेजते हैं। और आप हैं हमारे साथी मदन गिरी जी, विमला गिरी जी, बलराम गिरी, भगत गिरी, मधु गिरी, सोनिया गिरी, गोविंद गिरी, सिमरन गिरी, वंशिका गिरी, रमन गिरी और दिव्या गिरी जी का पूरा परिवार। और देखिए जब परिवार में इस तरह के विचार होंगे तो फिर हमारा स्थान तो साफ सुथरा रहेगा ही। एक और मैसेज शामिल करते हैं। आप हैं हमारे साथी, लिखते हैं कि सार्वजनिक वाहनों जैसे बस, मेट्रो, ऑटो, कैब में स्वच्छता बनाए रखना न केवल हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है बल्कि एक स्वस्थ समाज की पहचान भी है। वाह वाह, तालियां आपके लिए, सही कही आपने बात। और आकाशवाणी के माध्यम से इन महत्वपूर्ण विचारों को साझा करके लोगों में जागरूकता हम फैला सकते हैं। स्वच्छता की कुछ आदतें हैं, ये हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। स्वच्छता किट साथ में रखें। आपने लिखा है कि सफर के दौरान अपने पास हमेशा एक छोटा सा बैग रखें जिसमें टिश्यू पेपर, हैंड सैनिटाइजर, एक छोटा वेस्ट बैग, कचरे के लिए थैली हो। अपने पास का कचरा सीधे डस्टबिन में न डालें, न ही वाहन की खिड़की से बाहर या सीट के नीचे फेंके। बिल्कुल सही बात, ऐसा ही अभी हमारे पहले श्रोता ने लिखा था शुक्ला परिवार से कि जो कचरा है अगर आपको मजबूरी में करना पड़ ही रहा है तो भाई अपने पास रखो, जहां आपको डस्टबिन मिले उसको वहां फेंकेगा। हम कचरे के डिब्बे में नहीं बैठे हैं, उसी में तो डालते हैं ना सारा कूड़ा, चाहे मूंगफली के छिलके हो, चाहे केले के छिलके हो, चाहे पानी की खराब बॉटल खाली हो गई हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक हो। देखिए सुनने में शायद कैड़ा लग सकता है लेकिन हम सब एक ही धरती पर रह रहे हैं, एक ही तरह से लोगों के व्यवहार को देखते हैं और ये व्यवहार कुछ अनोखा नहीं है बल्कि इस बुरे अनोखे को सुंदर अनोखा करना है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? हम नहीं करेंगे, बस ये प्रण ले लीजिए आप। एक एक करके जब प्रण लेते रहेंगे तो स्वच्छ भारत हो ही जाएगा और सब जगह वाहन साफ रहेंगे, सड़क साफ रहेंगी तो बीमारियों से दूर रहेंगे। अब बरसात है, कूड़ा बह बह कर इधर उधर जाएगा तो इतना कूड़ा हर जगह ना गिराए। और आपने लिखा है आगे, सार्वजनिक वाहनों की सीटें या दीवारों पर कुछ भी लिखना, खरोचना, चिपचिपी चीजें छोड़ना गलत है। यह समझना होगा कि यह वाहन पूरी तरह जनता का है, ना कि केवल हमारा। बिल्कुल सही बात, निशान नहीं छोड़ना है गंदगी का। और आपने आगे भी लिखा है, लिखते हैं थूकने और गंदगी पर रोक लगा दीजिए। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना न केवल गंदगी को फैलाता है बल्कि संक्रमण का कारण भी बनता है। इसके प्रति लोगों को सख्त होना चाहिए। प्रशासन और व्यवस्था के लिए भी कुछ सुझाव

लोग हंसते हैं, देखते हैं बहुत गौर से, तो ऐसे देखो हमारे कोई श्रोता साथी नहीं करते होंगे, लेकिन फिर भी हमने विषय इसलिए चुना है, अगर आपके आसपास कोई ऐसा है तो उसको रोक दीजिएगा कि भाई आज तो आकाशवाणी केंद्र से बिल्कुल मना हो गई, निधि भारद्वाज जी तो डटी हुई थी, नहीं करना सार्वजनिक वाहन की गंदगी तो नहीं, क्योंकि उनके पैसे एक पानी की बॉटल आकर टकरा गई एकदम गंदी से। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये हमारी आदत में होना चाहिए भाई, मेरा सफर मेरी जिम्मेदारी क्रम में आपने बहुत लंबा मैसेज दिया है, लोगों को ये समझाएं यदि हम वाहन को साफ रखेंगे तो अगला यात्री भी उसका उपयोग सुखद तरीके से कर पाएगा। हाँ यही बात हमें कहनी थी आपसे, स्वच्छता का सम्मान करें, सार्वजनिक वाहनों को अपने घर के विस्तार की तरह समझें, जैसे घर को साफ रखते हैं शहर की बसों को ट्रेनों को साफ रखें, सामूहिक भागीदारी है, सफाई कर्मचारियों के भरोसे न रहे। आपने ऐसा भी लिखा, यदि आप गंदगी देखें तो गंदगी फैला रहे हैं, विनम्रता से टोके और सफाई का महत्व रखें। देखिए इसमें हम थोड़ा सा आपके शब्दों को बल देते हुए थोड़ा बदलते हैं, सफाई कर्मचारियों के भरोसे न रहे वाली बात ठीक है कि हर समय तो वो नहीं आ सकते, उनका आने का एक समय होता है, उससे पहले ही हम अपने कचरे को डस्टबिन में डाल दें, है ना, सही बात है ना भाई, आप सहमत होंगे हमारे साथी महबूब दुकानदार बेगम साहिबा महबूब, मोहम्मद समीर अंसारी, मोहम्मद वारिस अंसारी और इनकी बेटी अलशिफा परवीन ने इतना लंबा खूबसूरत मैसेज हमें लिखा जसपुर रोड धोलापुर जिला मुरादाबाद से, और भी लोगों के पत्र हम शामिल करें तो हमारे नाम पढ़ दीजिएगा, इनको लगा कि लाइव चल रहा है ना कार्यक्रम, पढ़ दिया भाई साहब, ध्यान से देखिए हर किसी का, कभी आगे नाम पढ़ा जाएगा कभी पीछे, उत्सुकता भी तो जरूरी है ना, तभी तो कार्यक्रम में आप जुड़े रहेंगे। एक ही पत्र बहुत लंबा था, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और चलते हैं एक अगले वाहन में, सुनते हैं मदर इंडिया का ये गीत शमशाद बेगम और मोहम्मद रफी और साथियों के स्वर में।

देखिए, गाड़ी तो धीरे चल सकती है, लेकिन जीवन तो हमेशा हर पल आगे बढ़ता चला जा रहा है, और इसीलिए हम ये आपसे कहते हैं कि स्वस्थ रहना जरूरी हो गया है, और ऐसे स्वस्थ रहते हुए हमें अपना ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपके साथ जुड़ रहे हैं जिंदगी लाइव कार्यक्रम में, विषय लेकर सार्वजनिक वाहनों की सफाई और हमारा दायित्व। और हमारा दायित्व क्या है ये जरूर बताइएगा। देखिए, हम बात हमेशा ये करते हैं, अधिकार अधिकार, मुझे तो सफाई चाहिए, मुझे तो बस में सीट चाहिए, मुझे तो ट्रेन में सीट चाहिए, मुझे एकदम से रिक्शा साफ चाहिए, मैं गंदी सड़क पर नहीं चलूंगा। लेकिन पहले संदेश में कहा था कि हर काम सफाई कर्मचारी तो नहीं करेगा ना, समय पे करेगा। बाद में पूरे समय तो हमें ही ध्यान रखना है ना, जैसे मम्मी सुबह को सफाई कर देती हैं, फिर हम ध्यान रखते हैं ना, अभी झाड़ू पोछा लगा है, एकदम गंदगी नहीं फैलानी है। यही कंडीशन हमारे साथ सब जगह सार्वजनिक स्थानों पर, वाहनों पर है। ग्राम दूल्हापुर से मैसेज लिख रहे हैं मोहम्मद फरमान, और इन्होंने वाहन के बारे में तो नहीं लिखा है, लेकिन हम इसे समझने का प्रयास करते हैं तो बड़ी दूर तक समझ जाती है। लिखते हैं, जब तक आपका शरीर स्वस्थ और नियंत्रण में है और मृत्यु दूर है, अपनी आत्मा को बचाने की कोशिश कीजिए। जब मृत्यु सर पर आ जाएगी तब आप क्या कर पाएंगे, बताइए जरा क्या कर पाएंगे। मोहम्मद फरमान साहब ने हम सब से पूछा है, और हम इस बात से इनके संदेश को सब बनाते हैं वाहन से, कि अपनी आत्मा को बचाने की कोशिश कीजिए। सही बात, आत्मा पवित्र है, अचर अमर है, और इसकी आवाज सुनिएगा कि हमें गंदगी नहीं करनी है। सार्वजनिक वाहन, मेरा कोई पर्सनल वाहन तो है नहीं कि इसमें कुछ भी करूं। अच्छा, आप ये सोचिए, जब हम अपनी कार में जाते हैं तो बड़ी सफाई रखते हैं भाई, अपने ही बच्चों से अपनी कार में कहते हैं पैर जूते साफ होने चाहिए, कहते हैं ना। देखिए, दिल पे रख कर कबूल कर लीजिएगा, शायद ही कोई होगा कि जो नहीं कहता है, नहीं कहता है तो भाई क्यों नहीं कहता कहो ना अपने बच्चों से, कहना तो चाहिए, हमें कहना ही पड़ेगा। और ये मैसेज अगला लेते हैं, जिला मुरादाबाद ग्राम दुलापुर से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, ऋतिक और बलवीर जी का

करते हैं। तो देखिए, जिला मुरादाबाद ग्राम धूलापुर से मैं आपकी समस्या को भी समझी कि जो बात अभी हम कह रहे थे कि अपनी गाड़ी की तो हम सफाई रखते हैं, और जिसको हम रेंट पर लेते हैं, कभी हम टैक्सी बुक कर लेते हैं, कभी हम कि प्राइवेट कंपनी की गाड़ियों को ले लेते हैं, तो उनके उनकी भी मजबूरी को समझिएगा ना। हमने उसे किराया दिया है, गाड़ी नहीं खरीदी है ना। तो सार्वजनिक वाहनों की सफाई तो हमें रखनी ही पड़ेगी, ये किसी के कहे बिना ही हमारे पढ़े लिखे होने की, हमारे सभ्य होने की, हमारी संस्कृति की पहचान है। बहुत सुंदर संदेश आपने कहा है कि आप खुद ही सफाई कर देते हैं, ठीक है, लेकिन जो भी आपके साथ बैठते हैं, आप चाहें तो विनम्रता पूर्वक पहले कहें कि गाड़ी में गंदगी ना करें, मेरी अगली बुकिंग है और मैं साफ करने का समय नहीं निकाल पाऊंगा, या आप कहें कि इस तरह की सफाई रखना बहुत जरूरी है, ये हम आपको सुझाव ही दे सकते हैं। बाकी आप आपके कस्टमर को बहुत अच्छे से डील करते होंगे, ऐसा मैं पूरा विश्वास है, क्योंकि जब कोई गाड़ी को चलाते हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी को चलाना भी आसान नहीं है। तो आपकी समस्या भी पता चली और सावधानी आपने कह ही दिया कि कूड़े को एकत्र ऐसे ना करें जैसे हम अपने घर में इधर उधर नहीं फेंकते, ऐसे ध्यान रखें कि एक ही जगह रखें। सुंदर संदेश के साथ आगे बढ़ जाते हैं, और एक और हमारे साथी जुड़ चुके हैं, ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, मुन्ना भाई, निशा परवीन तमन्ना और आशिक हुसैन अंसारी जी। आप लिखते हैं, जिंदगी लाइव कार्यक्रम पेश करने वालों को हमारी तरफ से प्यार भरा आदाब, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। हमें ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। आज का विषय अच्छा है, सार्वजनिक वाहनों की सफाई करना हमारी पूरी जिम्मेदारी है। हमें सफर के दौरान पूरी साफ सफाई के साथ सफर करना चाहिए, जिसके चलते हमें कोई भी चीज खाने की जो हो हम साफ सफाई में बैठकर खा सकेंगे। कुछ लोग बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, मूंगफली के छिलके, केले के छिलके, बचे हुए खाने के अखबार। हाँ देखो, हमने तो हिंट ही दिया था, आपको तो पूरा पता है ना, सब लोग चलते हैं बच्चों के साथ, अपने नौकरी के लिए भी सफर में निकलते हैं। तो लिखते हैं, छिलके, बचे हुए खाने के अखबार बहुत सी गंदगी को फैलाते रहते हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी हम सफर करें तो पूरी सफाई के साथ करें। बहुत सुंदर संदेश के साथ गांव करेली पुरानी मस्जिद के सभी साथियों का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। लालू मिस्त्री अंसारी के साथ तमन्ना परवीन के भी विचार हमें मिल गए, और सही कहा आपने कि हमारा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। भाई हमारा कूड़ा है, अगर हम ही शर्मा कर उसको नहीं उठा पा रहे तो दूसरा हमारी गंदगी को क्यों साफ करेगा, नहीं करेगा ना। तो आज के बाद जब भी आप किसी सार्वजनिक वाहन में, बस में, ट्रेन में, या कोई गाड़ी को बुक करते हैं, या किसी ई रिक्शा में भी बैठते हैं, या किसी ऐसे वाहन में बैठते हैं जिसमें आपको गंदगी दिखाई देती है, तो तुरंत आपके दिमाग में ये वाली बात आएगी, अरे मेरे से पहले बैठे हुए व्यक्ति ने शायद ये किया होगा, या फिर अभी जो हमारे साथ ड्राइवर साहब हैं इनको कुछ सफाई का समय नहीं मिला होगा। तो आप उनसे अनुरोध कर सकते हैं कि इसको साफ कर लीजिएगा और हम गंदगी नहीं फैलाएंगे, इस बात का उनसे वायदा कीजिएगा। तभी तो मुस्कुराएंगे ना सब लोग, और फिर दिल की बातें तो हो ही जाएंगी। वो पूछेगा भी आपसे, इस दिल में क्या है, तो बता देना ना भाई, दिल में तो अच्छी बातें हैं। आइए सुनते हैं, जब प्यार किसी से होता है फिल्म का एक गीत, लता मंगेशकर, उदित नारायण की युगल आवाज में, जतिन ललित का संगीत है, आनंद बख्शी की बोल है।

देखिए, दिल में धड़कन है, धड़कन में हमारे अपने हैं, और हमारे अपनों की सुरक्षा ही तो हमारा दायित्व है, और इसलिए दायित्व हमें हर जगह निभाना है, चाहे घर को, बाहर हो, काम हो, उनकी सुरक्षा हमें करनी ही होगी, स्वच्छता भी अपनानी होगी। आज हमारा विषय है जिंदगी लाइव कार्यक्रम में सार्वजनिक वाहनों की सफाई और हमारा दायित्व। आप व्हाट्सएप पर अपने विचार लिखकर भेज सकते हैं इस विषय पर 9457078288। लिख सकते हैं आप किस तरह से सार्वजनिक वाहनों की सफाई करते हैं, किस तरह से लोगों को प्रेरित करते हैं, या कोई आपके ऐसी याद हो कि किसी स्थान को लेकर, चाहे रिक्शा, बस, ट्रेन, किसी की भी यात्रा आपने की हो जहां सफाई के लिए आपको लोगों से कहना पड़ा हो, समझाना पड़ा हो, या आपने किसी से सीखा हो, कुछ भी लिखकर भेजिएगा। आपके साथ आकाशवाणी नजीबाबाद है। मिसबा शमसी फ्रॉम नगीना ऐसे करके लिखते हैं। मिसबा जी हमें नगीना से लिखते हैं, हम सब जब भी दोस्तों के साथ किसी पार्क, मार्केट या बस और ट्रेन में घूमने के लिए निकलते हैं तो हर जगह साफ सफाई ही सबका मूड अच्छा करती है। सही बात है, अगर कहीं पर भी जाएं, हाँ सही कहा, अपने पार्क में भी बैठना हो, कहीं जाना हो, भाई हर जगह सफाई चाहिए बैठने के स्थान पर, तो मूड तभी अच्छा होता है। लेकिन आगे लिखती हैं, लेकिन ये साफ सफाई तभी तक दिखेगी जब हम सब मिलकर इसे मेंटेन रखने में एक दूसरे का साथ देंगे। बिल्कुल सही बात, मुट्ठी की तरह एक होना होगा हम सबको। कचरा हमेशा डस्टबिन में ही डालें और पब्लिक प्लेस को भी अपने घर की तरह समझें। छोटी सी कोशिश है पर हम सब दोस्तों के साथ ये बिल्कुल मुमकिन है। वाह भाई, इस लाइन ने तो दिल ही चुरा लिया हमारा। छोटी सी कोशिश है पर दोस्तों के साथ मिलकर मुमकिन है। सही कहा मिसबा जी आपने, और हम सब मिलकर इस काम को कर सकते हैं। एक और साथी जुड़े हैं जिला संभल ग्राम सिरसा से, सचिन प्रजापति जी, और लिखते हैं कि हमारे घर के कुछ सदस्य 8 से 10 दिन के बाद नजीबाबाद किसी काम से आ रहे हैं, तो जरूर आ गए, आपने फिर एकदम से उसको मिटा दिया। तो आप ऐसे कीजिएगा, कहाँ से आ रहे हैं वो स्थान आप देखें, और जहां से भी, जिस भी चीज से आप आए, सफाई के साथ आए, यानी कि रास्ते में गंदगी को ना फैलाते रहें, ना ही किसी को फैलाने दें, उनको संदेश दीजिएगा। आप हैं हमारे साथ अगले मैसेज में। नगीना से अनिल विनोचा जी, शमी विनोचा, अक्षय विनोचा, कनिका अरोड़ा, सहज अरोड़ा, गीत अरोड़ा, और लिखते हैं, सार्वजनिक वाहनों के प्रति हमारी जिम्मेदारी हर समय बनी ही रहती है, आज भी और कल भी, आने वाले समय में भी। कुछ लिख रहा हूं, सार्वजनिक वाहन ट्रेन, बस और बिल्डिंग भी है जहां हम बैठकर ट्रेन और बस का इंतजार भी करते हैं, वहां खुदा न करे इधर उधर थूके नहीं, हाँ वहां कूड़ा ना करें, आप लिख रहे हैं वहां कूड़ा ना करें और थूके नहीं, छिलके कूड़ेदान में ही डाल दें, यूरिन के लिए वॉशरूम का प्रयोग करें, और पानी की टंकी को पुश करें, और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। ठीक कहा आपने कि अगर हम वॉशरूम वगैरह भी जाते हैं, वहाँ बहुत गंदी बदबू ऐसी आती है कि बैठना मुश्किल हो जाता है, तो हमें उसको वॉश करना भी ज़रूरी है, और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। ये केवल हमारे खून पसीने की कमाई से ही नहीं बनते, हम इसका टैक्स भी दे रहे हैं, तो उसका ध्यान रखें। और एक कप टी पीने के लिए चाय पत्ती, शुगर, गैस, मिल्क, कप जो भी यूज करते हो, साथ साथ नाश्ते में बिस्किट, नमकीन लेते हैं, सब पर टैक्स आप देते हैं, तो इस तरह से धन का भी सही प्रयोग आप करें, आपने इसमें जोड़ा है, और तो जाने कितना जरूरी है सार्वजनिक संपत्ति को ध्यान से रखना। बस थैंक्स, बड़ा सुंदर संदेश, और आपने वो सारी चीज बता दी जो गृहस्थी चलाने वाले ध्यान में रखते हैं। तो केवल और केवल एक ही तरह से अपना सोचते रहे कि अभी तो हम इसमें बैठेंगे, 3 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, आधे घंटे बाद इस वाहन को छोड़ देंगे या इस स्थान को छोड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पृथ्वी गोल है, घूमते घूमते वापस कहीं ना कहीं उन्हीं रास्तों से जाना पड़ता है, सही है ना। तो जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम से, जिंदगी लाइव कार्यक्रम में। आज आपके विचार हमें बहुत सारे मिले, हमें उम्मीद थी कि आप जरूर जुड़ेंगे,
और ये है हमारे साथी। नमस्कार दोस्तों, मेरा सभी से एक छोटा सा सवाल है, क्या हम सार्वजनिक वाहनों को भी अपने घर की तरह साफ रखते हैं? हम अपनी कार या निजी साइकिल की जिस तरह से सफाई करते हैं, चमक का ध्यान रखते हैं, बस या मेट्रो में चढ़ते हैं, ये अक्सर जिम्मेदारी क्यों भूल जाते हैं? आज सफर शुरू करने से पहले खुद से बस यही पूछ लें, क्या मैंने अपनी सीट के पास कोई कचरा तो नहीं छोड़ा? वाह वाह क्या बात है, क्या मैंने सार्वजनिक सुविधा को नुकसान तो नहीं पहुंचाया? यदि हम सब से छोटी छोटी सी इन बातों का ध्यान रखें और छोटी सी गंदगी को कम कर दें, तो हमारा सफर और शहर कितना सुंदर हो जाएगा। चलिए आज ही सफर में स्वच्छता का संकल्प लेते हैं और इस तरह के विचारों के साथ जसपुर रोड दोलापुर जिला मुरादाबाद से थे महबूब दुकानदार, बेगम साहिब महबूब, मोहम्मद शमीम अंसारी, मोहम्मद वारिस अंसारी और बेटी अलशिफा परवीन। और आपने अभी थोड़े भी पहले भी यही मैसेज किया था, लेकिन अब कुछ नया नंबर से आ गया, तो ठीक है, अपने आप से सवाल तो ज़रूर करना ही चाहिए। मोहल्ला हलवायान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी खान, बिट्टू भैया, साजदारानी हिना कौसर भी लिखते हैं, लेकिन इनके विचार तो नहीं हैं, लेकिन ये हाँ अब आ गए हैं, लिखते हैं आपको हमारा प्यार भरा सलाम, कैसी हैं आप?

कि हमें पशु पक्षियों को दाना जरूर देना चाहिए, बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और भाई साहब, ये आज हम शिकायत कर सकते हैं अभी आपने, चलिए ये बात तो बहुत अच्छी लिखी, सार्वजनिक वाहन के बारे में क्यों नहीं लिखा वक्कार साहब? तो लिखकर बताइए कि किस तरह से आप सफाई रखते हैं, लोगों को सफाई के लिए प्रेरित करते हैं। आपका पत्र हमें मिला, अच्छा लगा। और अगला फिर इसी नाम के साथ लेकिन नंबर अलग आगे आ गया मैसेज। और लिखते हैं कि गर्मी के समय में अपने साथ पानी की बोतल रखें, सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा कचरा ना करें, साफ सफाई का खास ख्याल रखें, धन्यवाद। ठीक है, आपने मैसेज भेज दिया और ये सही बात है, हमें हमेशा सफाई रखनी चाहिए। और ये है हमारे अगले साथी, और आप हैं पुनः, आपका तो हम पढ़ चुके हैं कि हमारे नाम भंतीजी दीदी, हम कभी भी नंबर चेंज नहीं करते हैं और एक ही नंबर से मैसेज करते हैं, आपको अपने कहा दूसरे नंबर से गया नहीं, इसे ऐसे ही गलत असर पड़ जाएगा। अच्छा, ये मौला हलवाईयान शेरकोट के लिए था भाई, बेगम मोहम्मद महबूब दुकानदार साहब, हमारी स्क्रीन पर एक ही घर लोगों के नाम अलग अलग नंबर से आ रहे हैं, उनके लिए है, आप अन्यथा ना लें। लाइव कार्यक्रम में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं और आज इस कार्यक्रम में हमारे बहुत सारे साथी जुड़े हैं विचारों के साथ। और अगला मैसेज किसका है ये हम जरूर देखना चाहते हैं। आप हैं हमारे साथी नजीबाबाद से निकिला की कुकी गुनी गुल्लू और नन्ही गौरी, लिखते हैं कि सार्वजनिक स्थानों का प्रयोग हम सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है कि इनकी हम करते तो इनकी सफाई बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि बार बार हमें इनके स्थान का प्रयोग हमें ही करना पड़ता है, क्योंकि जहाँ हम आसपास की लोकेलिटी में रहते हैं वहाँ सफाई ज़रूरी हो, वाहनों में आना जाना रोज का क्रम है तो बहुत सारा समय सफ़र में गुजर जाता है, जिसमें अगर सफाई नहीं होगी तो फिर बीमारियों का लगना लाजमी है। बिल्कुल सही आपने कहा। और अब आपके विचार जब तक आते हैं, एक और प्यारा सा गीत हम आपको सुनवाते हैं, किशोर कुमार के स्वर में, आराधना फिल्म से, संगीत SG वर्मन का है और गीतकार हैं आनंद बख्शी।

श्रोताओं, सार्वजनिक वाहनों की साफ सफाई पर आपके विचार आज हमें बहुत सारे मिले और अब कार्यक्रम का समय संपन्न हो रहा है, लेकिन चलते चलते अपने दिल की बात भी तो हम आपसे कह दें। सार्वजनिक वाहनों की साफ सफाई आप रखते हैं, बस आपको इस कड़ी में और लोगों को जोड़ना है और आपसे बातें करना, आपसे मिलना हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से कार्यक्रम सफल होता है।

सच में हमें भी अपने श्रोताओं से मिलना, बातें करना बहुत अच्छा लगता है। आज हमारे बहुत सारे साथी अलग अलग स्थान से इस कार्यक्रम जिंदगी लाइव में जुड़े, उनका हृदय से धन्यवाद। एक साथ हम करते हैं सभी के सुंदर विचारों से ही इस कार्यक्रम

दिशा मिली। अब कार्यक्रम संपन्न करने की अपनी सखी निधि भारद्वाज को दीजिएगा अनुमति। नमस्कार, आप सुन रहे थे कार्यक्रम जिंदगी लाइव। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1 बजने को है। अब हम अपने श्रोताओं के लिए समाचार रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय राजस्थान के बालोतरा में हैं। उन्होंने बालोतरा में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित हैं।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट व एग्री फिल्म जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। इससे क्षेत्रीय संपर्क के साथ साथ विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण विकास से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी शाम में गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। UAPA अधिनियम में संशोधन से केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों की शक्तियों का विस्तार करके देश के आतंकवाद रोधी कानूनी ढांचे को मजबूत किया गया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, मतदाता पंजीकरण अधिकारी और बूथ स्तरीय अधिकारी ने उपराष्ट्रपति भवन में चल रही मतदाता सूची के SIR के अंतर्गत गणना प्रक्रिया को सुगम बनाया है। श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से

कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार, साथ ही स्वागत अभिनंदन हमारे सभी श्रोताओं का महिला जगत के आज के इस अंक में। बहनों आज सैटरडे, बिल्कुल कामकाजी लोगों के लिए छुट्टी का दिन, लेकिन हम बहनों के लिए तो काम कभी खत्म ही नहीं होता। खैर, जीवन है तो काम भी होता ही रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ जीवन में मनोरंजन भी जरूरी है। तो आप हमारे कार्यक्रम को सुनती रहिए, क्योंकि आज आपके लिए हम सैटरडे स्पेशल लेके आए हैं। तो देर नहीं करेंगे बहनों, शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की अपनी बातों के साथ ही। एक समय था जब कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा जैसे मोटे अनाज हमारी रसोई का हिस्सा हुआ करते थे। समय के साथ ये हमारी थाली से दूर होते चले गए, लेकिन अब फिर से इन मोटे अनाजों की वापसी हो रही है, क्योंकि सभी लोग ये समझने लगे हैं कि ये मोटा अनाज हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है। और साथ ही सिद्ध हो भी चुका है कि मिलेट्स में फाइबर, आयरन, कैल्शियम और ऐसे कई आवश्यक तत्व हैं जो हमारे शरीर को फायदा देते हैं, कुपोषण से हमें बचाते हैं और अन्य समस्याओं से, बीमारियों से निपटने में भी मददगार साबित होते हैं। आपने भी सुना होगा कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो भी मोटे अनाजों को लेकर हमें बार बार जागरूक करते रहते हैं कि मोटे अनाज हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है। और किसानों के लिए भी कहा जाता है कि मोटे अनाज की खेती करें तो इससे उन्हें भी कई तरीके के फायदे होते हैं, क्योंकि किसानों के लिए ये एक टिकाऊ और लाभदायक विकल्प है खेती के रूप में। साथ ही जो ये मोटा अनाज होता है वो हमारी भूमि को उपजाऊ बनाए रखने में भी सहायक होते हैं, और यही कारण है कि किसान जो है अब इस अनाज की तरफ लौट

0: रहे हैं और देश भर में मोटे अनाज यानी कि मिलेट्स की मांग भी लगातार बढ़ रही है। तो आज की आधी आबादी में भी हम बात करने जा रहे हैं मिलेट्स माँ नाम से प्रसिद्ध एक ऐसी महिला की कहानी जिन्होंने मिलेट्स को फिर से लोगों तक पहुंचाया और इसे देश की थाली तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। और ये कहानी है रायपुर की कविता देव की, जिन्हें लोग प्यार से मिलेट्स माँ कहते हैं। तो क्या है उनकी कहानी, उनके संघर्ष सुनते हैं आधी आबादी क्रम में। रागी बाजरा ज्वार अपनाएं, स्वस्थ जीवन की राह बनाएं, कोदो कुटकी घर घर लाएं, मिलेट्स खाएं सेहत पाएं। जी हाँ, ये कहना है छत्तीसगढ़ की रायपुर की कविता देव का, जिन्हें मोटे अनाजों के प्रति उनके बेहतरीन काम करने के लिए मिलेट्स माँ के नाम से भी जाना जाता है। कविता देव का 42 वर्ष की उम्र में उनका रुझान खेती की तरफ हुआ। दरअसल कविता अपने बच्चों को हेल्दी खाना खिलाने और उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखने के प्रति काफी सजग हैं। वो अपने बच्चों को हमेशा घर पर ही बना ताजे फल और सब्जियों का जूस पिलाती और ताजे फल और सब्जियां ही उन्हें खिलाती। लेकिन एक दिन उन्हें पता चला कि जिसे वो हेल्दी समझ रही हैं, वो एक तरह से जहर है।
1: When my child is in fifth standard, उन लोग सुबह ऐश गार्ड जूस पीते हैं। एक दिन बेटा छोड़ के चले गया, अभी छुपा दिया कहीं, नहीं पिया। बाद में जब मुझे दिखा, there is a layer of oil in the juice। मैं बोली, ऑयल कहाँ से आ गया? हम तो इतना साफ करके ये करते हैं। That is a twist in my life। तब मैंने रिसर्च करना शुरू किया। सामने वाले लोग, मेरी सर्विंग मेट बोल रहे थे, क्या दीदी आप इतना भी नहीं जानते हो, क्या हो गया, ये तो केमिकल डाल के उगाते हैं। तो ऑयल है वो ऑयल नहीं है, वो केमिकल है। That simple thing also हमको समझ में नहीं आ रहा है। Then I thought no, I am doing something wrong। सुबह उठ के मैं पॉइजन पिला रही हूँ। मैं क्या सोच रही हूँ, 4:30 उठाना अलग बात है और उनको जूस पिलाना बहुत मुश्किल का काम था, मगर मैं उनको गलत रास्ते पे ले जा रही। तब किसान के पास जाना शुरू किया, छत्तीसगढ़ में किसान किधर है ये भी विलेज कहाँ है। तब एवरीथिंग आई स्टार्टेड।
0: इस घटना के बाद कविता देव ने छत पे खुद ही सब्जियां उगाना शुरू किया। करीब 4 साल तक उन्होंने छत पर बागवानी की, लेकिन बाद में उन्हें खेती से इतना लगाव हो गया कि उन्होंने जमीन खरीदकर खेती करने का मन ही बना लिया और इस काम में उनके पति ने भी उनका पूरा साथ दिया। धीरे धीरे कविता ने उस जगह पर सब्जियां, फल और साथ में मोटे अनाज उगाना शुरू किया, क्योंकि कविता मोटे अनाजों की खूबियों को बखूबी जानती थी। न केवल मनुष्य बल्कि इस धरती के लिए भी मोटा अनाज लाभदायक है, इस बात को कविता बखूबी जानती थी। कविता चाहती थी कि उनकी परिवार की ही तरह दूसरे घरों तक भी जैविक खाना पहुंचे। कविता देव का मानना है कि मिलेट्स केवल खेती नहीं बल्कि स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए वरदान है। ये फसल कम पानी में तैयार हो जाती है और पोषण से भरपूर है।
1: The basic thing is that from the farmer point of view, I would like to tell you few things. When I grown rice, it has taken around 7,000 to 8,000 liters of water, 1 kg of rice to grow. But when I compared with millet, it has taken only 300 liters of water. And chemical 1% कोई भी डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। And तीसरा है, आपको soil को जब आप millet उगाएंगे, अपने आप soil renovate हो जाएगा। इरोजन भी रुकता है और इसको बुरबुरा बना देता है।
0: कविता देव ने इस जैविक खेती को केवल खुद तक सीमित नहीं रखा बल्कि अन्य किसानों, खासकर महिलाओं को भी जैविक खेती के साथ मिलेट्स उत्पादन से जोड़ने का अभियान चलाया और वो सफल भी रही। और कविता के इस प्रयास से आज सभी फिर पारंपरिक अनाजों की तरफ लौट रहे हैं। कविता का जीवन केवल खेती की कहानी नहीं कहता बल्कि स्वास्थ्य, पर्यावरण और आत्मनिर्भरता की भी कहानी कहता है, क्योंकि खेती से कविता देव आज एक रोजगार परक महिला की कहानी लिख रही हैं। कविता देव की कहानी हमें संदेश देती है कि यदि संकल्प मजबूत हो तो एक व्यक्ति भी समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है। मिलेट माँ कविता देव की मुहिम ने ये साबित कर दिया कि मिलेट्स केवल हमारी परंपरा नहीं बल्कि स्वस्थ भारत की नींव भी है। मिलेट्स है सेहत की पहचान, किसानों का बढ़ता सम्मान, धरती पानी जीवन बचाएं, मिलेट्स को फिर घर घर लाएं। कविता देव के इसी संदेश के साथ आधी आबादी का आज का ये अंक बस यहीं तक। अगली बार फिर एक सफलता की कहानी आप तक लेकर आएंगे।

0: आज तो पार्टी चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: धन इन संदेशों के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जैसे कि हमने कहा था कि आज शनिवार है और शनिवार को आज कार्यक्रम में हम आपके लिए बहुत सारे क्रम लेके आते हैं। जैसे कि आज सजना है मुझे क्रम भी आपके लिए है जिसमें हम ब्यूटी टिप्स की बात करते हैं, पहनने ओढ़ने की बात करते हैं, मेकअप की बात करते हैं और मेकअप से जुड़ी हुई किसी भी तरह के पहलू पर हम आपसे बातचीत करते हैं। तो आज भी हम आपके लिए एक कुछ नया लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं क्रम सजना है मुझे।

0: आजकल हम सभी अपने लुक्स की तरफ बहुत ध्यान देते हैं, खासकर बात महिलाओं की हो तो महिलाएं अपने लुक्स को लेकर बहुत ही चिंतित भी रहती हैं। बढ़ती उम्र के असर को कम करने के लिए भी प्रयासरत रहते हैं, फिर चाहे महिला हो या पुरुष। बढ़ती उम्र के असर को कम करने के लिए हम सभी प्रयासरत रहते हैं, और बढ़ती उम्र के साथ सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है स्किन केयर। वैसे तो त्वचा की देखभाल हर उम्र में हो तो त्वचा संबंधी रोगों से बचा जा सकता है। और बात अगर आजकल की गर्मियों की जाए तो गर्मियों में स्किन केयर, और वो भी खासकर चेहरे के लिए, तो गर्मियों के लिए बर्फ यानी कि आइस थेरेपी एक बेहतरीन और नेचुरल तरीका है, जो त्वचा को ठंडक देने के साथ साथ कई समस्याओं से राहत भी दिलाता है। और ब्यूटी एक्सपर्ट्स की माने तो बर्फ हमारे चेहरे के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो इसके फायदों की बात करें तो बर्फ त्वचा के पोर्स को यानी कि रोम छिद्रों को कसने में मदद करता है, जिससे त्वचा टाइट रहती है। सुबह सुबह आंखों के नीचे की सूजन और काले घेरों को कम करने के लिए बर्फ का उपयोग अच्छा रहता है। बर्फ ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है, जिससे चेहरे पे नेचुरल ग्लो भी आता है। तेज धूप से झुलसी त्वचा को ठंडक और आराम देने का काम करती है बर्फ। बर्फ को चेहरे पर कैसे लगाना है और बर्फ लगाने के क्या फायदे हैं, बता रही हैं ब्यूटीशियन कविता चौधरी।
1: आज मैं आपको चेहरे पे आइस रब करने से फायदे बताऊंगी। इससे हमारे चेहरे पे इंस्टेंट ग्लो आता है, चेहरे पे मुहासे हो तो वो भी कम होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, झुर्रियां भी चेहरे पर जल्दी नहीं आती है, मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहता है, आइस के नीचे पफिंग नेस को कम करता है, इंस्टेंट ग्लो आता है। और हमेशा आप आइस को कॉटन के कपड़े में लपेटकर ही 2 मिनट तक फेस पे लगाएं। अगर आप ये डेली करेंगे तो आप अपने चेहरे पे ग्लो एकदम देखेंगे।
0: ये थी कविता चौधरी, जो बर्फ लगाने के तरीके और बर्फ के फायदों के बारे में बता रही थी। बिल्कुल, बर्फ से चेहरे की सिकाई करने का जो तरीका है वो हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि चेहरे को पहले अच्छे तरीके से धो लें और फिर साफ करके उसको सुखा लें। बर्फ के टुकड़े को कभी भी सीधा त्वचा पे ना लगाएं, बल्कि एक साफ मुलायम सूती कपड़े या रुमाल पर लपेट कर ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। कपड़े में लिपटी बर्फ से चेहरे पर धीरे धीरे 1 से 2 मिनट तक हम मसाज कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि दिन भर आप बर्फ लेकर मसाज करते रहें, इसे दिन में एक बार ही करना काफी होता है। और ऐसा ही

मानना है ब्यूटी एक्सपर्ट्स का भी। अब बहनों, आप सादे पानी से बर्फ का उपयोग तो करती ही होंगी, लेकिन पानी को बर्फ बनाते समय आप सादे पानी में एलोवेरा जेल, खीरे का रस, गुलाब जल, ग्रीन टी मिलाकर भी बर्फ का उपयोग कर सकती हैं। यानी कि आप जब आप पानी से बर्फ को जमने के लिए रख रही हो तो उसमें ये चीजें आप मिला सकती हैं, क्योंकि पानी में जब आप इन चीजों को मिलाती हैं तो और भी फायदेमंद हो जाता है, क्योंकि एलोवेरा जेल से स्किन हाइड्रेट होती है, खीरे का जो रस है वो स्किन को ठंडक तो देता ही है, साथ में चमक भी देता है, गुलाब जल त्वचा को तरोताजा रखता है, और ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण पिंपल्स में फायदेमंद होता है। तो जब भी आप बर्फ जमाए तो उस समय पानी में ये चीजें आप मिला सकती हैं। लेकिन आपको एक बार फिर बता दें, ये बात ध्यान रखने की है कि एक जगह पर 2 से 3 मिनट से ज्यादा बर्फ ना रखें, क्योंकि ज्यादा देर बर्फ रखने से नुकसान भी हो सकता है। कहते हैं ना कि अति हर चीज की बुरी होती है, तो स्किन बहुत सेंसिटिव हो तो सीधे बर्फ लगाने से बचें। तो बहनों, आप अपनी त्वचा का ध्यान रखें, सस्ती संवरती रहें, खुश रहें, और सजना है मुझे का ये अंक यहीं तक। अगले अंक में फिर किसी और विषय पर आपको जानकारी देंगे।

बहनों, ये था हमारे इस हफ्ते का सजना है मुझे का क्रम, और अब चलते हैं अपनी रसोई की तरफ, क्रम मेरी पाकशाला की तरफ, जिसमें आज हम बात करेंगे अपने खाने के बारे में और उससे जुड़े हुए कई और पहलुओं पर भी। जैसे कि हमारा जो भारतीय खाना पीना है वो अपने एक अलग ही समृद्ध विरासत रखता है, क्योंकि हमारे खान पान में मसाले हों, साग सब्जी हो, अनाज पानी हो, और यहाँ तक कि एक पत्ता भी हमारे खाने के स्वाद को बढ़ा देता है। तो चलिए बात करते हैं आज हम पान के पत्ते की, क्रम मेरी पाकशाला में। भारतीय संस्कृति में पान एक खाद्य पदार्थ ही नहीं बल्कि सम्मान, शुभता और सामाजिक परंपराओं का प्रतीक भी माना जाता है। सदियों से भोजन खाने के बाद पान खाने की परंपरा चली आ रही है। भोजन के बाद पान परोसने की परंपरा हो या विवाह की रस्में, पूजा अर्चना हो या धार्मिक अनुष्ठान, पान सदियों से भारतीय जीवन का हिस्सा रहा है। पान खाने के साथ साथ इसका धार्मिक महत्व भी है। पान के पत्तों से शरबत भी बनाया जा सकता है। पान के पत्ते, मिश्री और दूध मिलाकर बहुत ही गुणकारी शरबत बनाया जा सकता है। पान के गुणों की अगर हम बात करें तो पान के पत्ते में ऐसे प्राकृतिक गुण होते हैं जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करते हैं, इसीलिए भोजन के बाद सादा पान खाने की परंपरा रही है। पान में सौंफ, इलायची, लौंग, गुलकंद और अन्य प्राकृतिक सामग्री जो मिलाकर पान बनाया जाता है, उसे खाने से ये माउथ फ्रेशनर की तरह भी काम करता है, यानी कि मुंह को ताजगी से भर देता है। पान की अगर बात करें तो भारत के अनेक राज्यों में पान का अपना अलग अलग स्वाद, बनाने की शैली और प्राकृतिक महत्व है। तो चलिए बात करते हैं अब अपने राज्य की, उस शहर की जहाँ पान केवल खाया नहीं जाता बल्कि जीवन शैली का हिस्सा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बनारस की, जिसे कि वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का बनारसी पान देश ही नहीं दुनिया भर में अपनी मिठास और अनोखे स्वाद के लिए जाना जाता है। शादी ब्याह, त्योहार, मेहमान नवाजी, हर मौके पे बनारसी पान का अपना अलग ही अंदाज है।

उत्तर प्रदेश का बनारसी पान अपने अनोखे स्वाद, सुगंध और पारंपरिक तरीके से बनाए जाने की शैली के कारण पूरे भारत ही नहीं बल्कि विश्व में भी प्रसिद्ध है। यहाँ पान के पत्तों के साथ सौंफ, इलायची, चूना, सुपारी, चेरी, गुलकंद, नारियल का बुरादा आदि सुगंधित सामग्रियों से ये मीठा और सुगंधित पान तैयार किया जाता है। यहाँ पर मीठा पान, सादा पान, राजशाही पान जैसे अनेक रूपों में पान मिलता है। यहाँ पान केवल खाने की वस्तु नहीं बल्कि अतिथि सत्कार, शुभ अवसरों और सामाजिक परंपराओं की विरासत का प्रतीक है। तो जब भी आप पान खाएं तो सादा और मीठे पान का ही इस्तेमाल करें, उसे तंबाकू रहित ही रखें। ये था क्रम मेरी पाकशाला और अब आनंद लेते हैं गीत का।

बहन उस गीत का आनंद आपके साथ हमने भी लिया। और अब कार्यक्रम में चलते चलते बात कर लेते हैं हम जो है अपने आम महोत्सव की। जी हाँ बहनों, फलों के राजा आम का स्वाद तो आजकल हम सभी खूब ले रहे हैं, क्योंकि आम का इस समय फसल तैयार है और बाजार में चारों तरफ आम ही आम देखने को मिल रहे हैं। बनारसी, चौसा, कलमी और लंगड़ा, ये दो चार तरह के आम हैं जिनके बारे में हम जानते हैं और इन्हीं के नाम से हम परिचित हैं। और अगर जहाँ तक आम की किस्मों की बात की जाए तो न जाने ऐसे कितने तरह के आमों के नाम हैं, इतनी तरह की किस्में हैं जिनके बारे में हम जानते भी नहीं। और सच कहें, खाना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि दो चार तरह के ही किस्में हैं जिनका आनंद हम पूरे साल में इस गर्मियों में लेते हैं। लेकिन अगर आप आम के शौकीन हैं तो आपको हम बता दें बहनों कि इस समय लखनऊ में आम महोत्सव का आयोजन चल रहा है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं बहनों कि लखनऊ शहर में गोमती नगर में इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप जाकर 800 तरह के आमों का आनंद ले सकते हैं, यानी कि 800 तरह की किस्में हैं जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। और कल यानी कि 3 जुलाई को इसका शुभारंभ मेले का हो चुका है। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री योगी जी ने इसका शुभारंभ किया है और यहाँ पर 800 से अधिक तरह की किस्में आम की देखने को मिलेंगी। और ये महोत्सव जो है हमारा कल यानी कि 5 जुलाई तक चलेगा, यानी कि 3 दिन का मौका है। आज का दिन लगभग आधा चला गया और कल का दिन तो पूरा है, तो आप इस महोत्सव में जाकर आम का आनंद ले सकती हैं। और इस महोत्सव में आपको आम से बने हुए अनेक तरह के खाद्य पदार्थ भी खाने को मिल सकते हैं, तो आप वहां पर जाके इन खाद्य पदार्थों को खरीद सकती हैं और 800 से भी अधिक तरह की किस्मों के आम का आनंद आप ले सकती हैं। और वहां पर अनेक तरह के आम, जो आम विक्रेता हैं वो वहां पर पहुंचे हैं, जिससे उन्हें की एक बहुत बड़ा मंच, बहुत बड़ा बाजार उनको मिला है। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह भी है कि यहाँ से जो आम बेचा जा रहा है, इससे हमारे न केवल देश में बल्कि इन आमों को विदेशों में भी पहचान मिली है, यानी कि एक बहुत बड़ा बाजार आम का यहाँ देखने को मिलेगा। साथ ही हम जो स्थानीय लोग हैं, अपने राज्य के जो हम लोग हैं, सबसे ज़्यादा हमें ही इन चीज़ों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि जो हमारे किसान हैं उन्हें फ़ायदा मिले, हमें भी नई नई किस्मों का देखने को और खाने को मिलेंगे और आम से बने हुए खाद्य पदार्थ हम वहाँ से खरीद सकते हैं, उनका आनंद हम ले सकते हैं। तो आप इस महोत्सव में ज़रूर जाएँ और इस महोत्सव का आनंद आप ले सकती हैं। इसके साथ ही बहनों, आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं इसके विषय में भी आपसे हम हमेशा कहते हैं कि आप अपनी राय हम तक पहुंचाएं। आप हमें पत्र लिख सकती हैं बहनों, कार्यक्रम महिला जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड 246763। इसके साथ ही कार्यक्रम के संबंध में भी हम आपको बता दें बहनों कि जो हमारा महीने का तीसरा मंगलवार होता है, जिसमें आप फोन करके सीधे हमारे साथ जुड़ सकती हैं कार्यक्रम हेलो सखी में। महीने का जो चौथा शनिवार होता है उसको हम आपको सुनाते हैं लघु नाटिका। इसके साथ ही कार्यक्रम हमारा गुरुवार को, जो पहला गुरुवार होता है, उसको उड़ान हौसलों की होती है, जिसे कि आप अब आने वाले गुरुवार को सुनेंगे, क्योंकि इस बार महीने के दूसरे गुरुवार को आप उड़ान हौसलों की सुनेंगे। तो ये तमाम तरह के कार्यक्रम हैं जो हम आपके लिए यहां से प्रेषित करते हैं, लेकिन उद्देश्य वही रहता है कि फीडबैक हमको मिले तो हमें भी अच्छा लगेगा। तो आप इन कार्यक्रमों में पत्र के माध्यम से जुड़ सकती हैं, फोन कॉल के माध्यम से जुड़ सकती हैं और हमारे कार्यक्रमों का आनंद लें और फीडबैक हमें दीजिए। और आज के कार्यक्रम को यहीं पर समेटने की हमें अनुमति दें। बहनों नमस्कार।

बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम महिला जगत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:45 होने को है। आइए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम लोकधारा। लोकधारा के इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं विविध कलाकारों के गाए हरियाणवी लोकगीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम लोकधारा के अंतर्गत आज आप सुन रहे हैं विविध कलाकारों के गाए हरियाणवी लोकगीत।

0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: लोक संगीत के कार्यक्रम लोकधारा के अंतर्गत आज आपने विविध कलाकारों के गाए हरियाणवी लोकगीत सुने। इसके साथ ही अब ये कार्यक्रम संपन्न होता है। अपने श्रोताओं को एक बार पुनः याद दिला दें, इसी सभा में दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे एक ही गीत कार्यक्रम में भरत व्यास के लिखे कुछ गीत। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रखे हैं। दोपहर के 2 बजने को हैं। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।
2: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सायरा मुज्तबा विद द मिड डे न्यूज। Headlines. Prime Minister Narendra Modi dedicates India's first greenfield integrated refinery cum petrochemical complex in Balotra, Rajasthan. Also inaugurates new terminal building of Jodhpur Airport. Home Ministry designates 23 Pakistan-based individuals as terrorists under UAPA. Centre issues notice to Telegram messaging app over widespread piracy reports. Asked to submit report within 15 days. Bilateral investment agreement between India and Israel comes into force today. IMD says southwest monsoon to further advance into parts of Gujarat, Haryana, Punjab and Rajasthan during the next 4 days. And in men's cricket, India to face host England in second T20 international in Manchester this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi dedicated, inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth approximately 1.06 lakh crore rupees at Balotra, Rajasthan. These projects spanned multiple sectors including petrochemicals, urban transport, railways, roads, renewable energy and power transmission. The Prime Minister dedicated India's first greenfield integrated refinery cum petrochemical complex to the nation at Pachpadra in Balotra, marking a landmark achievement in the country's energy and petrochemical sector. Speaking on the occasion, Mr. Modi said this refinery will provide employment to thousands of young people.
3: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 4 दिनों में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने बालोतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ये देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ग्रीन फील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम है। प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी।
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत वाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का भी शिलान्यास किया। दूसरे चरण में प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिण मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की 1,000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र REZ से बिजली निकासी के लिए 1,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित पारेषण लाइन का उद्घाटन किया। उन्होंने REZ के लिए 530 किलोमीटर लंबी बिजली पारेषण प्रणाली की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण योजना से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा।
1: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात जाएंगे, जहां वे सांड में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर प्लांट का दौरा करेंगे और यहां की अत्याधुनिक क्लीन रूम सुविधा का निरीक्षण करेंगे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस खास कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहेंगे। वर्तमान में इस प्लांट में 300 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और आने वाले 5 सालों में यहां 5,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जिससे इस पूरे क्षेत्र के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गुजरात में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा के बाद अहमदाबाद में संवाददाताओं से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास जताया कि अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ने वाला पूरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 2029 के अंत तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी से चल रहा है और अगले साल सूरत से बिलीमोरा का पहला सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से सूरत का सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से अहमदाबाद का पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर अहमदाबाद से ठाणे और उसके बाद में अहमदाबाद से मुंबई। इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन, फेज बाय फेज 2029 के एंड तक कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट। बहुत 80% काम गुजरात के क्षेत्र में कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान स्थित 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट।
4: गृह मंत्रालय द्वारा आज घोषित किए गए 23 आतंकवादियों में से 17 पाकिस्तान के जबकि 6 भारतीय नागरिक हैं। इस समय ये सभी नामित आतंकवादी पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से अपनी आतंकवादी गतिविधि चला रहे हैं। ये आतंकवादी भारत विरोधी गतिविधियों, हथियारों की तस्करी, सीमा पार घुसपैठ, आतंकवादी संगठनों की मदद, धन जुटाने और आतंकियों की भर्ती जैसी गतिविधियों में शामिल हैं। इन व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA इनकी आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगा सकेंगी, हथियारों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध और उनकी संपत्तियां जब्त कर सकेंगी। वर्ष 2019 में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम में संशोधन लागू होने के बाद से केंद्र सरकार अब तक 80 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित कर चुकी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और OTT कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, OTT प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों की रक्षा करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि खिलौनों के आयात में भारी गिरावट आई है और घरेलू खिलौना बाजार में देश में ही बने उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। नई दिल्ली में आयोजित 17वें टॉय बिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारतीय खिलौना निर्माता राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि भारत का खिलौना उद्योग जमीनी स्तर पर रचनात्मकता, नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र देश की लोकल से ग्लोबल पहल का एक सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने बताया कि BIA से सीमा पार निवेश गतिविधियों में वृद्धि होने और भारत तथा इसराइल के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केकी फुखिमोरी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्दे खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में आयतुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार सेवा प्रभाग विशेष श्रृंखला में प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत कर रहा है।
5: चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है तो पेड़ पौधों की वजह से है। तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गांव को हरा भरा बनाएं। मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई। अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। जनता नर्सरी बनाई है उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है। अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। ये परिचर्चा आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित की जाएगी। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। इसका पुनः प्रसारण कल सुबह 10:30 भी होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। महाराष्ट्र से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और सातारा, पुणे व नासिक के घाट इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और पालघर जिलों की नदियों में जल स्तर बढ़ रहा है और अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। मुंबई शहर और आसपास के इलाकों में आज लगातार 5वें दिन जोरदार बारिश जारी है। बारिश की वजह से स्कूलों और कॉलेजों में दोपहर की क्लास के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है। नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि वे तभी घर से बाहर निकले जब बहुत जरूरी हो। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
6: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
7: क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने घाना को 1-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। अब अगले दौर में उसका मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। वहीं मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने अतिरिक्त समय तक चले रोमांचक मुकाबले में कार्बो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अर्जेंटीना के लिए लियोनल मेसी ने टूर्नामेंट का अपना 7वां गोल किया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। और भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम एक ही गीतकार। एक ही गीतकार क्रम में आज हमारे गीतकार हैं भरत व्यास। नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम एक ही गीतकार में आपका बहुत स्वागत करती हूं मैं, आपकी सखी निधि भारद्वाज। सुनहरे दौर के सदाबहार नगमों के इस खास सफर में आप सभी श्रोताओं का पुनः पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। श्रोताओं, आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी सिनेमा के एक ऐसे दैदीप्यमान नक्षत्र की जिनकी कलम से निकले शब्दों ने इंसानी जज्बातों को रूहानी इबादत बना दिया। जी हाँ, आज का हमारा यह पूरा सफर समर्पित है हिंदी फिल्मों के बेहद

पुष्करना ब्राह्मण परिवार से थे। मिट्टी की खुशबू और शब्दों का जादू तो जैसे उनके खून में था। मैं 17-18 वर्ष की उम्र में, जब अमूमन बच्चे अपनी दुनिया में मशगूल होते हैं, भरत जी के अंतर का कवि अंगड़ाई ले रहा था और उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। आपसे चर्चा करते रहेंगे, आइए सुनते हैं भरत व्यास का लिखा ये गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म

0: के मोबाइल ऐप पर भी। रागम आनंद की अटूट रसधार।
1: कार्यक्रम एक ही गीतकार में आज हम बात कर रहे हैं गीतकार भरत व्यास जी के बारे में। साथियों, चुरू से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद भरत व्यास ने कलकत्ता का रुख किया, जहां उन्होंने अपने आगे की पढ़ाई को पूरा किया। और जानते हैं उनकी लेखनी का पहला शाहकार क्या था? उनके दिल से निकला यह पहला गीत था, आओ वीरो हिलमिल गाए वंदे मातरम। उन्होंने नाटक की दुनिया में भी हाथ आजमाया और रामू चन्ना नाम का एक बेहद खूबसूरत नाटक लिखा। तो जब हम उनके सफर की बात कर ही रहे हैं तो एक और प्यारा सा गीत सुनते हैं। फिल्म का नाम है चा चा चा, मोहम्मद रफी और आशा भोसले के युगल स्वर में। आइए सुनिए ये गीत।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: आकाशवाणी नजीबाबाद@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए।

0: अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: एक ही गीतकारी कार्यक्रम आप सुन रखे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और आज मैं आपके साथ हूँ आपकी सखी निधि भारद्वाज। और एक ही गीत कार्यक्रम में श्रोताओं, आज हम बात कर रखे हैं भरत व्यास की, शब्दों की ताकत भरत व्यास जी के और उसे ज्यादा थी, उन्हें और इसी की वजह से अलग भी करती थी। साल 1942 के बाद उन्होंने माया नगरी मुंबई में, जिसे पहले बंबई कहते थे, का रुख किया। शुरुआत में उन्हें फिल्म निर्देशन में भी दिलचस्पी थी और उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दौर में एक फिल्म का निर्देशन भी किया। इतना ही नहीं, 1940 के दशक की कुछ फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया और गाने भी गाए, लेकिन नियति को तो कुछ और मंजूर था। उनकी असली पहचान, उनकी अमर ख्याति तो उनके गीतों से ही हुई। हिंदी फिल्मों में उन्हें पहला बड़ा ब्रेक मिला 1943 माई फिल्म दुहाई से। पन्नालाल घोष, रफीक गजनवी और शांति कुमार के संयुक्त संगीत निर्देशन में नूरजहां और शांता आपटे की आवाजों से सजे उनके गीतों ने बम्बई में भरत व्यास का डंका बजा दिया। भरत व्यास ने 1943 से 1981 तक हिंदी संगीत जगत पर राज किया श्रोताओं, और उन्होंने अपने करियर के लगभग 1000 से अधिक गीत लिखे। उन्हें विशेष रूप से पौराणिक, धार्मिक और सामाजिक फिल्मों के लिए शुद्ध और मधुर गीत लिखने के लिए जाना जाता है। उन्होंने गूंज उठी शहनाई, सारंगा, रानी रूपमती, दो आंखें बारह हाथ जैसी प्रसिद्ध फिल्मों के गीत लिखे, और ये देश अवीर जवानों का, तू चंदा मैं चांदनी, दिल का खिलौना, हाय टूट गया, उनके बहुत लोकप्रिय गीतों में से है। और एक और लोकप्रिय गीत नवरंग फिल्म का बहुत पसंद किया जाता है, वो है आधा है चंद्रमा। तो आइए हम भी सुनते हैं ये प्रसिद्ध गीत महेंद्र कपूर और आशा भोसले के स्वर में, फिल्म है नवरंग।

देख चंद्रमा आधा है, रात आधी है, कहीं तेरी मेरी बात भी आधी न।

सचमुच श्रोताओं, जब हम गीतकार भरतव्यास के लिखे गीतों को सुनते हैं तो उन्हें महसूस भी करते हैं। दोस्तों, 50 और 60 का दशक पंडित भरतव्यास जी के सुनहरे दौर का गवाह बना। उन्होंने सारंग, संत ज्ञानेश्वर, रानी रूपमती, दो आंखें पार हाथ, नवरंग जिसका गीत अभी आपने सुना, बूंच बन गई मोती और पूर्णिमा जैसे फिल्मों के लिए ऐसे यादगार और अमर गीत रचे जो आज भी संगीत के मुसाफिरों के लिए किसी थाती से कम नहीं है। आइए सुनते हैं ये अगला गीत लता मंगेशकर और मन्ना डे के युगल स्वर में फिल्म दो आंखें बारह खाद से, लिखा है भरत व्यास ने।

देखा कितना प्यारा सा गीत भरत व्यास जी ने लिखा, और इस गर्मी में ये प्यारे से गीत से कुछ ठंडक का एहसास भी होगा, और पता चलता है कि पुराने गीत कितने अच्छे हैं जिसमें मौसम की बात है, सावन की बात है, और हर उस चीज़ की बात लिखी जाती थी उस समय जो हम महसूस करते थे। गीतकार अभी भी इतने अच्छे हैं, लेकिन जो बात आज हम भरत व्यास जी के गीतों की कर रही है तो वो तो क्या ही कहने। आइए अब सुनते हैं पूर्णिमा फिल्म का ये गीत मुकेश के स्वर में, गीतकार भरत व्यास।

तो सुना आपने नैनो की सुंदरता की बात भी की, भरत व्यास जी ने तो कितने अलग अंदाज में, भरत व्यास जी एक ही गीत कार्यक्रम में आ

आज हम इनके विषय में आपसे चर्चा कर रहे हैं। श्रोताओं, जब हम फिल्म गुंजटी शहनाई की बात करते हैं तो उस्ताद बिस्मिल्ला खां की शहनाई के साथ अगर किसी के शब्द अमर हुए तो भरत व्यास जी ही थे। चाहे तेरे सुर और मेरे गीत की शास्त्रीय सुघड़ता हो या फिर टूटे दिल की दास्ता। इसके अलावा जैसे कि अभी आपने प्यार सा गीत सुना था, वो भी इनके गीत की एक अलग ही परिभाषा कहता था। एक फिल्म आई गृहलक्ष्मी, गृहलक्ष्मी के भी ऐसे गीत इन्होंने लिखे कि एक एक गीत वो कुछ ना कुछ संदेश देता है, चाहे आशा भोसले का गाया हुआ हो इस दुनिया में, चाहे आशा भोसले ने गाया हो लाल चुनरिया, या कोई और सा भी ऐसा गीत जिसको आप सुनना चाहते हैं। कभी देखिएगा, लगातार सुनेंगे जब आप इस फिल्म के ये गीत, तो आपको लगेगा कि वाह क्या शब्द रचना है, क्या भाव है, क्या गीत है, क्या संगीत है। अब आप चाहते होंगे कि जब हमने इतनी तारीफ कर दी है तो क्यों ना एक और प्यारा सा गीत भरत व्यास जी की कलम से लिखा हुआ आपको सुनवाएं। तो बिल्कुल सुनवाते हैं फिल्म गृहलक्ष्मी का एक गीत आशा भोसले के स्वर में।

4 जुलाई 1982 को पंडित भरत व्यास जी इस नश्वर संसार को अलविदा कहकर अनंत गहराइयों में विलीन हो गए, लेकिन अपनी कविताओं, अपने गीतों के जरिए वो आज भी हमारे बीच जिंदा हैं। बस अब चलते चलते यही कहेंगे कि हवाओं में बिखरी रहे कि उनके गीतों की खुशबू सदा, महफिल थमती है मगर सुर नहीं होते कभी जुदा। अब कार्यक्रम संपन्न करने की अपनी सखी निधि भारद्वाज को दीजिएगा अनुमति। नमस्कार, आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही गीतकार, इसमें गीतकार थे आज हमारे भरत व्यास। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रखे हैं। अपराहन के 3 बज रखे हैं, हमारी इस सभा के प्रसारण अब संपन्न होते हैं। अपनी संध्याकालीन प्रसारण सभा में शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बज रहे हैं। हमारी दूसरी सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं। सभा के आरंभ में सुनते हैं मेरा सपना उन्नत भारत क्रम में बच्चों की शिक्षा को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रम, बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, अल्पसंख्यक संस्थानों में आधारभूत संरचना विकास योजना। बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम NPEGEL की शुरुआत 2003 में हुई थी। यह कार्यक्रम विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए बनाया गया जहां बालिकाओं का नामांकन और विद्यालय में बने रहने की स्थिति कमजोर थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बालिकाओं को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना था, उनका नामांकन बढ़ाना था, विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति को कम करना था और साथ ही शिक्षा के माध्यम से बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाना भी इसका लक्ष्य था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों की बालिकाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय तथा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बालिकाओं को प्राथमिकता दी गई। विद्यालयों में अतिरिक्त शिक्षण सामग्री, विशेष कक्षाएं, जीवन कौशल शिक्षा, बालिका अनुकूल वातावरण तथा समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा दिया गया। आवश्यकता वाले क्षेत्रों में मॉडल क्लस्टर स्कूल और शैक्षणिक सहायता केंद्र विकसित किए गए। इस कार्यक्रम से बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि हुई और विद्यालय छोड़ने की दर में भी कमी आई तथा शिक्षा के प्रति समाज के सकारात्मक सोच विकसित हुई। इससे लैंगिक समानता को बढ़ावा मिला और बालिकाओं के सर्वांगीण विकास का मार्ग भी प्रशस्त हुआ। बालिकाओं की प्रारंभिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम NPEGEL भारत की एक महत्वपूर्ण पहल थी। इसका उद्देश्य प्रत्येक बालिका को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना था और शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक समानता स्थापित करना था। बाद के वर्षों में इसके उद्देश्य को सर्व शिक्षा अभियान तथा आगे चलकर समग्र शिक्षा अभियान में भी सम्मिलित किया गया। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देकर यह कार्यक्रम राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता रहा है। अब जानते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बारे में। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण आवासीय शिक्षा योजना है। इसकी शुरुआत जुलाई 2004 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य ऐसे क्षेत्रों की बालिकाओं को निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है जहाँ बालिकाओं का नामांकन कम है तथा विद्यालय छोड़ने की दर ज़्यादा है। यह योजना विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्ग की बालिकाओं के लिए शुरू की गई। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षा से जोड़ना, विद्यालय छोड़ चुकी बालिकाओं को पुनः शिक्षा से जोड़ना। विद्यालय छोड़ी गई बालिकाएं जो थी पुनः शिक्षा की मुख्य धारा में आ जाती हैं। इसके माध्यम से बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, लैंगिक असमानता को भी कम किया गया तथा महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य था। अब जानते हैं अल्पसंख्यक संस्थानों में आधारभूत संरचना विकास योजना यानी कि IDMI के बारे में। देश के अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने तथा अल्पसंख्यक संस्थानों में आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से अल्पसंख्यक संस्थानों की आधारभूत संरचना विकास योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के माध्यम से विद्यालयों में भवन, अतिरिक्त कक्ष, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, शौचालय, पेयजल तथा अन्य अवकाश शैक्षणिक सुविधाओं का विकास किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की आधारभूत संरचना को मजबूत करना था, विद्यालयों के लिए और विद्यार्थियों के लिए बेहतर शिक्षण वातावरण तैयार करना,
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना तथा शिक्षा में समान अवसर उपलब्ध कराना था। इसके माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय की शैक्षिक भागीदारी और नामांकन में वृद्धि करना भी इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य था।

अभी आप सुन रहे थे मेरा सपना उन्नत भारत क्रम में बच्चों की शिक्षा को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रम बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अल्पसंख्यक संस्थानों में आधारभूत संरचना विकास योजना। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:10 होने को हैं। हमारा अगला कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत आज सुनिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण विशेष योगदान देने वाले देवेंद्र सूरा के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही हैं नीति शुक्ला।
0: नमस्कार, मैं हूँ नीति शुक्ला और प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ में मैं आज ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने वाली हूँ जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। वैसे तो हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल है, लेकिन जो बात इन्हें खास बनाती है वो है इनका काम। ये जाने जाते हैं ट्री मैन ऑफ हरियाणा के नाम से। आइए, क्या है इनकी जर्नी और क्या है काम, जानते हैं खुद इन्हीं से। स्वागत करते हैं देवेंद्र सूरा जी का, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: नमस्ते बहन जी, बड़ा धन्यवाद करता हूँ मैं आकाशवाणी का, जिस तरह आकाशवाणी ने पर्यावरण के विषय को उठाया है और जन जन तक ये बात जाए और समाज में बड़ा परिवर्तन आए।
0: तो देवेंद्र जी, आप बने ट्री मैन ऑफ हरियाणा, लेकिन इसके पीछे एक लंबा सफर रहा होगा। हम उस सफर की शुरुआत की बात करेंगे कि क्या थी वो पहली घटना जिससे आपको अंदर तक झकझोरा और आपने सोचा कि इस दिशा में काम करना चाहिए और पेड़ लगाने चाहिए।
2: वैसे तो मैं अपनी मातृभूमि से, अपने देश से बड़ा लगाव है और उसके लिए समर्पित भाव से मेरे मन में यही था, मैं अपने देश के प्रति ऐसा क्या कार्य करूं जिससे मेरे मन को भी शांति मिले और देश को भी लाभ मिले। शुरू में इस तरह हमारा जो बचपन था वो गांव में या खेतों में ही बीता है, हम प्रकृति से जुड़े हुए थे। लेकिन जब हम शहर में आए सोनीपत में और बाद में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम चंडीगढ़ पुलिस में जब मैं भर्ती हुआ,
0: अच्छा,
2: तो चंडीगढ़ पुलिस में वहाँ की हरियाली को देखा और मेरे मन में आया जब चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है तो पेड़ पौधों की वजह से है, क्योंकि वहाँ बहुत ऐसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले पेड़ या औषधीय पेड़ बड़ी संख्या में लगे हैं। और वहाँ से मेरा मन भी प्रभावित हुआ, जब पेड़ पौधों की वजह से, प्लान की वजह से एक शहर को हरा भरा बनाया जा सकता है और जिसका पूरे देश में नाम है, तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गांव को हरा भरा बनाएं।
0: तो ये कब शुरुआत की आपने?
2: ये 2011 में मैं चंडीगढ़ में गया और वहाँ से बड़ा प्रभावित हुआ और उसके बाद धीरे धीरे विचार बनता गया, राष्ट्र के लिए ऐसा क्या कार्य करूं जिससे मेरे मन को ऊर्जा मिले, और 2012 में तो इस तरह कार्य शुरू किया और 2014 में तो बिल्कुल ने मन में धारण कर लिया प्रतिदिन पर्यावरण के अनुकूल जीवन जीना, पर्यावरण के लिए ही कार्य।
0: तो अब तक कितने पेड़ लगा चुके हैं आप?
2: अब तक 2.5 लाख के लगभग हमने पेड़ ऐसे लगाए हैं जो वृक्षों का रूप ले चुके हैं।
0: अच्छा,
2: जैसे हम परिवार में एक बच्चे का पालन पोषण करते हैं, एक छोटे बच्चे की सुरक्षा करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसके खाने का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही पेड़ लगाकर उसकी सुरक्षा, उसके पानी की व्यवस्था, उसको परिवार का एक हिस्सा मानकर उसको इस दृष्टि से गांव-गांव विचार भी बढ़ा और पेड़ भी बढ़े।
0: मेरा अगला सवाल यही था कि एक पौधा लगाना, एक सैपलिंग लगाना या बीज लगाना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन उसकी देखभाल करना बड़ा मुश्किल है और आप हर जगह तो नहीं जा सकते हैं, तो ये कैसे मैनेज करते हैं, कैसे लोगों को जोड़ते हैं?
2: शुरू में जब समाज में गए तो इतना मजबूत विचार नहीं था, क्योंकि गांव-गांव गए, युवाओं को जोड़ा, गांव की चौपालों में गांव वासियों को इकट्ठा किया, तो पर्यावरण के प्रति या पेड़ पौधे प्रति बहुत कम विचार। लेकिन जब धीरे धीरे गए, उनको इनके महत्व को समझाया, तो हमने कहा देखो हमारी मुहिम चलती है बीजारोपण से वृक्षारोपण। अगर जो बच्चा अगर छोटा है बीज से जुड़ जाता है, उसको पता लग गया आम की उठली से पौधा कैसे बनता है, जामुन की उठली से पौधा कैसे बनता है, जब वो उसको बीज से अंकुरित पौधा उगाते हुए खुशी होगी, निश्चित तौर पर उस पौधे से जुड़ेगा और पूरा जीवन उसकी देखभाल करेगा, उसको परिवार का हिस्सा मानेगा और गांव में बड़ी संख्या में सभी को इकट्ठा करके एक मूवमेंट, जन आंदोलन के रूप में कार्य।
0: किस एज ग्रुप का सबसे ज्यादा आपको सहयोग मिला या उत्साह से लगे? वृद्ध लोग थे या युवा थे, किस तरह के लोग थे?
2: वैसे तो पूरे समाज का, जनमानस का सहयोग मिला, लेकिन मैं कहूँ तो सबसे ज्यादा सहयोग युवाओं का मिला।
0: अच्छा।
2: और उसमें युवाओं में हमारे युवा साथी भी थे और हमारी स्कूल की बेटियां भी, कॉलेज की बेटियां भी थी, जिन्होंने जब हम गांव-गांव गए, गांव में वृक्षारोपण अभियान चलाए, तो एक समय की बात है हम एक डिवाइडर पर पेड़ लगा रहे थे, तो हमारे मन में आया क्यों ना इस बार हम पेड़ बेटियों के नाम पे लगाएंगे।
0: अच्छा।
2: और हमने 100 पीपल के पेड़ 100 बेटियों के नाम पे लगाए और उनकी सुरक्षा के लिए हमने उस पे लोहे का ट्री गार्ड लगाया।
0: अच्छा।
2: और उस पे हमने, जैसे अक्सर समाज में होता है, अगर बेटी के अगर कहते हैं भाई उसके ऊपर स्नोप लिखा जाता है तो उसमें पिता का नाम ज्यादा आता है हर जगह, लेकिन हमने एक मुहिम चलाई, युवा साथियों से चर्चा की, अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है उसकी माँ का नाम। और उसमें मातृशक्ति ने, वहाँ के जो भी सम्मानित या जितनी प्रिंसिपल, सभी ने भागीदारी दिखाई, एक बड़ा विश्वास बना समाज में और वो आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष है, ठंडी सड़क है, पीपल वृक्ष है, बेटी रोड है ऐसे कहते हैं।
0: कहाँ पर है बेटी रोड? कहाँ पर है?
2: सोनीपत में है।
0: सोनीपत में। ये जर्नी आसान तो नहीं रही होगी, क्योंकि आपने सहयोग की बात की, आई एम श्योर कि बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे इसमें, तो वो किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा?
2: समाज में अगर हम काम करते हैं, अगर हम बात करें पहले भी देश के लिए लाखों व्यक्तियों ने काम किया, और उसमें जब भी हम कोई इस तरह का समाज के लिए देश के लिए कार्य करते हैं उसमें निश्चित तौर पर हमें संघर्ष और बाधाएं आती हैं, लेकिन जब एक लक्ष्य स्पष्ट हो, एक नीति स्पष्ट हो, इस मातृभूमि के लिए देश के लिए कार्य करना है, तो जब शुरू में हम समाज में वृक्षारोपण अभियान चलाया तो अक्सर लोग कहते थे भाई ये काम आपका नहीं है, समाज में मानते थे ये तो जो वृक्षारोपण है पेड़ लगाना वो माली का ही काम है। शुरू में वो कहते थे भाई आप और कार्य करो, आप इस तरफ कहां बढ़ते जा रहे हो, लेकिन धीरे धीरे जब हम उस गांव में पेड़ लगाए और उस गांव में अच्छा वातावरण बना और गांव में फल लगे, किसी गांव में फूल लगे, तितलियों की संख्या बढ़ी, मधुमक्खियों की संख्या बढ़ी, तो धीरे धीरे समाज में एक विचार मजबूत होता चला गया, एक जन आंदोलन का रूप लेता चला गया, गांव गांव इस तरह के अभियान चले और सैकड़ों गांव इसमें जुड़े।
0: अब ये तो बात हुई लोगों के सहयोग की, लेकिन अब सवाल उठता है वर्क लाइफ बैलेंस का, क्योंकि आप एक सरकारी नौकरी चंडीगढ़ पुलिस में थे, तो कैसे करते थे ये?
2: मैंने खुद पुलिस में रहते हुए देखे, इतने बड़े अनुशासन की सर्विस है और इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, आईपीएस हैं, जो बड़े अच्छे अधिकारी हैं जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है समाज के लिए देश के लिए काम करने की। और ऐसे ही हमारे चंडीगढ़ पुलिस में हमारे डीजीपी हैं, आईजी हैं, एसएसपी हैं, और उनका पूरा सहयोग बना रहता है हमारे ऊपर, जो भी हमारी छुट्टियां होती है लंबी छुट्टी या जब भी जिस तरह के हमें ड्यूटी का हम अपेक्षा करते हैं, ड्यूटी के साथ साथ समाज का इस पर्यावरण का काम कर सके। और निश्चित तौर पर मैं कहता हूँ पुलिस की जॉब में तो बड़ा आनंद रहा, बड़ा अनुभव रहा, क्योंकि पुलिस की जॉब में एक अनुशासन था और पुलिस के अधिकारियों का फुल सपोर्ट मिला, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से पूरे देश में एक पुलिस की छवि बेहतर हुई, जिस तरह से समाज में पौधारोपण का कार्य किया, लोगों में विश्वास बढ़ा, तो इसी तरह लोगों में समाज में भी विश्वास बढ़ा, पुलिस वाला व्यक्ति भी इस तरह समाज में पर्यावरण के लिए, इस धरती माँ के लिए कार्य कर सकता है।
0: आपने नाम भी रोशन किया, क्योंकि आपका नाम अब जीके के सवालों में भी पूछा जाता है कि ट्री मैन ऑफ हरियाणा कौन है, और जवाब में आपका नाम आता है, तो आपके डिपार्टमेंट का रिएक्शन कैसा होता है?
2: मैं कहता हूँ प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जीव जंतु के लिए, इस पूरे देश के लिए सबसे जो जरूरी है पर्यावरण का विषय है, और ऐसा विषय अगर पूरे समाज में, पूरे देश में अगर चंडीगढ़ पुलिस का नाम होता है तो पूरा गर्व महसूस होता है चंडीगढ़ पूरी पुलिस को, पूरे कर्मचारियों को, सीनियर अधिकारियों को, और पूरा हौसला बढ़ाते हैं।
0: अच्छा, एक चीज हमने सुनी है कि आप अपनी पूरी पूरी सैलरी लगा देते हैं इस अभियान के लिए, और कई बार आपने लोन भी लिया है, तो क्या वो एक अनुभव रहता है? घर में कभी विरोध नहीं हुआ?
2: जब हम पूरी पूरी सैलरी इस पे लगा देते हैं, और कई बार ऐसा होता है ज्यादा वृक्षारोपण के या नर्सरी खोलने की बात होती है तो उसमें लोन लेना पड़ता है, क्योंकि लोन से एकदम तुरंत पैसा मिल जाता है। तो शुरू में घर में परिवार में तो विरोध हुआ, क्योंकि परिवार में अक्सर क्या होता है, ज्यादातर समाज यही अपेक्षा करता परिवार वाले कि हमारी बड़ी गाड़ी हो, एक बंगला हो, और भी सुविधाएं बढ़े, और भी संपत्ति बढ़े, लेकिन मेरा विचार ये था कि हमारा पर्यावरण बढ़े। जब हवा ही सांस लेने योग्य नहीं रहेगी तो मैं मानता हूँ जो ये भौतिक चीजें जो हम बढ़ाते जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं बहुत छोटी हैं। हमारे परिवार में भी, रिश्तेदारी में भी, समाज में भी ऐसा बहुत शुरुआत में विरोध हुआ कि ये इतना आप इस तरफ बढ़ते जा रहे हो, और समाज जो है एक दिशा जो समाज में चाहते हैं लोग भौतिक संसाधन वो बढ़ाएं, समाज में बड़ी दिक्कत आई, परिवार में बड़ी दिक्कत आई, लेकिन धीरे धीरे जब विचार मजबूत हुआ, उन्होंने पता चला जिस तरह से प्रकृति एक मनुष्य भी एक जीव है, अगर हम पर्यावरण के अनुकूल हम नहीं रहेंगे, अपनी जीवन शैली नहीं रखेंगे, पेड़ नहीं लगाएंगे, जितना व्यक्ति का इस धरती पर महत्व है उतना ही एक मधुमक्खी का, उतना ही एक तितली का, उतना ही मोर का, मैं ये कहता हूँ हर जीव जंतु का उतना महत्व है, तो धीरे धीरे विचार बना और पूरा परिवार आज इस अभियान में बड़ा सहयोग करता है।
0: जब आपने ये शुरू किया था अभियान तो कभी लगा था कि ये इतना बड़ा अभियान बन जाएगा?
2: नहीं, मैं जब गांव से 1995 में आया और गांव में ज्यादा खेतों में जाते थे दादाजी के साथ, और स्कूल में कम रुचि थी, लेकिन गांव से निकल के आए और शहर में पढ़े, मैं कहता हूँ स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ हम बहुत से समाज में जो हमारे सीनियर होते हैं या जागरूक लोग होते हैं उनसे मिले और उनसे सीखने को मिला, और धीरे धीरे मैं ये मानता हूँ कि शुरुआत में ऐसा कभी सोचा ही नहीं था गांव, जैसे आज कई हजार युवा साथी जुड़े हैं, प्रत्येक गांव में ऐसा मतलब ऐसा महसूस होता है ये गांव भी हमारा है, ये गांव भी हमारा, मतलब पूरा समाज अपना परिवार लगता है, तो इस तरह से गांव गांव गए और आज कभी ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन नेक नीति जब व्यक्ति की स्पष्ट होती है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती, आज महसूस होता है प्रत्येक गांव अपना परिवार की तरह है और पूरा देश अपना एक मातृभूमि अपना एक परिवार की तरह है, और आज बड़ा गर्व महसूस होता है, क्योंकि आज एक विचार है, प्रत्येक गांव से युवा जुड़े हैं, मातृ शक्ति जुड़ी है। और मैं बात करता हूँ, मेरे को बड़ी प्रेरणा मिलती है जब मैं गांव में जाता हूँ, क्योंकि लोग इकट्ठा होते हैं और वो सोचते हैं। गांव पर व्यक्तियों का नहीं होता, गांव समस्त जीव जंतुओं का, एक अच्छे तालाब का, सभी से मिलकर गांव बनते हैं।
0: आपने जीव जंतु की बात की, तो आजकल हमने ये भी नोटिस किया कि बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, इसी के चलते कि उनके पास प्रॉपर रहने की जगह नहीं है, खाने पीने की नहीं है, तो उनके लिए किस तरह के पेड़ आप लगा रहे हैं कि उन्हें भी प्रॉपर हैबिटेट मिले और खाना मिले?
2: बहुत सी प्रजातियां आज विलुप्त हो रही है, और मैं मानता हूँ इसके ऊपर बड़ा गहरा हमने काम किया है। जैसे आपने देखा होगा विश्व में कोरोना जैसी महामारी आई, और पूरे संसार को, जिसने प्रत्येक मनुष्य की मन को, विचार को हिला दिया। समाज में जैसे लंबे समय से वृक्षारोपण अभियान चला रहे, लेकिन हम ये मानते हैं जब लोगों का कोरोना काल में प्रकृति के प्रति बड़ा झुकाव था, और हमने देखा कि हर गांव में पहले वन क्षेत्र होते थे, बनी होती थी, और आपने कहा विलुप्त होती प्रजातियां, तो उन बनियों में वे ऐसे आश्रय थे जहां पर मुख्य जीव जंतु जैसे नेवला है, तीतर है, गिलहरी है, मोर है, बहुत से सैकड़ों जीव जंतु उसमें रहते थे। वो उनका एक गांव था, और उसमें गांव वासियों का एक विचार बना, युवा साथियों से विचार किया, हर गांव में ऑक्सीजन बाग लगाना है। आपने आम के बाग सुने, आपने बेर के बाग सुने, लेकिन जब ऑक्सीजन शब्द का प्रयोग आया, गांव वासियों का झुकाव बना, और हजारों की संख्या में गांव वासी माताएं, बहने, युवा साथी एक बढ़ चढ़ कर भाग लिया, और गांव गांव इस तरह से 10 एकड़ में, 20 एकड़ में वृक्षारोपण अभियान चले, और हरियाणा

0: कि 27 गांव में इस तरह के अभियान चले और एक जन आंदोलन का रूप लिया। गांव गांव ऐसा प्रयास है हर गांव में इस तरह के ऑक्सीजन बाग लगाए जाए।
1: तो अब तक कितने गांव में आप लगा चुके हैं ऑक्सीजन बाग?
0: अब तक 27 गांव में ऑक्सीजन बाग लगाए हैं और उसके अतिरिक्त जैसे बहुत से गांव में जैसे शमशान भूमि है या किसी तालाब के पास है या स्कूल के पास है मतलब या स्टेडियम है, मतलब ऐसे पेड़ लगाए जाते हैं ऑक्सीजन बाग में जो ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं। आजकल प्लास्टिक का प्रयोग बढ़ता जा रहा है लेकिन उससे पहले हमारे पत्तों की पतल प्रयोग होती थी, उसके लिए ढाक के पेड़ का प्रयोग होता था। हम ढाक के पेड़ को बढ़ा रहे हैं, ऐसे पेड़ को बढ़ा रहे हैं जिससे या तो जीव जंतुओं को आश्रय मिलता है या ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, मतलब धीरे धीरे उन औषधीय वनस्पतियों को भी बढ़ाया जा रहा है।
1: तो आपका फेवरेट पेड़ कौन सा बन गया है, क्योंकि जिसकी ज्यादा बहुत ज्यादा देखरेख ना करनी पड़ी हो, बस लगा दिया और वो अपने आप फल जाता हो?
0: वैसे तो सभी वनस्पतियों का इस धरती पे महत्व है लेकिन मेरा झुकाव बरगद के पेड़ पे, राष्ट्रीय पेड़ है और एक ही पेड़ मैं कहता हूँ इसमें हजारों जीव जंतुओं का आश्रय बनता है।
1: अगर एक आम इंसान भी हमारी बातचीत सुन के उसे भी लगे कि हमें भी पेड़ लगाना चाहिए तो वो क्या करे सबसे पहले?
0: अगर आम इंसान भी आकाशवाणी की बात को सुन के और जन जन का विचार बने हमारे को भी पेड़ लगाना है तो सबसे बड़ी बात है उसका विचार बन गया पेड़ लगाना, ये बहुत बड़ी बात है। और उसको सबसे पहले अपने ऐसी आदत डाले जैसे घरों में छोटी छोटी नर्सरियां बनाए, जैसे अभी हम आम खाते हैं, आम की गुठली से अपने गमलों में पौधा तैयार करे या जामुन की गुठली से पौधा तैयार करे, नीम से पौधा, जो भी घरों में फल प्रयोग करते हैं उसे पौधे तैयार करे और एक छोटे ही घर में ही नर्सरी बनाए। जब उसके पौधे 2-3 फीट के हो जाए तो कहीं भी नजदीक कोई पार्क है या कहीं उसके खेत में है, जहां भी संभव हो उन पेड़ों को लगाए और परिवार का हिस्सा माने और हो सके तो अपने जो भी घर में सदस्य है उनके जन्मदिन पर ऐसा प्रयास करे तो समाज में एक बड़ा परिवर्तन आएगा।
1: अच्छा।
0: पार्कों में वृक्षारोपण कर सकते हैं अपने घरों में, और नहीं तो ज्यादा नहीं तो मैं कहूंगा ऑक्सीजन देने वाले इंडोर प्लांट लगा सकते हैं जन्मदिन पर, जैसे एरिका पाम है, स्नेक प्लांट है, पीस लिली है, या घर में छोटे पौधे एलोवेरा है, तुलसी है, अश्वगंधा है, ऐसे पौधे हम घरों में जन्मदिन पर लगा सकते हैं। और गांव वासियों के लिए कहता हूं जो अपने गांव में गोचर भूमि होती है, पंचायत भूमि होती है, उसमें खुले तौर पर बड़ी बड़ी भूमियां होती हैं और खासकर एनसीआर के आसपास में बात करूं तो बहुत ज्यादा संख्या में हर गांव में भूमि है और पंचायत या गोचरण भूमि में बड़े स्तर पर पौधारोपण किया जा सकता है।
1: अवेयरनेस का कितना महत्व है इसमें और सोशल मीडिया के जरिए इसे किस तरह से बढ़ावा दे सकते हैं?
0: अवेयरनेस का ये सबसे बड़ा महत्व मैं अपना अनुभव साझा करता हूं आपके साथ, क्योंकि 10-12 साल पहले जब हम वृक्षारोपण करते थे तो उस समय इतनी जागरूकता नहीं थी, हम गांव-गांव जाते थे, लोगों को इकट्ठा करते थे, अगर 10 लोगों को करना था उसके लिए भी कई बार प्रयास करने पड़ते थे। लेकिन मैं कहता हूँ सबसे बड़ी अवेयरनेस धीरे धीरे लोगों का विचार बढ़ा और आज सम्मान से महसूस करते हैं पेड़ लगाना बड़ा अच्छा कार्य है। और आज जब भी ऑक्सीजन बाग लगाया जाता है किसी गांव में तो वहां पर उस गांव के हजारों व्यक्ति, माताएं, बहने, बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं, भंडारा लगाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं। एक जैसे घर में त्यौहार होता है या शादी वगैरह होती है, इस तरह गांव में वृक्षारोपण अभियान चलाते हैं। तो मैं ये मानता हूँ विचार के माध्यम से, ये एक संख्या तौर पर वृक्षारोपण हुआ है लेकिन विचार के माध्यम से समाज में एक बड़ा परिवर्तन आया और बड़ा जन आंदोलन का रूप।
1: नेटिव प्लांट का कितना महत्व है, अगर हम पेड़ लगाने के लिए जाएं तो कौन से ऐसे नेटिव प्लांट हैं आप उनका सुझाव देंगे कि ये लगाने चाहिए?
0: जहां हम रहते हैं वहां के जो स्थानीय प्रजातियां पेड़ पौधों की वो ज्यादा लगाएं। जैसे अगर अपने एनसीआर की हरियाणा की बात या दिल्ली की बात करें तो इसमें एक बेरी का पेड़ है या नीम का पेड़ है या जाटी का पेड़ है, मतलब जो बड़ा प्राचीन पेड़ है, तो ऐसे बरगद है, पीपल है, मतलब उन पेड़ों को बढ़ाएं जो आसानी से उस भूमि में चल सके, उसके जलवायु के अनुकूल उनका पालन पोषण कम करना पड़े और विशाल रूप ले सके, वो भी खुश रहें और ऑक्सीजन भी खुश होके दे सके।
1: पॉलिथिन से किस तरह का नुकसान हो रहा है हमारे पर्यावरण को?
0: आज से अगर हम 30 साल पहले की बात करते हैं, किसी गांव में जाते हैं, गांव में कोई भी पॉलिथिन नहीं थी। अक्सर हमारे बुजुर्ग हैं वो कोई भी दाल, चीनी या सब्जी लेनी होती थी वो अक्सर पुराने कपड़े और थैलों का प्रयोग करते थे। और मैं तो बड़ा गर्व महसूस करता, साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला,
1: क्या बात है।
0: तो देखो ये पर्सनालिटी के ऊपर है, व्यक्ति दो तरह की पर्सनालिटी है, एक इंटरनल पर्सनालिटी, एक एक्सटर्नल, वो हमारे ऊपर हम कैसा जीवन जीते हैं। मैं खुले दिल से थैले का प्रयोग करता हूँ, कोई भी सामान लेता हूँ इसमें डालता हूँ, प्रतिदिन एक घर में कम से कम आप लगाओ 5 पॉलीथिन आती है और महीने की 150 हुई तो साल की हजारों पॉलीथिन हो गई। और धीरे धीरे अगर इसको हम कम करें, मैं जोर दूंगा कम से कम पॉलीथिन का प्रयोग करें, तो धीरे धीरे जब पॉलीथिन कम होगी, गाँव अगर गंदा है तो पॉलीथिन की वजह से गंदा है, शहर अगर गंदे हैं तो पॉलीथिन की वजह से गंदे हैं, और कहीं ना कहीं हम जो ये प्रदूषण के गुलामी महसूस करते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा निवेदन है पॉलीथिन को जितना कम से कम प्रयोग हो, अपना जीवन में पॉलीथिन का कम प्रयोग करें, दोबारा से कपड़े के थैलों का प्रयोग करें, जूट के थैलों का प्रयोग करें, और कहीं ना कहीं इस धरती माता को कुछ दे सकते हैं तो पॉलीथिन को कम करके दे सकते।
1: तो अगर कोई पेड़ नहीं भी लगा पा रहा है और उसकी सेवा नहीं कर रहा है, तो कम से कम वो पॉल्यूशन जो करने वाली चीजें वो कम इस्तेमाल करे तो काफी बदलाव आ सकता है।
0: सबसे बड़ा मैं परिवर्तन मानता हूँ व्यक्ति अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करे। वो जीवन शैली में व्यक्ति अगर 4 जोड़ी कपड़े डालता है तो निश्चित तौर पर उस कपड़े को बनने के लिए कितना पानी वेस्ट होता है, भारी मात्रा में मतलब पानी की वेस्टेज होती है। इसलिए अपने जीवन को पर्यावरण के अनुकूल जीने का प्रयास करें। जैसे समय हो आपके पास तो पैदल चले या साइकिल का प्रयोग करें, कम से कम कपड़ों का प्रयोग करें, साधारण जीवन शैली अपनाएं, मतलब पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाएं।
1: अगर हर नागरिक एक पेड़ लगाए, ज्यादा नहीं सिर्फ एक पेड़ अपने जीवन में लगाए, तो कैसा बदलाव आ सकता है?
0: पूरे विश्व में बात करें तो ऐसे देश भी है जिसमें 8-9 हजार प्रति व्यक्ति पेड़ है, लेकिन अगर भारत की बात करें तो 28 पेड़ प्रति व्यक्ति है। लेकिन समाज की बात करें, लोगों में बहुत कम जागरूकता है पेड़ लगाना चाहिए। मैं कहता हूँ अगर व्यक्ति का यही एक जागरूकता उसके अंदर आ गई है, मैं एक पेड़ लगाना, वो एक पेड़ से नहीं रुकेगा। एक बार वो पेड़ से जुड़ गया, उसने उस पेड़ को अपने परिवार का हिस्सा मान लिया, तो निश्चित तौर पर हर साल वो किसी न किसी उत्सव जन्मदिन पर पेड़ लगाएगा। और सरकारें भी ऐसा करती हैं। हरियाणा में स्कीम चली है जैसे किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जिन किसानों के खेतों में पेड़ है, जैसे पुराने पेड़ है, पीपल है, जाटी है, नीम है, उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है। जिनके बड़े पेड़ है या गांव में पंचायत को मिलती है या जिसके खेत में है जगह में उसको मिलती है। हरियाणा मात्र ऐसा प्रदेश है जहां पेड़ों को भी पेंशन मिलती है।
1: तो इससे बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा पेड़ लगाने के लिए। और अगर हर बच्चे के जन्म पे एक पेड़ लगा दिया जाए तो मुझे लगता है कि ये काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है।
0: हाँ देखो, अगर परिवार में 4 सदस्य है तो 4 पेड़ लगाएंगे, धीरे धीरे समाज में एक जागरूकता बढ़ती जाएगी। और जन्मदिन ही ऐसा एक उत्सव है जो हर वर्ष आता है, हर व्यक्ति का आता है, और जन्मदिन पर हर व्यक्ति चाहता है वो कुछ ऐसा करे जो इस धरती पर आया है उसका मन भी खुश हो, वो इस प्रकृति को भी कुछ दे सके। और मैं कहता हूं अगर आप वाली बात है, अगर जन्मदिन पर व्यक्ति में जागरूकता आती है, पेड़ लगाता, निश्चित तौर पर इस देश में जो पर्यावरण की समस्या है, पेड़ों की समस्या है, उसका हल एक जन्मदिन पर पौधारोपण से ही पूरे देश में एक जन आंदोलन का रूप बन सकता है।
1: आपने कोई नर्सरी की भी शुरुआत की है क्या, जहां से आप बीज या सैपलिंग्स लोगों को देते हैं?
0: हाँ, ऐसा एक जनता नर्सरी बनाई है, उसका नाम भी इसलिए रखा जनता नर्सरी क्योंकि जनता ही नर्सरी है। उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं और उसमें ऐसे पेड़ ज्यादा दिए जाते हैं जैसे बरगद, पीपल, नीम या फलदार जामुन, अमरूद, बेलपत्र, मतलब ऐसे वृक्ष दिए जाते हैं जो सामान्य तौर पर समाज में जागरूकता भी बढ़े और पर्यावरण के लिए भी अच्छे रहे।
1: इतने सालों में कभी आपको ये नहीं हुआ कि भाई बस बहुत हो गया, मैंने बहुत पेड़ लगा लिए, बाकी लोग भी कुछ करें, ऐसा विचार कभी आया मन में?
0: विचार ऐसा आता है कि परमात्मा मेरे को और ज्यादा पहले से ही जागरूक करता, मैं जो ये पेड़ लगाने का कार्य है, ये धरती का जो प्रकृति का कार्य है, ये मैं और पहले से शुरू कर पाता। अभी मन कहता है ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है, और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
1: अब कुछ सवाल हमने रैपिड फायर के लिए आपके लिए रखे हैं, तो आपका पसंदीदा पेड़ कौन सा है?
0: मेरा पसंदीदा पेड़ बरगद का पेड़ है, राष्ट्रीय वृक्ष।
1: पर्यावरण को सेफ रखने के लिए कोई एक आदत जो हर भारतीय को अपनानी चाहिए?
0: पर्यावरण के अनुकूल जीवन जीना चाहिए।
1: और अगले 10 सालों में अपनी इस मुहिम को आप कहां देखने का सपना देखते हैं?
0: अगले 10 सालों में यही सपना देखते हैं, जनमानस में ये मुहिम बढ़े और हर गांव में दोबारा से जैसे पहले गांव थे तितलियां, मधुमक्खियां, और दोबारा से पक्षियां उड़े और गांव जैसे पहले थे वैसे गांव बने, और वनस्पतियां बढ़े, पक्षियों की जो लुप्त होती प्रजाति जैसे गिद्ध है वो दोबारा से लौटे, उनका घर है।
1: एक सवाल मेरे जहन में ये भी आ रहा था कि आप किस तरह से ये काउंट रखते हैं कि इतने पेड़ लगाए, जैसे शुरू में आपने कहा कि लगभग 2.5 लाख पेड़ आप लगा चुके, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप जितने सैपलिंग्स लगाएं वो वृक्ष में तब्दील हों, तो किस तरह से आप ये काउंट करते हैं?
0: ज्यादा करे जैसे हम ऑक्सीजन बाग लगाते हैं और उसमें पहले से ही होता है, इसमें आज इस गांव में 1100 पेड़ लगेंगे या 5000 पेड़ लगेंगे, और उसमें प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ा जाता, गांववासी को जोड़ा जाता है, इस माता का ये पेड़ है, इस बच्चे का ये पेड़ है, और उसको पूरे गांव को उसको जोड़कर उसकी सुरक्षा भी की जाती है, ऑक्सीजन बाग की और पानी की व्यवस्था भी की जाती है। और उसमें ऐसा होता है एक दो पेड़ की दिक्कत हो सकती है, नहीं तो उसमें मैं कहता हूँ 99% पेड़ कामयाब होते हैं। जब हम जुड़ाव एक बच्चे जैसे

0: परिवार मोता है, जब पेड़ को भी परिवार का हिस्सा मानते हैं और उसकी देख रेख करते हैं, उसमें कामयाबी निश्चित तौर पर 100% मिलती है।
1: किन लोगों से आपको प्रेरणा मिली इस काम को करने की?
0: वैसे तो सबसे बड़ी प्रेरणा मनुष्य भी प्रकृति का हिस्सा है और इस धरती माँ से बड़ी प्रेरणा मिलती है, लेकिन मैं बात करूँ पूरे विश्व में, 1730 में माँ अमृता देवी ने पेड़ों के लिए बलिदान दिया, उनकी प्रेरणा से उनकी तीनों बेटियों ने बलिदान दिया और उनके बलिदान से उस आसपास के गांव के 363 व्यक्तियों ने पेड़ों को बचाने के लिए राजस्थान में बलिदान दिया। मुझे याद आती है माता सालूमरदा थी मक्का, कर्नाटक से हैं, जो अभी उनका दाह संस्कार हुआ 114 साल की हुई थी। मैं गया था वहां उनसे मिलने के लिए और उनके कोई संतान नहीं थी, लेकिन उन्होंने बरगद के पेड़ों को अपना संतान के रूप में माना और कोयले की खान में वो काम करती थी, उनका एक झोपड़ी में रहती थी। मैं देखा उनका जो कार्य था इस प्रकृति के माँ के लिए, पेड़ों को बच्चों के रूप में मान के कार्य किया, मतलब ऐसे लोगों से मेरे को बड़े प्रेरणा मिलती है।
1: हमें आपसे ये बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और अगर हमारी ये बातचीत सुन के किसी को भी ये लगा हो कि उनको भी अपने जीवन में पेड़ लगाने चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये जो हमारी बातचीत है बहुत सार्थक रहेगी।
0: मेरे को बड़ी ऊर्जा मिली, ये जो आकाशवाणी के माध्यम से ये विचार आकाश में गूंजेगा और जनमानस में इसका विस्तार होगा, तो जनमानस में जब कोई विचार बढ़ता तो समाज में पूरे देश में एक बड़ा परिवर्तन आता है। तो मैं तो आकाशवाणी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ, इस विषय को उठाया है जो सबसे जरूरी विषय है, मनुष्य ही नहीं प्रत्येक जीव जंतु के लिए जरूरी है, तो मैं आकाशवाणी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ।
1: और भारत के नागरिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: भारत के नागरिकों यही संदेश देना चाहूंगा, अगर वो अपने आप को भारत का नागरिक मानते ही हैं, तो सबसे बड़ा है कि वो अपने जीवन को पर्यावरण के अनुकूल जिए, कम से कम ज्यादा नहीं तो साल में एक बार अपने जन्मदिन पर वृक्षारोपण अभियान चलाएं, अपने परिवार को जोड़ें और पेड़ों को भी अपने परिवार का हिस्सा माने।
1: तो आपने इतनी अच्छी बातचीत की भाई, मुझे तो बहुत ऐसा लग रहा है कि मुझे भी पेड़ लगाना चाहिए और मुझे लग रहा है हमारी बातचीत सुन करके लोगों को भी लगेगा। अगर ये कुछ लोगों के मन में भी ये बात आ गई ना, तो हमारी आज की ये बातचीत बहुत सार्थक रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी बातें करने के लिए, थैंक यू सो मच।
2: धन्यवाद बहन जी।
1: तो आज के लिए बस इतना ही और मुझे लगता है कि अब आप भी एक पेड़ तो जीवन में जरूर लगाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नीति शुक्ला को नमस्कार।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण के लिए विशेष योगदान देने वाले देवेंद्र सूरा के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही थी नीति शुक्ला। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast@airnews@gmail.com।
4: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
5: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:35 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

0: कहते हैं रिश्ते खून से नहीं एहसासों से बनते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी जिंदगी में आकर अपना नाम नहीं बल्कि अपनी जगह बना लेते हैं।
1: जी हाँ, जिस तरह किसी दोस्ती को दिल से निभाया जाता है, वैसे ही कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हर दिन जताने की जरूरत नहीं होती। बस एक छोटी सी याद, एक प्यारा सा मैसेज या फिर एक गीत और दिल मुस्कुरा उठता है।
0: हेलो, वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑल टाइम फेवरेट प्रोग्राम युवाणी में। और आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी अपनी दोस्त सिमरन कौर।
1: हेलो दोस्तों, सिमरन और आप सभी के साथ प्रोग्राम में हाजिर हूँ मैं, आपकी अपनी साथी शिवानी। वैसे दोस्तों, कभी कभी ये गीत सिर्फ सुना नहीं जाता बल्कि इसे महसूस किया जाता है, और जब वो किसी अपने के नाम हो तो उसकी हर लाइन्स दिल को छू जाती है।
0: शायद इसीलिए ही शिवानी म्यूजिक बना ही इसलिए है, ताकि जो बातें अल्फाजों में हम नहीं कह पाते उन्हें धुन बनाकर कहते हैं।
1: जी हाँ, और आज का हमारा सेगमेंट भी म्यूजिक से भरा है, और नाम तो हमारे फ्रेंड जानते ही हैं, गीत आपके नाम।

0: गीत आपके नाम।
1: शिवानी देखो, मुझे लगता है कि हमारे फ्रेंड्स हमेशा ही एक्साइटेड रहते हैं इस प्रोग्राम को सुनने के लिए, और उन्हें याद भी रहता है कि आज सैटरडे हमारा प्रोग्राम आने वाला है। तो बिना देरी किए हमारे फ्रेंड्स हमें मैसेज कर चुके हैं, तो चलिए देखते हैं हमारा पहला मैसेज हमें कहाँ से मिला है। वो भेजा है मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, सजदा रानी और हिना कौसरने। साथ ही हमें दूसरा मैसेज मिला है जलालाबाद वेस्ट से, भेजने वाले हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। साथ ही हमें अगला मैसेज मिला है ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड से, और भेजने वाले हैं रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, प्रियल और दिव्यांश विश्वकर्मा। तो चलिए दोस्तों, इनके फरमाइश पर सुनते हैं इनके पसंद का एक प्यारा सा गीत।

0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
2: हो जाओगे एहसास कर लोट पोट,
1: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
3: और डोज में क्या है?
2: डोज में है मजा।
4: जी हाँ, मजा आ गया।
5: मैम गुड मॉर्निंग, मे आई कम इन? मैम
6: गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कम इन चिंटू। चिंटू तुम आज फिर से लेट आयो, इतनी देर से क्यों आयो?
5: मैम वो ना मेरे मम्मी पापा ना लड़ रहे थे।
6: अरे मम्मी पापा लड़ रहे थे तो तुम क्यों देर से आयो?
5: अरे मैम मेरा एक जूता मम्मी के पास था और दूसरा पापा के पास था।
4: यहाँ मजा आ गया।
7: दोस्तों जिंदगी एक लंबी उड़ान की तरह है, हर किसी के हाथ में एक टिकट होता है अपने ख्वाबों का। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग उड़ान भरने से पहले ही डर जाते हैं और कुछ लोग आसमान की ऊंचाइयों को अपना पता बना लेते हैं।
6: जी हाँ, कहते हैं अगर सपने देखना बंद कर दें तो सिर्फ जिंदगी दिन गिनने का नाम रह जाती है, लेकिन जब दिल में एक ख्वाब पलता है तो सुबह एक उम्मीद, एक नई उम्मीद लेकर हमारे सामने आती है।
7: सोचिए दोस्तों, अगर पक्षी ये सोचकर उड़ना छोड़ दे कि आसमान बहुत बड़ा है तो क्या वे सब अपने पंखों की ताकत जान पाएंगे?
6: जी हाँ ठीक वैसे ही हमारे सपने भी हमें हमारी असली पहचान से मिलवाते हैं। मंजिल तक पहुँचने का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन अगर दिल में जुनून हो तो मंजिल तक पहुँचने का हर ख्वाब पूरा किया जा सकता है।
7: तो दोस्तों अगर कोई सपना दिल के किसी कोने में अब भी जिंदा है तो उसे फिर से आवाज दीजिए और एक छोटा सा कदम उठाइए अपने सपने को पूरा करने का।
6: बिल्कुल, और शिवानी हम भी उठाते हैं अपना एक छोटा सा कदम और देखते हैं कि हमारा अगला मैसेज हमें कहां से मिला है।
7: बिल्कुल सिमरन, तो देखते हैं, हमें मैसेज मिला है सिद्धार्थ नगर दरियापुर बावली से और भेजने वाले हैं गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, अशोक येले और शेरी वडनेर अकोला से बलदेव दामोदर, अरुणा दामोदर। इसी के साथ हमें अगला मैसेज मिला है जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिक्रेस्टो, रोजी, पल, विलिस और उनकी पूरी फैमिली। इसके साथ हमें अगला मैसेज मिला है एटा से और भेजने वाले हैं नबी हसन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, अनम, सुहेल और रसीद। इसके साथ हमें एक और मैसेज मिला है और ये मिला है मैसेज आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से और भेजने वाले हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहाँ। तो आइए दोस्तों सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
1: हो जाओगे हंस-हंस कर लोटपोट,
0: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
2: और डोज में क्या है?
1: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
3: अजी सुनते हो?
2: अजी सुनते हो?
3: अरे अरे मैं पूछ रही हूँ, खाना खाया?
2: अरे मैं पूछ रही हूँ, खाना खाया?
3: मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुमसे।
2: मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुमसे।
3: तुम मेरी नकल कर रहे हो?
2: तुम मेरी नकल कर रहे हो?
3: चलो शॉपिंग पे चलते।
2: अरे नहीं खाया।
1: यहाँ मजा आ गया।
3: तो दोस्तों हमें मैसेजेस और भी आ चुके हैं, चलिए देखते हैं कि हमें हमारे मैसेज कहाँ से मिल रहे हैं। अगला मैसेज हमें मिला है पद्मा टाकिज नेपानगर से, भेजने वाले हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह और सुरभि शाह। साथ ही अगला मैसेज हमें मिला है कबीर रेडियो श्रोता संघ डोडी लोहारा बालोदी छत्तीसगढ़ से, भेजने वाले हैं देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और पोता मास्टर अल कबीर।
2: इसी के साथ हमें अगला मैसेज मिला है लाल कुर्ती रोड की कैंट से, भेजने वाले हैं राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा और युवान और उनकी पूरी फैमिली। इसी के साथ और एक मैसेज मिला है मंसूरी रेडियो लिसनर क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से, मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा, सविस्ता, लुबना और यस मंसूरी।
3: साथ ही हमें अगला मैसेज मिला है मरहरा दरवाज़ा एटा से, भेजने वाले हैं नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, अनम यशव अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी और रसीद वारसी।
2: वैसे सिमरन एक बात कहूँ कि ज़िंदगी में हर बात कह देना ज़रूरी नहीं होता, कुछ बातें महसूस भी की जाती हैं, लेकिन जब दिल की बात होठों तक ना पहुँच पाए तब एक गीत उन जज्बातों की आवाज़ बन जाता है।
3: बिल्कुल शिवानी, ये तो है। तो चलिए इन जज्बातों को कायम रखते हुए हम सुनवाते हैं हमारे लिसनर्स को हमारे सेगमेंट गीत आपके नाम के अंतर्गत एक और अगला प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम्स आपको कैसे लगते हैं आप हमें जरूर बताइएगा अपने खत के जरिए। और खत लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम युववाणी अनुभाग द्वारा के निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद पिन कोड 246763।
1: साथ ही दोस्तों आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं अपडेटेड रहने के लिए। हमारा फेसबुक अकाउंट है आकाशवाणी नजीबाबाद और साथ ही हमारी इंस्टाग्राम आईडी है @आकाशवाणी नजीबाबाद। साथ ही आप हमारे पुराने प्ले स्टोरी सुन सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसके लिए आपको सर्च करना होगा आकाशवाणी नजीबाबाद। तो दोस्तों इसी के साथ मुझे यानी सिमरन कौर
0: और शिवानी को दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। नमस्कार।

0: अभी हमारे युवा श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सांगद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र का लोकार्पण किया। 7,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाला ये केंद्र इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को प्रोत्साहन देते हुए देश की प्रौद्योगिकी विनिर्माण यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये देश का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट है।
2: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
1: पूरी तरह चालू होने पर इस केंद्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप हो जाएगी। इससे मेमोरी और स्टोरेज समाधानों की बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण का केंद्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है। श्री मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया के संघर्ष ने 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट को जन्म दिया है। भारत का समय पर लिए गए निर्णय, प्रभावशाली रणनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रबंधन ने देश को इस संकट पर काबू पाने योग्य बनाया है।
3: हमने संकट शुरू होते ही रिफाइनरीज के

0: और 7 दिनों के भीतर भीतर एलपीजी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। पहले जो 35,000 मैट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन देश में होता था, संकट के दौरान वो 54,000 मैट्रिक टन बढ़ गया।
1: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 में रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से वर्तमान में लगभग 57 गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि वृद्धि रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति और मेक इन इंडिया रक्षा प्लेटफॉर्म पर बढ़ते वैश्विक विश्वास को रेखांकित करती है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को आपके भैया हिमांशु रंजन की राम राम। और सुनाइए किसान भाइयों, कैसे हाल चाल हैं आपके? भैया देखो, हाल चाल तो ठीक होंगे, और भैया उम्मीद है कि भैया आपकी खेती किसानी अच्छी चल रही होगी। किसान भैया देखो, बरसात का समय आरंभ हो चुका है और हमें अपनी जो भी भैया हमारी फसलें हैं, जो फसलें हमारी खेतों में खड़ी हैं भैया, उनकी सही से देखभाल करनी है और भैया उनमें हमें निगरानी रखने की ज़रूरत है। साथ ही भैया जो किसान भाई सब्जियों की खेती करना चाहते हैं, तो भैया ये उस समय बहुत अच्छा चल रहा है, तो इस समय हमारे किसान भाई सब्जियों की बुआई कर सकते हैं। और भैया अगर हमारे किसान भाई धान की बात करें, तो धान भैया इस समय हमारे किसान भाई लगाते हैं, क्योंकि भैया देखो धान जो है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल में से एक है और देश की बड़ी आबादी का मुख्य भोजन भैया धान ही है। धान की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए रोपाई से पहले उचित तैयारी करना अत्यंत आवश्यक है। किसान भाइयों, यदि हमारे किसान भाई समय पर और भैया वैज्ञानिक विधि से खेत की तैयारी करेंगे और साथ ही भैया वैज्ञानिक विधि से रोपाई की तैयारी करेंगे, तो भैया पौधों का विकास अच्छा होगा, साथ ही रोग एवं कीटों का प्रकोप भी कम हो जाएगा, साथ ही उत्पादन में भैया वृद्धि होगी। किसान भाइयों, धान की रोपाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण, या भैया अगर हम बात करें सबसे पहले, तो भैया खेत का सही चयन करना आवश्यक है। खेत समतल होना चाहिए हमारा, ताकि भैया सिंचाई का पानी पूरे खेत में समान रूप से फैल सके। साथ ही रोपाई से पहले खेत को अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। इसके बाद खेत में पानी भरकर पडलिंग करें, जिससे खरपतवार नष्ट हो जाए और भैया हमारी मिट्टी जो है खेत की वो मुलायम हो जाए और पौधों की जड़ें आसानी से भैया स्थापित हो सके। किसान भाइयों, रोपाई के लिए स्वस्थ और प्रमाणित बीजों से तैयार की गई पौध का उपयोग करना चाहिए। साथ ही भैया जो हमने पौध उखाड़ी है, भैया अगर उसको हम उपचारित कर लेंगे तो भैया बहुत अच्छा रहेगा। किसान भाइयों, पौध की आयु अगर हम बात करें तो सामान्यतः 20 से 25 दिन, जो कि भैया संकर और शीघ्र पकने वाली प्रजातियों की बात हम कर रहे हैं। साथ ही 25 से 30 दिन मध्यम एवं देर से पकने वाली किस्मों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। साथ ही मृदा परीक्षण ना होने की दशा में भैया रोपाई से पूर्व अधिक उपज देने वाली किस्मों के लिए प्रति हेक्टेयर 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फेट तथा 40 किलोग्राम पोटास की संतुलित मात्रा खेत में हमें डालनी चाहिए। रोपाई के समय पौधों के बीच उचित दूरी बनाए रखना भी आवश्यक है। सामान्यतः 20x15 सेंटीमीटर या भैया 20x20 सेंटीमीटर की दूरी उपयुक्त रहती है। भाइयों, रोपाई के समय खेत में 2 से 3 सेंटीमीटर पानी हमें बनाए रखना है। रोपाई के बाद कुछ दिनों तक भैया हल्की जल की भैया परत हमें बनाए रखना है। इसके लिए भैया जो हमने पौध लगाई हैं या धान की खेती के लिए लाभदायक होता है। तो किसान भाइयों, इस तरह से अगर हम धान की खेती करना चाहते हैं, तो भैया इस तरह हम अपनी खेत की तैयारी करें, अपने जो हमने पौध उखाड़ी है भैया इस तरह से हम बो सकते हैं। तो ये तो बात हुई भैया धान की रोपाई की, और भैया अब बात करते हैं कुछ और भैया, वो भी महत्वपूर्ण भैया, वो बात है किसान पंजीकरण की। तो किसान भाइयों, किसान पंजीकरण किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से वे सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कृषि योजनाओं, अनुदानों और सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान समय में अधिकांश सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसान का पंजीकरण होना आवश्यक है, इसलिए प्रत्येक किसान भाइयों को समय रहते अपना पंजीकरण अवश्य करा देना चाहिए। किसान पंजीकरण का मुख्य उद्देश्य किसानों का प्रमाणित रिकॉर्ड तैयार करना तथा सरकारी योजनाओं का लाभ सही और पात्र किसानों तक पहुंचाना है। पंजीकरण होने के बाद किसान बीज, उर्वरक, कृषि यंत्रों पर अनुदान, फसल बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि भैया MSP पर फसल विक्रय, प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सहायता तथा अन्य कृषि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। किसान पंजीकरण के लिए सामान्यतः आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, भूमि से संबंधित अभिलेख जैसे भैया हमारा खसरा खतौनी, तथा पासपोर्ट आकार का फोटो जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमारे किसान भाई अपनी नज़दीकी जनसेवा केंद्र या CSC या भैया कृषि विभाग के कार्यालय अथवा राज्य सरकार के निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपना पंजीकरण कर सकते हैं। किसान पंजीकरण के समय किसानों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी, भूमि का विवरण, बैंक खाते की जानकारी तथा मोबाइल नंबर सही सही दर्ज करना चाहिए। गलत जानकारी देने से भविष्य में इस योजना का भैया लाभ मिलने में कठिनाई हो सकती है। साथ ही भैया जब हम पंजीकरण कर लेते हैं तो जो पंजीकरण का हमें एक कोड मिलता है भैया, वो हमें सुरक्षित रख लेना चाहिए, जिससे भैया हमें आगे को कोई परेशानी ना हो। तो किसान पंजीकरण केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि सरकारी कृषि योजनाओं का लाभ प्राप्त करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। तो भैया प्रत्येक किसान को अपना पंजीकरण समय पर कराना चाहिए और भैया इसका लाभ लेना चाहिए। और भैया देखो, अगर आज के कार्यक्रम की बात करें तो भैया आज दिन है शनिवार का, और हमारे किसान भाई जानते ही हैं कि भैया आज के दिन लोकगीतों वीरांगनाओं का फरमाइशी सजीव फोन इन कार्यक्रम हम किसान भाइयों के लिए लेकर आते हैं, जिसका नाम है भैया हेलो लोक मंजरी। तो किसान भाइयों, आप हमें स्टूडियो में फ़ोन करके अपनी पसंद की कोई भी रागनी या भैया लोकगीत सुन सकते हैं। इसके लिए भैया हमारा जो मोबाइल नंबर है वो है 9457-07-82-88। इस नंबर पर भैया आप हमें सीधे स्टूडियो में फ़ोन कर सकते हैं। और साथ ही भैया एक हमारा लैंडलाइन नंबर है, वो है भैया 01341। ये तो हो गया भैया हमारा STD कोड नंबर। साथ ही भैया जो फ़ोन नंबर है वो है 230-105। तो भैया आप हमें स्टूडियो में फ़ोन कर सकते हैं, और भैया जब तक आप हमें फ़ोन करें तब तक हम सुन लेते हैं कुछ ही ज़रूरी संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: तो अभी हमारे किसान भाइयों ने सुने कुछ ये जरूरी संदेश, और भैया संदेश से पहले हम बात कर रहे थे, हम किसान भाइयों के लिए लेकर आते हैं लोकगीतों व रागनियों का फरमाइशी सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो लोक मंजरी।

0: स्वागत है हमारे सभी किसान बहन भाइयों का लोकगीतों व रागनियों के सजीव फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो लोकमंजरी में। और इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपका भैया हिमांशु रंजन। तो भैया हमारे किसान भाई अब से लेकर भैया 6:45 तक हमारे स्टूडियो में सीधे फोन कर सकते हैं। और भैया हमारे फोन नंबर हैं, सबसे पहले आप मोबाइल नंबर लिख लीजिए 9457-07-82-88। और भैया एक हमारा लैंडलाइन नंबर है, पहले एसटीडी कोड है नजीबाबाद का 01341। और भैया फ़ोन नंबर है 230-105। और भैया देखो इधर हमने फ़ोन नंबर बताया और इधर भैया एक कॉल आ गई, तो कॉल किसकी है? हेलो लोकमंजरी जी, नमस्कार जी, कौन सा आप बोल रहे हैं, नाम बता दीजिए अपना। जी सत्यवीर जी, कैसे हैं आप? हम भी बहुत बढ़िया हैं। और आपकी खेती किसानी कैसी चल रही है ये बताइए सबसे पहले। जी जी जी, चलिए तो अभी आप बता रहे हैं 3 बजे के लगभग आपके यहाँ बरसात हुई है, तो अभी कुछ राहत मिली है गर्मी से? चलिए बहुत जरूरी है, देखिए है ना। तो आज के कार्यक्रम में क्या सुनना चाह रहे हैं आप?
1: हिमांशु जी, एक लोकगीत है मेरा नो डांडी का बीच ना
0: जी,
1: इस तरह से वही सुनवाते।
0: चलिए आप आपकी पसंद पर ये राग हम लोकगीत सुनवाते हैं, लेकिन अभी थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे आपसे। आप हमारा नियमित तौर पर कार्यक्रम सुनते हैं, कैसा लगता है आपको कार्यक्रम? जी बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत।
1: और साहब इसमें भी ये लोकमंजरी वाला और कार्यक्रम भी कृषि जगत का, हेलो किसान हेलो।
0: जी जी बिल्कुल,
1: और की जानकारी जो आती है बहुत जबरदस्त।
0: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आप सब लोगों की जो रूपरेखा के हिसाब से हमने कार्यक्रम अपने निर्धारित किए हैं और आपने हमें कॉल किया, इसके लिए धन्यवाद। सुन लेते हैं आपकी पसंद पर। जी ठीक है जी, आपकी पसंद पर सुन लेते हैं प्यारा सा लोकगीत।

0: हेलो लोकमंजरी,
1: हेलो लोकमंत्री
0: नमस्कार
1: हिमांशु
0: जी।
1: रंजन जी को मेरा राम राम।
0: राम राम जी, आपको भी राम राम। नाम बता दीजिए आप अपना, कौन बोल रहे हैं आप?
1: मैं ग्राम गावधौड़ना जिला हरिद्वार उत्तराखंड से मदन गिरी बोल रहा हूँ।
0: जी जी मदन गिरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। कैसे हैं आप?
1: जी, मैं ठीक हूँ जी बिल्कुल। और आप कैसे हैं? आकाशवाणी परिवार में सब कैसे हैं?
0: बिल्कुल, हम भी ठीक हैं और आकाशवाणी परिवार में भी सब लोग ठीक ठाक हैं। और खेती किसानी कैसी चल रही है आपकी?
1: बहुत ठीक चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। और जो है आज जो है प्रोग्राम आया था 5 बजे जो है वृक्षारोपण पर, और
0: जी
1: वो हमने आज आपको बता दूं कि 2 पौधे लगाए हैं पपीते के।
0: बिल्कुल, बहुत
1: अब
0: बढ़िया
1: तक जो
0: जी
1: दो लगाए हैं आज,
0: जी जी
1: कट्टे
0: जी
1: बड़े हो रहे थे। एक पड़ोसी कहते हैं, उनने कहा कि तुम लगा लो, 2 पेड़ हो रहे हैं मेरे यहाँ और
0: जी
1: मेरे यहाँ तो जगह नहीं, तुम लगा लो। तो हमने 2 पेड़ लगा लिए हैं पपीते के।
0: बहुत अच्छा किया जी आपने। और
1: हाँ जी,
0: आपकी
1: हाँ
0: तरफ का
1: जी।
0: मौसम बताइए, कैसा हो रहा है अभी?
1: मौसम बहुत गर्म है जी, बारिश का कोई नामो निशान नहीं है और
0: जी
1: बहुत ही गर्म मौसम है, बड़ी
0: बिल्कुल
1: गर्मी पड़ रही
0: बिल्कुल। तो
1: है।
0: देखिए,
1: हाँ
0: इस गर्मी में हमें खुद का भी बचाव करना है और अपनी फसलों में भी
1: जी,
0: निगरानी हमें बना के रखनी
1: हाँ जी, हाँ जी जी
0: है ना? तो आज के कार्यक्रम में क्या सुनना चाह रहे हैं आप?
1: मैं सुनूंगा वो जो है लोकगीत है, जिजा तू काला मैं गोरी गई।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: हाँ
0: जी
1: जी, हाँ
0: बिल्कुल। तो आपकी
1: जी। ओ, दो चार नाम लेना चाहता हूँ मैं।
0: जी जी बिल्कुल ले लीजिए
1: आचार्य सत्यवीर सिंह चौहान है,
0: जी।
1: और प्रकाश चंद जी हैं, आसिफ चौधरी जी हैं, राशिद अंसारी जी हैं, और अमित भीमान जी।

0: किसान भाई सुन रहे हैं अपना लोकगीतों वराग्नियों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो लोक मंजरी। और भैया आप अब से लेकर 6:45 तक हमारे स्टूडियो में सीधे फोन कर सकते हैं और अपनी मनपसंद कोई भी राग्नि या लोकगीत सुन सकते हैं। उसके लिए भैया हमारे मोबाइल नंबर हैं 9457-07-82-88 और भैया एक हमारा लैंडलाइन नंबर है वो है 0-13-41-230-105। इधर भैया हमने देखो नंबर बताए और उधर एक फोन और आ गया, देख लेते हैं किसका है। हेलो लोक मंजरी।
1: हेलो लोक मंजरी भाषा, नमस्ते
0: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं, नाम बता दीजिए।
1: जी मैं उत्तराखंड सेनीखाल सेनगांव फैक्ट्री से प्रकाश चंद्र बोल रहा हूँ जी। मैं
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रकाश चंद जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
1: भाषा धन्यवाद।
0: और कैसे हैं आप, आपकी खेती किसानी कैसी चल रही है?
1: भाषा खेती किसानी भी बहुत बढ़िया चल रही है। आज तो मौसम भी कुछ बारिश का हो गया है।
0: जी,
1: और दो तीन दिन से बारिश नहीं हुई थी तो दिन से बहुत गर्मी हो रही थी, थोड़ा रिहायत मिली है ठंड से।
0: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अगर बरसात नहीं होती है यानी बारिश नहीं होती है, गर्मी अत्यधिक हो जाती है, तो उस गर्मी में हमें खुद का भी ध्यान रखना है और
1: हाँ
0: हमारी
1: जी,
0: जो फसलें हैं उनका भी ध्यान रखना है।
1: हाँ भाषा खैर खेती तो ठीक लगे, फसल भी ठीक, सब्जी भी ठीक हो रही है।
0: बहुत बढ़िया, तो
1: और
0: आज क्या सुनना चाहते हैं आप हमारे इस कार्यक्रम में?
1: भाषा अब हम सुनना चाहते हैं हरियाणी लोकगीत, हरी भरी तरकारी ले लो, और एक हमारे श्रोता है नितिन सिंह नेगी ग्राम सेली,
0: जी
1: और उज्जल कुमार, प्रकाश चंद, मंजू देवी और उज्जवल कुमार, और एक हमारे सच्चे मित्र और भी है मदन गिरी और आचार्य जी सत्यवीर जी आचार्य,
0: जी जी जी
1: नियमित श्रोता है आपके और आकाशवाणी नजीबाबाद के
0: जी
1: श्रोता
0: बिल्कुल
1: है,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और नितिन सिंह नेगी से निवाले आज भाषा ये भी जुड़ गए आकाशवाणी केंद्र से।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
1: हाँ जी, और आकाशवाणी केंद्र ऐसे ही श्रोता श्रोता जुड़े रहे, इसमें हमें भी बहुत खुशी होती है।
0: बिल्कुल, हमें भी बहुत खुशी है।
1: हाँ तो
0: चलिए
1: भाषा करी तरकारी ले लो, इस हरियाणी लोकगीत को सुना देना।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर ये प्यारा सा लोकगीत। आपने हमें कॉल किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ठीक है भाषा, नमस्ते।

0: हेलो लोक मंजरी,
1: हेलो लोक मंजरी
0: नमस्कार जी। नाम बता दीजिए अपना, कौन बोल रहे हैं आप?
1: जी, मैं जिला मुरादाबाद ग्राम ध्यानपुरा साबिर अली बात कर रहा हूँ।
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका साबिर अली जी हमारे इस कार्यक्रम में। कैसे हैं आप?
1: आप बढ़िया हैं? आप कैसे हैं सर?
0: बहुत बढ़िया हैं जी, हम भी आकाशवाणी परिवार बहुत अच्छा है। और आपकी तरफ का मौसम कैसा है इस समय, ये बताइए आप।
1: अरे बस कुछ मत पूछो सर, बहुत गर्मी है। इस कदर गर्मी है क्या? थोड़ी बारिश होने से गर्मी ज्यादा हो गई।
0: जी, उमस एकदम से बढ़ गई है ना।
1: हाँ, उमस बढ़ गई है। आप कुछ बादल हुआ है थोड़ा कुछ?
0: जी, तो इस गर्मी के मौसम में हमें खुद का बचाव भी करना है और अपनी जो फसल है उसका भी देख रेख हमें सही से करनी है। ठीक है जी।
1: हाँ बिल्कुल करना है
0: हाँ
1: सर।
0: जी, हाँ जी, तो आज के कार्यक्रम में क्या सुनना चाह रहे हैं आप, बता दीजिए।
1: मुझे नरसी के बाप की राग भी सुनवा दो, सासू ताने मारे वतना।
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो आइए आपकी पसंद पर सुन लेते हैं ये प्यारी सी रागनी। और आपने हमें कॉल किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ठीक है जी।

0: हेलो लोक मंजरी
1: हेलो लोक मंजरी सर
0: जी, नमस्कार जी। कौन बोल रहे हैं, नाम बता दीजिए अपना।
1: सर नमस्कार
0: नमस्कार जी
1: जी, मैं अमित धीमान बोल रहा हूँ सर।
0: जी जी अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। कैसे हैं आप?
1: सर मैं तो बढ़िया हूँ, और आकाशमणि परिवार में सब कुशल मंगल है सर।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, सब कुशल मंगल है यहाँ पर। और खेती बाड़ी कैसी चल रही है आपकी?
1: सर बढ़िया है सर।
0: जी, और मौसम कैसा है आपकी तरफ का?
1: सर ये तो बहुत गर्मी है,
0: जी जी बिल्कुल, देखिए गर्मी तो हो ही रही है। और
1: बादल भी हो रहे हैं और गर्मी
0: जी
1: बहुत है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, अपने और अपनी हमें फसलों का ध्यान रखना है इस समय। तो आप जल्दी से बता दीजिए, आप क्या सुनना चाह रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम में आज?
1: सर सुना देना, नयन कटोरे, काजल दोरे,
0: जी जी जी
1: ये
0: बिल्कुल,
1: लोग के बोल हैं, और मेरे कुछ नाम हैं
0: हाँ जी हाँ जी, जल्दी ले लीजिए
1: जैसे आचार्य सत्यवीर जी और
0: जी
1: मदन गिरी जी,
0: जी जी जी
1: घरौना से, गांव घरौना से, और आप सब जितने भी लिसनर हैं, और मैं कुछ जो नाम नहीं जानता।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, तो आपने हमें कॉल किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पसंद पर सुन लेते हैं ये प्यारा सा लोकगीत।

तो किसान भाइयों, ये तो था आज का लोकगीतों वैरागियों का सजीव फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो लोकमंजरी। और भैया, जिन किसान बहन भाइयों के आज फोन कॉल्स नहीं लगी हैं भैया, वो अगले शनिवार को हमारे स्टूडियो में सीधे फोन कर सकते हैं। और भैया, फोन नंबर्स हमारे वही हैं 94-57-07-82-88। और भैया, एक हमारा लैंडलाइन नंबर है, वो है 0-13-41-230-105। तो भैया, इस फोन नंबर पर आप हमें अगले शनिवार को फोन करके अपनी पसंद की कोई भी रागनी या लोकगीत सुन सकते हैं। और भैया, अब घड़ी भी इस ओर इशारा कर रही है कि भैया और बातचीत की इजाज़त हमें नहीं दे रही है। तो उठाइए कागज और कलम और लिखिए हमारे कार्यक्रम का पता। पता है कार्यक्रम कृषि जगत, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी नजीबाबाद। और भैया, पिन कोड है 246763। साथ ही भैया, आप हमें व्हाट्सएप संदेश भी भेज सकते हैं, नंबर हमारा वही है 94-57-07-82-88। और अब अपने भैया हिमांशु रंजन को दीजिए अनुमति। किसान भाइयों, राम राम।

0: अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:45 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत नीरजा शर्मा से ज्योतिपाल की बातचीत। विषय है एग्रो पर्यटन के क्षेत्र में संभावनाएं।
1: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम विकास के पीछे तो भागते जा रहे हैं, लेकिन इस भागदौड़ में प्रकृति, मिट्टी और अपनी जड़ों से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे समय में एग्रो टूरिज्म एक ऐसा रास्ता है जो हमें फिर से गांव की मिट्टी, खेतों की खुशबू और ग्रामीण जीवन की सादगी से जोड़ता है। श्रोताओं, एग्रो टूरिज्म का सीधा अर्थ है कृषि आधारित पर्यटन, यानी जब लोग गांव में जाकर किसानों के साथ खेतों का अनुभव करते हैं। ये सिर्फ छुट्टी मनाने का तरीका नहीं, बल्कि किसानों की जीवन शैली को समझने का, उन्हें सम्मान देने का माध्यम है। श्रोताओं, क्या जरूरत है एग्रो टूरिज्म की और क्या लाभ है इसके, विस्तृत जानकारी के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर नीरजा शर्मा जी को। डॉक्टर नीरजा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं नीरजा शर्मा, मैं नीर आदर्श ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की डायरेक्टर हूँ।
1: सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि एग्रो टूरिज्म विषय में आप हमें जानकारी दें।
2: एग्रो टूरिज्म दो शब्दों से मिलकर बना है, एग्रो प्लस टूरिज्म। तो एग्रो मीन्स एग्रीकल्चर, कृषि, और पर्यटन कृषि पर आधारित पर्यटन। आप ये समझे कि जो पर्यटन है वो कृषि पर आधारित है।
1: मैं ये जानना चाहूंगी कि ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कितना सहायक है।
2: देखिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बहुत अधिक सहायक है। मैं भी नीर आदर्श ऑर्गेनिक की डायरेक्टर हूँ, तो हमने भी एग्रो टूरिज्म शुरू किया है और अभी हमने उसका प्रथम कार्यक्रम किया था, जहाँ हमारे पास दिल्ली से एक पूरा शिक्षकों का दल आया था। उनके लिए ये प्रोग्राम बहुत ही एक्साइटमेंट भरा था। शहर के लोग जब भी छुट्टियां होती तो घूमने जाते हैं, ये यहाँ हमारे गाँव में घूमने के लिए आए और इनको इतनी खुशी हुई, मेरे पास शब्द नहीं है उनके चेहरों को देखकर। अच्छा। जो हम लोगों ने जो भी इंतजाम उनके लिए किए थे, जो एग्रो टूरिज्म के अंतर्गत हम कर सकते हैं, उससे जुड़कर हमें लोगों के चेहरे पर जो खुशी थी ना, उसको देखकर हमें बहुत बहुत संतुष्टि मिली। और ये अर्थव्यवस्था तो खैर है ही, जब आप इस तरह के कार्य करेंगे, लोग आएंगे तो किसानों की आय तो बढ़ेगी ही, इसके साथ साथ जो बच्चे आ रहे हैं, जो शहरी लोग आ रहे हैं जिन्होंने कभी खेत नहीं देखा, जो कभी प्रकृति के सानिध्य में रहे ही नहीं है, तो उनके लिए तो एकदम नया एक अनुभव है।
1: जैसे कि आजकल मैं कुछ बच्चों से सुनती हूँ कि चूल्हा, हमने तो चूल्हा ही नहीं देखा कि कैसे चलता है, मिट्टी का चूल्हा। अच्छा, तो शायद उन लोगों को ये सारी चीजें देखने को मिले।
2: बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, हम लोगों ने जो प्रोग्राम आयोजित किया था, इसमें हमने बहुत सारी एक्टिविटीज रखी थी जो एग्रो टूरिज्म के अंतर्गत आती हैं, जैसे कि आप पूरा एक तो अपना जो खेत का पूरा विजिट करें, उसके बाद हमने ट्रैक्टर राइड रखा था, हमने जो है झूठा बुग्गी राइड रखा था सबके लिए, और इसके अलावा हमने चूल्हे पर रोटी बनाना या आप जो भी कुछ बनाना चाहें, दाल बाटी बनाना चाहें, कोई अन्य डिश बना, मतलब खुद अपने हाथ से बनाकर आप खा सकते हैं, खिला सकते हैं, एक नया अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा ट्यूबवेल के पानी में नहाना, मतलब स्विमिंग पूल में तो आप लोग नहाते ही हैं, पता नहीं कैसा पानी, पर जो ट्यूबवेल का पानी है, ताजा पानी आ रहा है, ठंडा पानी आ रहा है, मतलब उसका अनुभव बिल्कुल शब्दों से परे है। चूल्हे पर रोटी बनाना वो शब्दों से परे, शहरी लोगों के लिए ये एक नए तरीके का अनुभव है जो उन्हें कहीं भी नहीं मिल सकता। और मैं ये ठोक बजा कर कह रही हूँ कि जो लोग आए हैं वो अब जिंदगी भर जो अनुभव उनको हमारे यहाँ प्राप्त हुआ ना, वो कहीं उनको मिलेगा नहीं और ना वो भूलेंगे कभी भी।
1: अच्छा मैम, ये एग्रो टूरिज्म और इको टूरिज्म में क्या अंतर है?
2: देखिए, वो बस नाम अलग अलग हैं। एग्रो टूरिज्म और इको टूरिज्म मेरे हिसाब से एक ही हैं, दोनों ही कृषि से संबंधित हैं।
1: अच्छा, सरकार की कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं इसको बढ़ावा देने के लिए?
2: जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, पर्यटन को वो बढ़ावा तो दे रहे हैं। आप कहीं पहाड़ी इलाकों में भी जाते हैं तब भी आप वहाँ देखेंगे जो पर्यटन अब विभिन्न तरीकों से लोग कर रहे हैं, उसको अपने घर में ही होम स्टे बना दिया है उन्होंने, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। एग्रो टूरिज्म एक पर्यटन का एक प्रकार आप कह सकते हैं कि उसमें आप मतलब रुक भी सकते हैं। एग्रो टूरिज्म के अंतर्गत सुविधा है कि आप एक रात दो रात रुक सकते हैं वहाँ, रुक जो सुबह का वातावरण है, आप सुबह का जो सूरज जो उगता है आप उसे देख सकते हैं, तो ये एक तरीका है। अच्छा
1: अच्छा स्पेशली किसानों को एग्री टूरिज्म का क्या लाभ मिल रहा है?
2: देखिए किसानों को तो बहुत अधिक लाभ है, क्योंकि देखिए उसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये सब चीजें वहाँ प्राकृतिक तौर पर वो लोग रोज इसके आदि हैं, तो जब उनका लाइफ स्टाइल ही ये है तो अन्य लोगों को जब वो इस तरह की सुविधा प्राप्त कराते तो उनको कोई बहुत ज्यादा एफर्ट की जरूरत नहीं है कि चूल्हे पर रोटी बनाना हो, कोई उन्हें खास इंतजाम करना है, या उन्हें मट्ठा निकालना हो तो उन्हें खास इंतजाम करना हो, या ट्रैक्टर राइड करनी हो, या फिर झोटा बुग्गी राइड करनी
1: उनका
2: हो, या
1: डेली रूटीन उनका ही है।
2: हाँ उनका डेली लाइफ स्टाइल ही है ये, तो ऐसा नहीं है कि उनको कोई बहुत भारी इंतजाम इसके लिए जुटाने पड़े। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, यदि इसको सिस्टम से किया जाता है तो आय निश्चित तौर पर बढ़ेगी।
1: लोग इतना परेशान हो गए हैं कि गांव की तरफ भाग रहे हैं कि बस सुकून चाहिए उनको। तो अच्छा भारत में इसकी क्या क्या संभावना है?
2: भारत तो है ही एक कृषि प्रधान देश है, संभावनाओं से पूरी तरह भरा हुआ है भारत। हमने जो एग्रो टूरिज्म शुरू किया है अभी, तो अभी जब उसमें शिक्षकों का एक दल आया तो हमने उन्हें पूरा एक वर्मी कंपोस्ट का एक टेक्निकल जानकारी दी कि वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाई जाती है, और बहुत सारे पौधे हमने उन्हें दिखाए कि इसकी खेती किस प्रकार की जाती है। धान को हमने दिखाया उन्हें कि धान किस प्रकार से उगाया जाता है, कितने दिन क्या रखा जाता है, पहले उसको रोपाई करी जाती है, कैसे किया जाता है, वो सब हमने उनको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया। तो ये एक मतलब मनोरंजन के साथ साथ आपको शिक्षा भी वहाँ मिल रही है।
1: बहुत जरूरी सवाल कि पर्यावरण को इससे लाभ पहुँचता है हमारे एग्रो टूरिज्म से?
2: बिल्कुल, अब तरीका है अपना, आप किस तरीके से कर रहे हैं। सुव्यवस्थित तरीके से आप किसी काम को कर रहे हैं तो फायदा ही फायदा है। और हमारा तो सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि हम जैविक खेती करें, हम नेचुरल खेती करें, और उसी की जानकारी हम सबको दें कि आप अपने घर में भी इस तरह की नेचुरल खेती अपनी छत पर कर सकते हैं। अभी जब शिक्षक दल आया था तो हमने उन्हें बताया कि थोड़ी जगह में भी एक नेचुरल खेती की जा सकती है
1: जी।
2: कम से कम दो लोग हैं या तीन लोग हैं तो इतनी ही सब्जी इतना आप उगा सकते हैं अपने घर की छत पर, तो ये तो बहुत मतलब फायदे की बात है।
1: इसमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला ऐसा कुछ नहीं है,
2: कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है,
1: इस्तेमाल नहीं कर,
2: बल्कि मैं तो आपको ये बताऊं कि लघु उद्योग लोग शुरू कर लेते हैं। पराली से लोगों ने इतने सुंदर सुंदर आकर्षक डिजाइन की भंडिया बनाई हुई है, डलिया बनाई हुई है, मतलब आप ये समझिए जो वेस्ट है उसको यूज करके उन्होंने लघु उद्योग अपना शुरू कर लिया। ऐसे ही गन्ने का जो चूरा बचता है उससे बहुत सारी चीजें बनाई हुई है, तो ये तो सीखने वाली बात है, सीख सीख के आदमी ने सारी जो वेस्ट चीजें हैं उनका यूज कर लिया
1: जी। एग्रो टूरिज्म जो है शहरी और ग्रामीण समाज में सेतु का कार्य कर रहा है।
2: हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि वास्तव में सेतु का कार्य ही कर रहा है, क्योंकि जब हमारे घर आए हमने उन्हें पशुशाला दिखाई, इसके बाद ट्यूबवेल भी लोगों ने नहीं देखा, वो केवल अपने बाथरूम में जाके शावर से नहाते हैं या नल से पानी चलाते हैं, तो ये एक नया अनुभव था उनके लिए। कुछ कुछ लोगों ने हमसे टेक्निकल जानकारी ली, शायद वो लोग कुछ अपना डेवलप करें आगे जाके, कुछ वो लोग नया अपना कुछ शुरू करें अपने रिटायरमेंट के बाद, तो ये सेतु का काम तो कर ही रहे हैं।
1: अच्छा मैम, एक सक्सेस एग्रो टूरिज्म का मॉडल हम कैसे तैयार कर सकते हैं?
2: आप हमारे फार्म पर आइए और देखिए हमने तैयार किया।
1: लेकिन कुछ इतना कुछ थोड़ा मोटा मोटा हमारे श्रोताओं को बताएं कि उनको भी एक्साइटमेंट हो और वो एग्रो टूरिज्म के प्रति उन्हें भी लगे कि हाँ हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए, अगर वो करने के इच्छुक हैं तो।
2: देखिए यदि आप गांव में रहते हैं, यदि आपका गांव से कोई संबंध है, तो आप निश्चित तौर पर इसको शुरू करिए, सुव्यवस्थित तरीके से शुरू करिए, पूरा एक पहले ब्लूप्रिंट तैयार करिए, ब्लूप्रिंट तैयार करने के बाद फिर उसे कार्यान्वित करिए, पूरे पूरे पॉइंट आप उसमें जोड़िए, आप क्या क्या कर सकते हैं, वो भी बिना एफर्ट के, आप क्या क्या आरामदायक तरीके से क्या क्या किया जा सकता है। जैसे हम लोगों ने जो शुरू किया है हम लोग आराम से कर सकते हैं, चूल्हे की रोटी, इसके बाद आप झोटा बुग्गी राइड हो गया, ट्रैक्टर राइड हो गया, आप जो कुल्लड़ और वो जो मटका वगैरह बनता है वो आप शुरू कर सकते हैं, उसके अंदर आप मट्ठा बनाने का जो पूरा एक प्रक्रिया है उसको दिखा सकते हैं सबको, आप वहाँ पर छोटी छोटी हट बना सकते हैं, यहाँ जो केचुए की खाद है, गोबर की खाद है, उस तरह का आप सब लोगों को टेक्निकल जानकारी दे सकते हैं, और जो आप खेती करते हैं वो उनको सिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं। अभी जब शिक्षक दल आया था हम उन्हें अपने पूरे फील्ड पर लेके गए थे, सारे जो शिक्षक थे वो खेतों में घुसे, उन्होंने खीरे टमाटर जो उन्होंने तोड़ा, मैं आपको सच बता रही हूँ, जो खीरा टमाटर वो जो तोड़ के उन्होंने खाया ना, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक सुख वाली चीज थी कि उनके चेहरे जो हमने देखे ना कि खीरा तोड़ के खा रहे हैं, टमाटर तोड़ के खा रहे हैं, हमारे लिए तो नॉर्मल बात है ये, पर वो लोग जो शहर से आ रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है कि वो एक पौधा भी देख रहे हैं कि खीरा कहाँ से आता है, टमाटर कहाँ से आता है, काशीफल कहाँ से आता है, लौकी कहाँ से आती है, तोरी कहाँ से आती है, इतनी सुंदर खेती की बेल टंगी हुई है, मतलब ये कल्पना से परे है उन लोगों के लिए।
1: डॉक्टर नीरजा मैम, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी एग्रो टूरिज्म के विषय में, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत नीरजा शर्मा से ज्योतिपाल की बातचीत, विषय था एग्रो पर्यटन के क्षेत्र में संभावनाएं। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:55 हो रहे हैं। पेश है कार्यक्रम छाया गीत, लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम में ये गीत मुकेश की आवाज़ में। फिल्म है तीसरी कसम, संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने और गीतकार हैं शैलेंद्र।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। लीजिए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में यादों की बारात फिल्म से ये गीत। संगीत दिया है आरडी वर्मन ने। गीतकार हैं मजरून सुल्तानपुरी।

आप सुन रहे कार्यक्रम छाया गीत, लीजिए सुनते हैं मैं तुलसी तेरे आंगन की फिल्म से ये गीत, लता मंगेशकर की आवाज में। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, गीतकार हैं आनंद बख्शी।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम छाया गीत यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। 7:10 हो रहे हैं। सुनते हैं देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देशगान, आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:15 हो रहे हैं। आइए अब डालते हैं एक नज़र आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम पर। पहले एक नज़र आज के शेष कार्यक्रम पर। आज रात्रि 9:30 पर राष्ट्रीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती और रात्रि 10 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएगा। शाम 7:32 पर कार्यक्रम सुगम संगीत में आपको सुनवाएंगे रामेश्वर प्रसाद शर्मा की आवाज़ में चंद भजन। ये थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रम की। अब एक नज़र कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम पर। कल रात्रि 9:30 पर नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम और रात्रि 10 अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। प्रातः 6:40 पर समय रहेगा चिंतन का। 7:05 पर कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में जानकारी का विषय रहेगा स्वच्छ रहिए स्वस्थ रहिए। और प्रातः 7:10 पर खेती की बातें कार्यक्रम में जानकारी देंगे बरसात के मौसम में किसान भाई रखे अपनी सुरक्षा। 7:31 पर समय रहेगा सूरज के साथ साथ का। 9:20 पर धरती गाती है कार्यक्रम में सुनवाएंगे रुहेलखंडी लोकगीत, कलाकार रहेंगी बीना। दिन में 10 प्रस्तुत करेंगे पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत तुम्हारे। 12:05 पर आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम आपका पत्र मिला और 12:30 पर कार्यक्रम फिल्मी संडे में सुनवाएंगे फिल्म खिलाड़ी। 1:15 पर कार्यक्रम बाल वाटिका में चर्चा का विषय रहेगा पढ़ाई और खेलकूद में रखे समय प्रबंधन का विशेष ध्यान। 1:45 पर कार्यक्रम लोकधारा में सुनवाएंगे एस कॉन्ग की आवाज में पंजाबी लोक गीत। 2:30 पर एक और अनेक कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे, इसमें सुनवाएंगे चेतन आनंद और साथियों पर फिल्माई चंद गीत। शाम 5 मेरा सपना उन्नत भारत क्रम में चर्चा का विषय रहेगा वृद्धजनों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन और राष्ट्रीय वयोश्री योजना। ये थी जानकारी आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम की। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:18 हो रहे हैं। थोड़ी ही देर में लखनऊ से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ की अहम बैठक। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026 की तीन दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। 88% अभ्यर्थी हुए परीक्षा में शामिल। प्रदेश सरकार ने राजस्व से जुड़े सार्वजनिक भूमि के मामलों के लिए लागू की नई व्यवस्था। लखनऊ और प्रयागराज में गठित 3 सदस्यीय विशेष पीठ करेगी वादों की सुनवाई। और कानपुर तथा टूंडला में भारी बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नवीन आज 2 दिवसीय दौरे पर पहली बार लखनऊ पहुंचे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी मुख्यालय में प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, बृजेश पाठक, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और केन्द्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी मौजूद रहे। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, भाजपा सांसदों और विधायकों के साथ बैठक की। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने लखनऊ एयरपोर्ट पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान भी उपस्थित रहे। इसके बाद श्री नवीन ने एयरपोर्ट से भाजपा प्रदेश कार्यालय तक रोड शो किया। इस दौरान जगह जगह पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने स्वागत के लिए प्रदेशवासियों और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया।
3: उत्तर प्रदेश की धरती लखनऊ की इस पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूं। लखनऊ की धरती पे लोगों ने मुझे अभिमान दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी और पूरे लखनऊ के लोगों का अभिनंदन कर धन्यवाद करता हूं।
2: अपने 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर श्री नवीन विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अपने दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयासों से 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट से सफलतापूर्वक उबरने में कामयाब रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने हर स्तर पर समय रहते निर्णय लिए, उभरते संकट का सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति तैयार की और देश के संसाधनों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कूटनीति और रणनीतिक उपायों से देश ने संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। श्री मोदी ने आज राजस्थान में भारत का पहला ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया।
4: पश्चिमी एशिया में युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा, हर देश त्रस्त है। इस युद्ध ने 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट को जन्म दिया। बड़े बड़े देश आज ईंधन की किल्लत से जूझ रहे हैं, लेकिन साथियों, 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट पर 21वीं सदी के नए भारत की इच्छा शक्ति और भारत के प्रयास इस संकटों पर भारी पड़े हैं।
2: केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सोमवार को अपने सदस्यों की बैठक बुलाई है, जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त दान की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT के निष्कर्षों सहित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। 28 जून 2026 को जारी एक आधिकारिक सूचना के अनुसार ये बैठक ट्रस्ट के अध्यक्ष की स्वीकृति से कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी द्वारा बुलाई गई है। बैठक की कार्यसूची में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा द्वारा दिए गए त्याग पत्रों पर विचार किया जाना शामिल है। बैठक में भविष्य में राम मंदिर के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्था पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। वहीं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति ने आज महोबा में श्री राम मंदिर चढ़ावा मामले में कहा कि जांच निष्पक्ष तरीके से चल रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
5: राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बना है, वह अच्छी व्यवस्था है। यदि कोई गड़बड़ी की है तो मेरा इतना ही कहना है कि उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।
2: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। लिखित परीक्षा 2 और 3 जुलाई को 2-2 पाली तथा आज 1 पाली में समाप्त हुई। आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार परीक्षा में 88.77% अभ्यर्थियों ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि परीक्षा के दौरान आयोग में स्थापित AI इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से सभी परीक्षा केंद्रों की सघन निगरानी की गई। परीक्षा प्रदेश के 60 जनपदों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। परीक्षा के दौरान 44 फर्जी अभ्यर्थी भी पकड़े गए। परीक्षा के सफल संचालन के लिए आयोग ने जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश पुलिस और STF के प्रति आभार व्यक्त किया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रही हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज जनभवन में स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का जीवन भारत की सनातन चेतना का एक जीवंत प्रकाश स्तंभ है। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ने सार्वजनिक महत्व की भूमि से जुड़े मामलों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए एक अहम निर्णय लिया है। इसके तहत अब आरक्षित श्रेणी की भूमि, शासकीय भूमि, ग्राम सभा, नजूल, निष्क्रांत संपत्ति तथा शत्रु संपत्ति से संबंधित सभी वादों की सुनवाई 3 सदस्यीय विशेष पीठ द्वारा की जाएगी। ये व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
6: राजस्व परिषद के अध्यक्ष अर्चना अग्रवाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नई व्यवस्था लागू की गई है। नई व्यवस्था के अनुसार इन मामलों पर विशेष रूप से गठित 3 सदस्यीय पीठ सामूहिक रूप से विचार करेगी। परिषद के अध्यक्ष ने बताया कि राजस्व परिषद ने लखनऊ और प्रयागराज दोनों न्यायालयों के लिए अलग अलग 3 सदस्यीय विशेष पीठों का गठन किया है। इन विशेष पीठों द्वारा प्रत्येक बुधवार को नियमित रूप से इन मामलों की सुनवाई की जाएगी। वहीं एक अन्य पहल के तहत राजस्व परिषद के न्यायालयों द्वारा किसी वाद में अभिलेख तलब किए जाने पर सामान्यतः मूल अभिलेखों के स्थान पर संबंधित अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रमाणित पूर्ण स्कैन प्रति के आधार पर ही न्यायिक कार्यवाही की जाएगी। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
2: व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए केंद्र सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और OTT कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, OTT प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों की रक्षा करना है। 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 के दूसरे दिन आज जनभवन लखनऊ में मैंगो बायर सेलर मीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह सम्मिलित हुए। इस अवसर पर आम निर्यातकों और आम उत्पादकों के मध्य MOU भी हुए। इस अवसर पर उद्यान मंत्री ने कहा कि योगी सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों की समृद्धि के लिए हर स्तर पर काम हो रहा है।
7: उद्यान विभाग के माध्यम से हम राज्य के किसानों की समृद्धि का जो सपना देखे हैं वो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम साकार कर रहे हैं। दुनिया के बाजारों में हमारी औद्योगिक फसलें आज पहुंच कर रही है और जब से हमारे यहाँ जेवर एयरपोर्ट बन के तैयार हो गए हमारे राज्य के आम के किसानों का मनोबल बढ़ेगा, उनकी समृद्धि बढ़ेगी, ऐसा प्रयास हमारी सरकार का होगा।
2: महोत्सव के दूसरे दिन आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में विज्ञान विभाग के अधिकारियों, कृषि वैज्ञानिकों और प्रदेश भर से आए प्रगतिशील आम उत्पादक किसानों के बीच एक तकनीकी सत्र का आयोजन किया गया। प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित राज्य के कई जिलों में हुई बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। बीते 24 घंटों में कानपुर और आज सुबह टूंडला में हुई भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ की अहम बैठक। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न। 88% अभ्यर्थी हुए परीक्षा में शामिल। प्रदेश सरकार ने राजस्व से जुड़े सार्वजनिक भूमि के मामलों के लिए लागू की नई व्यवस्था। लखनऊ और प्रयागराज में गठित 3 दिवसीय विशेष पीठ करेगी वादों की सुनवाई। और कानपुर तथा टूंडला में भारी बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
8: पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं।
9: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत।

आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। हम आपको सुनवा रहे हैं रामेश्वर प्रसाद शर्मा की आवाज़ में भजन। तो लीजिए सुनते हैं रामेश्वर प्रसाद शर्मा की आवाज़ में ये अगला भजन।

आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। कलाकार हैं रामेश्वर प्रसाद शर्मा।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत और आज के कलाकार हैं रामेश्वर प्रसाद शर्मा। हम सुनवा रहे हैं इनकी आवाज़ में चंद भजन। तो लीजिए सुनते हैं रामेश्वर प्रसाद शर्मा की आवाज़ में कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत ये भजन।

इसी भजन के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8 बज रहे हैं। पेश है कार्यक्रम गीत संध्या। कार्यक्रम में सुनते हैं तुम बिन फिल्म से ये गीत सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में। संगीत दिया है निखिल विनय ने। संगीतकार हैं निखिल विनय और गीतकार हैं फैज़ अनवर।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत संध्या। लीजिए सुनते हैं पापा कहते हैं फिल्म से ये गीत उदित नारायण की आवाज़ में। गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत संध्या। लीजिए सुनते हैं कलयुग फिल्म से ये गीत राहत फतेह अली खान की आवाज में। संगीत दिया है अनु मलिक ने, गीतकार हैं आसिम रजा।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत संध्या। लीजिए सुनते हैं कभी हाँ कभी ना फिल्म के इस गीत की, जिसे आवाज दी है कुमार शानू ने, संगीत दिया है जतिन ललित ने, गीतकार हैं मजरून सुल्तानपुरी।

आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत संध्या। लीजिए सुनते हैं कभी अलविदा ना कहना फिल्म का ये गीत सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में। संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने, गीतकार हैं जावेद अख्तर।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम गीत संध्या यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर रात्रि के 8:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से और आज की फिल्म है सत्ते पे सत्ता। सत्ते पे सत्ता फिल्म राज एंड सीपी द्वारा निर्देशित है और रोमू एन सीपी द्वारा निर्मित। इसका निर्माण हुआ था 1982 में और ये एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी। फिल्म में अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, रंजीता कौर और अमजद खान मुख्य भूमिका में थे, जबकि सचिन पिलगांवकर, सुधीर लुथरिया, शक्ति कपूर, कन्वरजीत पेंटल और कन्वरजीत सिंह सहायक भूमिका में थे। आइए सुनते हैं सत्ते पे सत्ता फिल्म से ये गीत आर डी वर्मन, किशोर कुमार, स्वप्न चक्रवर्ती की आवाज़ में।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की फिल्म है सत्ते पे सत्ता। फिल्म की कहानी अमेरिका फिल्म सेवन ब्राइड्स फॉर सेवन ब्रदर्स, जो कि 1954 में हुई थी, का रूपांतरित भाग है, जो स्टीफन विसेंट बेनेट की लघु कहानी द सोबन वुमेन पर आधारित है, और बदले में प्राचीन रोमन कथा द रैप ऑफ द सबाइन वुमेन पर भी आधारित है। सत्य पे सत्ता सात भाइयों की कहानी है, और इस फिल्म कहानी का संगीत दिया था आरडी वर्मन ने। तो लीजिए सुनते हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत।

आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और फिल्म है आज की सत्ते पे सत्ता। 166 मिनट लंबी इस फिल्म के संगीत के बारे में बात करें तो दिलबर मेरे गीत को छोड़कर सभी गानों के बोल गुलशन बावरा ने लिखे थे, जबकि दिलबर मेरे के बोल के गीत आनंद बख्शी ने, संगीत दिया था राहुल देव वर्मन ने। इसी फिल्म से ये गीत लेते हैं किशोर कुमार और भूपेंद्र की आवाज़ में।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम एक ही फिल्म से यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर में दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, नदियां उफान पर और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए। और विस्तार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सांसद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सांसद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी।
2: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं। आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया। उन्होंने कहा कि सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र, घरेलू चिप निर्माण व्यवस्था मजबूत होने के साथ तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगा और वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति में इससे सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सांसद संयंत्र केवल 27 महीने में पूरा हो गया।
3: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि संयंत्र में निर्मित चिप का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह के औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। ये चिप जापान, अमरीका और यूरोप भेजी जाएंगी और इससे भारतीय प्रौद्योगिकी को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीन फील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीन फील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है।
2: ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
1: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी।
4: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 times बढ़ चुका है।
1: नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी यात्रा के अगले अध्याय का परिचायक है। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई ये योजना Tier 2 और Tier 3 शहरों में कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के जरिए मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के प्रमुख और कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने व्यापक पायरेसी की खबरों के बीच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। टेलीग्राम को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वर्षा के कारण मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर, गोंदिया, भंडारा, धुले, नासिक और पुणे के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। मुंबई, ठाणे और पालघर में स्कूल बंद करने पड़े। पालघर जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। रायगढ़ में सावित्री, कुंडलिका और उल्लास नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए मुंबई, ठाणे, पालघर और पुणे तथा सतारा के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरीका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमरीका के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, लोकतंत्र, सुशासन और लोगों की असीम क्षमता में साझा विश्वास पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के अंतर्गत भारतीय दल की व्यावसायिकता, परिचालन उत्कृष्टता और समर्पित सेवा को सम्मानित किया गया। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खमेनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए थे। हवाई हमले में मारे गए परिवार के सदस्यों के साथ रखे गए खामेनेई के ताबूत को देखकर शोक संतप्त लोगों ने प्रार्थना की। ईरान के वरिष्ठ नेता, सैन्य कमांडर और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में भारत ने इंग्लैंड को दूसरे T20 क्रिकेट मैच में 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए। ईशान किशन ने सर्वाधिक 49 और अभिषेक शर्मा ने 43 रन बनाए। भारतीय टीम में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में तड़के 2:30 पैराग्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश में लीवर की महामारी और टाइप 2 मधुमेह से निपटने के लिए राष्ट्रीय मिशन को शुरू करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये रोग अब पहले की तुलना में कम उम्र के लोगों में भी देखे जा रहे हैं। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इको सिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम नरेश माघो विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility in Sanand, Gujarat to strengthen chip manufacturing ecosystem. Prime Minister Modi says India successfully overcame West Asia crisis through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources. Monsoon session of Parliament to be held from 20th of this month to 13th August. India's defense exports reach a record high of over 38,000 crore rupees, says Defense Minister Rajnath Singh. Heavy rain disrupts normal life in many parts of Maharashtra, several rivers in spate, and in men's cricket, India set a target of 191 runs for hosts England in second T20 in Manchester. Vaibhav Suryavanshi becomes youngest debutant in international cricket. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test OSAT plant in Sanand, Gujarat. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnaw and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Addressing a large gathering, Prime Minister Modi emphasized that this development is the next step in India's massive electronics revolution, which has already established the country as the world's second largest mobile phone manufacturer. He stated that the CG Semi OSAT facility in Sanand will not only strengthen the domestic chip manufacturing ecosystem, but also boost technological self-reliance and elevate India's position in the global semiconductor value chain.
2: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चीप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
5: Lauding the diverse workforce at the plant, the Prime Minister described the complex as a mini India where engineers and professionals from various states are working under one roof to power the global digital economy. The Prime Minister also said the Sanand plant is geared to produce 20 crore chips annually. He congratulated CG Semi on setting an ambitious future target of scaling production to 500 crore chips per year.
2: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं, आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
5: Addressing at the occasion, Union Minister Ashwini Vaishnaw announced that India will have 5 operational semiconductor plants by the end of 2026. He emphasized that chips produced at the Sanand plant will cater to diverse industrial applications and will be exported to global markets, including the United States, Japan and Europe.
3: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है.
6: टुडे इंडियाज थर्ड सेमीकंडक्टर प्लांट इज बीइंग लॉन्च्ड. द प्राइम मिनिस्टर स्टार्टेड द फर्स्ट प्लांट ऑन 28th फरवरी, द सेकंड प्लांट ऑन 31st मार्च एंड टुडे ऑन 4th जुलाई द थर्ड प्लांट. गिवन द स्पीड विद विच द प्राइम मिनिस्टर अप्रूव्ड 12 प्लांट्स इन द कैबिनेट एंड विद कमर्शियल प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्टिंग इन 3 आउट ऑफ दोज 12 प्लांट्स, अ न्यू वेव ऑफ कॉन्फिडेंस इन इंडियाज सेमीकंडक्टर कैपेबिलिटीज हैज इमर्ज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड टुडे.
3: आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है.
5: Earlier, upon reaching Sanand, the Prime Minister toured the high-tech plant and inspected the production process. He also interacted closely with engineers and operators working inside the facility. Earlier, Prime Minister Modi inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth over 1,05,000 crore rupees in Rajasthan, marking a major push to infrastructure, energy, transport and employment generation in the state. During his day-long visit, the Prime Minister inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport. Thereafter, he dedicated the country's most modern greenfield refinery cum petrochemical complex to the nation in Pachupadra in Balotra district, which is an industrial processing plant built from scratch on undeveloped clean land. He also inspected the refinery's state-of-the-art control room, interacted with engineers and technical experts, flagged off fuel tankers, and virtually laid the foundation stone for Jaipur Metro Phase 2. Addressing the program, the Prime Minister said, the conflict in West Asia had triggered the biggest energy crisis of the 21st century, but India successfully overcame the challenge through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources.
2: Bharat ne har star par sahi faisle liye, sankat ka samay

0: डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है.
1: Mr. Modi also handed over appointment letters to around 54,000 youths recruited across various departments of the government of Rajasthan. Prime Minister Modi will be on a six-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand from Monday. At the invitation of Indonesian President Prabowo Subianto, Prime Minister Modi will undertake a state visit to Indonesia from the 6th to the 8th of this month. This will be Mr. Modi's fourth visit to Indonesia and his first bilateral visit since India-Indonesia relations were elevated to a comprehensive strategic partnership in May 2018. Here is a report from our correspondent in Jakarta.
2: During the visit, Prime Minister Modi will hold bilateral discussions with President of Prabowo Subianto, reviewing progress across key areas of cooperation under the strategic partnership. In Jakarta, the Prime Minister is also scheduled to address a large gathering of the Indian diaspora, underscoring the deep cultural and historical ties between the two nations. The Indian community in Indonesia is eagerly waiting for the visit. Speaking to Akashvani, Siddharth Taparia, President of the India Club of Jakarta, highlighted the strong friendship between India and Indonesia. He noted that this high-level engagement reflects the importance both countries place on each other. Mr. Taparia emphasized that India and Indonesia, as two of the fastest-growing economies with large populations, together create a vibrant marketplace. He expressed optimism that two nations will deepen collaboration in infrastructure, trade, defense, agriculture, natural resources, and other sectors. Shandi Bandashgupta, Jakarta, Indonesia.
1: Following his visit to Indonesia, Mr. Modi will embark on the second leg of his visit to Australia from the 8th to the 10th of this month. On the third and last leg of his three-nation visit, Mr. Modi will be in New Zealand on the 10th and 11th of July. The monsoon session of Parliament will commence on the 20th of this month. It will continue till the 13th of August. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju today informed that President Draupadi Murmu has approved the proposal of the government to convene the monsoon session of Parliament from 20th July. Mr. Rijiju said the session will focus on meaningful debate, discussion and decisions on issues of national importance. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Defence Minister Rajnath Singh today highlighted India's significant progress in manufacturing and technology, saying that the country's defence exports have reached a record of over 38,000 crore rupees. Addressing an event organised by a private media organisation in New Delhi, Mr. Singh said the sharp rise from 686 crore rupees in the financial year 2013-14 reflects an almost 57-fold increase and underlines growing global confidence in Make in India defense platforms.
3: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है.
4: टुडे आवर डिफेंस प्रोडक्शन हैज रीच्ड मोर देन 1,78,000 करोड़ रुपीस. अंटिल 7 8 और 9 इयर्स अगो द डिफेंस प्रोडक्शन ऑफ आवर्स वाज एप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ रुपीस. डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैव आल्सो रीच्ड ए रिकॉर्ड हाई ऑफ ओवर 38,000 करोड़ रुपीस एंड आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इन 2013 एंड 14 इट वाज ओनली 686 करोड़ व्हिच इज नाउ इन increased by 57 times today.
3: जो आज यह बढ़कर 57 times बढ़ चुका है.
1: Industry experts have said that ethanol blending program has not been introduced overnight, but has been implemented through a measured step-by-step and scientifically driven process. Addressing a press conference in New Delhi, former chairman and managing director of Engineers India Limited, Vartika Shukla said, the ethanol blending program was placed in the public domain for structured discussions and stakeholder consultations in 2018.
5: The ethanol blending program, particularly in 2018, it was in a structured manner put out for discussion and deliberation by all stakeholders. It is supported by scientific evidence, extensive testing by the automotive manufacturers and the agencies who support them, namely the Automotive Research Association of India. And also it is in line with the global best practices which is followed to green the fossil fuels to lower the carbon emissions.
1: A Delhi court today rejected the bail pleas filed by Omar Khalid and Sharjeel Imam in Delhi riots conspiracy case. additional sessions judge Sameer Bajpai of Karkar Doma Court dismissed the bail pleas filed by both the accused persons. Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha today chaired a high-level review meeting to assess the overall management and ground situation of the ongoing Sri Amarnath Ji Yatra. The Lieutenant Governor said the Yatra is being conducted as per the Supreme Court mandated sealing of pilgrim movement on the tracks, and it is imperative to adhere to the registration schedule for safety and convenience of the pilgrims. The LG said this after it was revealed in the meeting that an unusually large number of pilgrims have been arriving without valid registration, causing long waiting times for pilgrims to undertake the Yatra. During the meeting, it was stated that only pilgrims possessing valid registration for the designated date shall be permitted to proceed on the tracks leading to the holy cave shrine. Heavy rainfall continued to batter several parts of Maharashtra, disrupting normal life across the state. Mumbai and its suburbs received intense showers, prompting the closure of schools in Mumbai, Thane and Palghar. Flood-like conditions were reported from parts of Palghar district, affecting road and rail traffic. In Raigarh, major rivers, including the Savitri, Kundalika and Ulhas, are flowing at full capacity, while waterlogging was reported in Mahad. Continuous rain has also raised water levels in Panchaganga and other rivers in Kolhapur. Meanwhile, the India Meteorological Department has issued a red alert for Mumbai, Thane, Palghar and the Ghat areas of Pune and Satara for the next 2 days, while an orange alert remains in force for the Ghat areas of Raigarh, Ratnagiri and Nashik. The India Meteorological Department has also issued a yellow alert in all the 14 districts of Kerala for today. The yellow alert will continue in 3 districts tomorrow. An orange alert has been issued for Kannur and Kasargod districts on Monday and for Kannur, Kasargod and Kozhikode on the 7th of this month. Heavy rainfall is expected to continue until the 8th of this month. Due to adverse weather conditions and rough seas, fishermen have been advised not to venture into the sea along the Keralam, Lakshadweep and Karnataka coasts. In sports, in men's cricket, India have set a target of 191 for England in the second T20 international of the 5-match series at Old Trafford in Manchester. In reply, England was 16 for 2 in 2.2 overs when reports last came in. Opting to bat first, India posted 190 runs for the loss of 7 wickets in their allotted 20 overs. Ishan Kishan scored 49 off 40 balls, while Abhishek Sharma contributed 43 runs off 24 balls. Earlier, Vaibhav Suryavanshi created history by becoming the youngest player to make his international debut for India. Vaibhav made his debut at the age of 15 years and 99 days, surpassing the long-standing record held by Sachin Tendulkar, who made his India debut at the age of 16 years and 205 days. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi inaugurates CG Semi-Outsourced Semiconductor Assembly and Test Facility in Sanand, Gujarat, to strengthen chip manufacturing ecosystem. Prime Minister Modi says India successfully overcame West Asia crisis through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources. Monsoon session of Parliament to be held from 20th of this month to 13th August. India's defence exports reach a record high of over 38,000 crore rupees, says Defence Minister Rajnath Singh. Heavy rain disrupts normal life in many parts of Maharashtra, several rivers in spate. And in men's cricket, India set a target of 191 for host England in second T20 in Manchester, where Vaibhav Suryavanshi becomes youngest debutant in international cricket. That is all in the news at 9. Good night.
6: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सानंद में सीजी सेमी के आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट प्लांट का इफ्तिताह किया ताकि चिप मैन्युफैक्चरिंग इको निज़ाम को मुस्तहकम बनाया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि भारत ने बरवक्त फैसलों, मौसर सिफारतकारी और कौमी वसाइल के मोहतात बंदोबस्त के जरिए मगरबी एशिया बहरान पर कामयाबी के साथ उबूर हासिल किया। पार्लियामेंट का मानसून इजलास इस महीने की 20 तारीख से लेकर 13 अगस्त तक होगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत के दिफाई सामान की बरामदात 38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सतह पर पहुंच गई, जो कि एक रिकॉर्ड है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश होने से रोजमर्रा की जिंदगी मुतासर हुई है, कई दरिया तोगयानी पर हैं। और मर्दों के क्रिकेट में मैनचेस्टर में भारत ने दूसरे टी20 मैच में इंग्लैंड के सामने 191 रन का निशाना रखा है। वैभव सूर्यवंशी बैन अलावा क्रिकेट में कदम रखने वाले सबसे कम उम्र खिलाड़ी बन गए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सानंद में सीजी सेमी के जदीद तर्ज के आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट ओसेट प्लांट का इफ्तिताह किया। इस तकरीब में मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव और गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल के साथ साथ आलमी टेक कंपनियों के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। वहां बड़ी तादाद में मौजूद लोगों से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि यह कदम भारत के बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स इनकलाब में अगला मरहला है, जिसकी बदौलत भारत को मोबाइल फोन तैयार करने वाले दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मुल्क का रुतबा पहले ही हासिल है। जनाब मोदी ने कहा कि सानंद में सीजी सेमी ओसेट मरकज से न सिर्फ अंदरूनी मुल्क चिप मैन्युफैक्चरिंग इको निजाम को मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी, बल्कि इससे आलमी सतह पर सेमी कंडक्टर वैल्यू चेन निजाम में भारत की पोजीशन में इजाफा होगा और तकनीकी खुद किफालत को भी फरोग हासिल होगा। वजीर आजम ने इस एतमाद का इजहार किया कि इस तारीखी प्रोजेक्ट से सानंद सेमी कंडक्टर के एक दरख्शां आलमी मरकज के तौर पर उभरेगा। जनाब मोदी ने इसे विकसित भारत का नक्शराह और मेक इन इंडिया का दूसरा कदम करार दिया। मजकूरा प्लांट में मुतनव्वे अफरादी कुव्वत की सताइश करते हुए वजीर आजम ने कॉम्प्लेक्स को एक मिनी इंडिया से ताबीर किया, जहां मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक रखने वाले इंजीनियर्स और पेशावर अफराद आलमी डिजिटल मईशत को तकवीत पहुंचाने की खातिर एक छत के नीचे काम कर रहे हैं। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि इस उभरते हुए इको निजाम से मस्नूई जहानत और नए सिलसिले की टेक्नोलॉजियों के शोबे में भारत के नौजवानों को मजीद आगे बढ़ने के वसी मौके हासिल होंगे। वजीर आजम ने कहा कि सानंद का प्लांट सालाना 20 करोड़ चिप्स तैयार कर सकेगा। जनाब मोदी ने पैदावार बढ़ाकर सालाना 500 करोड़ चिप्स तैयार करने का मुस्तकबिल का बड़ा निशाना तय करने पर सीजी सेमी को मुबारकबाद दी।
0: सीजी सेमी का ये प्लांट भारत, जापान और थाईलैंड के हमारे इंडस्ट्री पार्टनर्स के साझा प्रयासों का भी प्रतीक है। ये केवल एक बिजनेस वेंचर नहीं है, ये टेक्नोलॉजी, भरोसे और साझेदारी का ऐसा मॉडल है जो भारत की सेमीकंडक्टर जर्नी को नई गति देने वाला है। बीते 2.25 सालों में आप सभी ने स्क्रैच से स्केल तक इस पूरी फैसिलिटी को आकार दिया है। आज हम इसके कॉमर्शियल प्रोडक्शन की शुरुआत कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी।
6: इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया कि मुल्क में इस साल के आखिर तक 5 सेमीकंडक्टर प्लांट्स काम करने लगेंगे। मजकूरा शोबे की तेज रफ्तार पेशरफ्त को उजागर करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि सानंद मरकज में भूमि पूजन की तकरीब से लेकर कमर्शियल पैदावार का सिलसिला शुरू होने तक सिर्फ 27 महीने लगे।
7: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
6: जनाब अश्विनी वैष्णव ने जोर देकर कहा कि सानंद प्लांट में तैयार होने वाले चिप्स का इस्तेमाल मुख्तलिफ सनती शोबों में किया जाएगा और उन्हें अमेरिका, जापान और यूरोप समेत आलमी मार्केट्स में भी बरामद किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में 1,05,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा, जिससे रियासत में बुनियादी ढांचे, तवानाई, ट्रांसपोर्ट और रोजगार के मौके पैदा करने को बड़ी तकवीत मिलेगी। दिन भर के अपने दौरे में वजीर आजम ने जोधपुर हवाई अड्डे पर नई टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह किया। इसके बाद जनाब मोदी ने बालोतरा जिले में पचपदरा के मकाम पर मुल्क का सबसे जदीद तर्ज का ग्रीन फील्ड रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स मुल्क के नाम वक्फ किया। ग्रीन फील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या मादनियात के लिए एक ऐसा सनती प्रोसेसिंग प्लांट है जिसे साफ सुथरी कच्ची जमीन पर नए सिरे से बनाया जाता है। پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ مغربی ایشیا کی مہازرائی سے 21ویں صدی کا توانائی کا سب سے بڑا بحران پیدا ہو گیا تھا، لیکن بھارت نے بروقت فیصلوں، مؤثر سفارتکاری اور قومی وسائل کے محتاط بندوبست کے ذریعے اس چیلنج پر کامیابی کے ساتھ عبور حاصل کیا۔
0: بھارت نے ہر سطر پر صحیح فیصلے لیے، سنکٹ کا سمے

0: ऑटोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: जनाब मोदी ने कहा कि बुहरान के दौरान दुनिया के मुल्कों के साथ भारत के दोस्ताना ताल्लुकात का अहम रोल रहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सरकार ने आलमी सतह पर उथल पुथल के बावजूद खाना पकाने की गैस की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा नहीं होने दिया।
0: हमने संकट शुरू होते ही रिफाइनरी

0: और 7 दिनों के भीतर भीतर एलपीजी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। पहले जो 35,000 मैट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन देश में होता था, संकट के दौरान वो 54,000 मैट्रिक टन बढ़ गया।
1: जनाब मोदी ने इस मौके पर तकरीबन 54,000 नौजवानों को तकर्रुरनामे भी सौंपे, जिन्हें राजस्थान सरकार के मुख्तलिफ महकमों में भर्ती किया गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पार्लियामेंट का मानसून इजलास इस महीने की 20 तारीख को शुरू होगा और 13 अगस्त तक जारी रहेगा। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने बताया कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से पार्लियामेंट का मानसून इजलास तलब करने की सरकार की तजवीज को मंजूरी दे दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब रिजिजू ने कहा कि इस इजलास में कौमी अहमियत के हामिल मामलात पर बामकसद बहस मुबासे और फैसलों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी में भारत की नुमाया तरक्की को ये कहते हुए उजागर किया कि मुल्क के दिफाई बरामदात रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा तक पहुंच गई हैं। नई दिल्ली में मीडिया के एक निजी इदारे की जानिब से मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि माली बरस 2013-14 में 686 करोड़ रुपए से जबरदस्त इजाफा तकरीबन 57 गुना है और इससे मेक इन इंडिया दिफाई प्लेटफॉर्म में बढ़ते आलमी एतमाद की अक्कासी होती है।
2: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस

0: में रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है और मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
1: वज़ीरे दिफा ने कहा कि माली बरस 2025-26 में सालाना दिफाई पैदावार भी अब तक की सबसे ज्यादा बुलंदी 1,78,000 करोड़ रुपए से ज्यादा तक पहुंच गई जो 2014-15 की सतह से तकरीबन 3 गुना है। भारत की मैन्युफैक्चरिंग की वसीतर हुसूलियाबियों को उजागर करते हुए जनाब सिंह ने मेक इन इंडिया पहल के तहत मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चरिंग की तौसी, मोटर गाड़ियों के बरामदात में इजाफे, अंदरूने मुल्क तैयार करदा रेल इंजन और डिजिटल बुनियादी ढांचे की मजबूती को उजागर किया। गुज़श्ता दहाई में मुल्क की तरक्की के बारे में बात करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत ने किल्लत का इज़ाला किया, मौके बढ़ाए और वर्क कल्चर में यकसर तब्दीली पैदा की। उन्होंने कहा कि हुकूमत रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म की पॉलिसी के जरिए विकसित भारत की मजबूत बुनियाद कायम कर रही है। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की इत्तलात सामने आने पर टेलीग्राम ऐप को नोटिस जारी किया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक सरकार ने टेलीग्राम को हिदायत दी है कि चोरी छुपे हासिल की गई फिल्मों और ओवर द टॉप ओटीटी प्रोग्रामों के खिलाफ बिला ताखीर इकदामात किए जाएं। ज़राए ने मजीद बताया कि मस्कूरा प्लेटफॉर्म से कहा गया है कि वो 15 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई रिपोर्ट पेश करे। इंडोनेशिया के सदर की दावत पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस माह की 6 से 8 तारीख तक इंडोनेशिया का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का इंडोनेशिया का यह चौथा और मई 2018 में भारत इंडोनेशिया ताल्लुकात को जामे कलीदी शराकतदारी तक वसत दिए जाने के बाद पहला दौरा होगा। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: अपने दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी इंडोनेशिया के सदर के साथ बाहमी बातचीत करेंगे जिसमें कलीदी शराकतदारी के तहत अहम शोबों में पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। जकार्ता में वज़ीर-ए-आज़म का वहां आबाद भारतीय बिरादरी के एक बड़े इज्तिमा से खिताब का भी प्रोग्राम है। इंडोनेशिया में भारतीय बिरादरी वज़ीर-ए-आज़म के दौरे की मुंतजर है। जकार्ता में इंडिया क्लब के सदर सिद्धार्थ तपाड़िया ने आकाशवाणी से बात करते हुए भारत और इंडोनेशिया के दरमियान मजबूत दोस्ती को उजागर किया। उन्होंने कहा कि इस आला सतही राबते से ये बात नुमाया होती है कि दोनों ममालिक एक दूसरे को खास अहमियत देते हैं। उन्होंने इस बात पर पुरउम्मीदी का इजहार किया कि दोनों ममालिक बुनियादी ढांचे, तिजारत, दिफा, ज़राअत, कुदरती वसाइल और दीगर शोबों में इश्तराक को मजीद मुस्तहकम करेंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमरीका के 250वीं यौमे आज़ादी पर सदर डोनाल्ड ट्रंप और वहां के अवाम को मुबारकबाद दी है। जनाब मोदी ने अपने पैगाम में कहा कि भारत और अमरीका के ताल्लुकात कलीदी साझेदारी से आगे बढ़कर हैं जो जमहूरियत, कानून की अमलदारी और अपने अवाम की लामहदूद सलाहियत के मुश्तरका एतमाद पर मबनी है। सनअती माहरीन ने कहा है कि एथेनॉल की आमेजिश का प्रोग्राम रातों रात मुतारिफ नहीं किया गया बल्कि ये एक सोचा समझा मरहलेवार और साइंस पर मबनी अमल है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का खिताब करते हुए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की साबिक चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल की आमेजिश का प्रोग्राम 2018 में सिलसिलेवार तबादला ख्याल और मुतालिका फरीकों के सलाह मशवरे के लिए लोगों के सामने रखा गया। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है जिससे रियासत भर में मामूलात जिंदगी मुतासर हैं। मुंबई और उसके मजाफाती इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई जिससे मुंबई, थाने और पालघर में स्कूलों को बंद करना पड़ा। पालघर जिले के हिस्सों से सैलाब किसी सूरत हाल की खबर है जिससे सड़क और रेल ट्रैफिक मुतासर हुआ है। रायगढ़ में अहम दरियाओं में पानी की सतह बढ़ गई है। मुसलसल बारिश से कोल्हापुर में पंचगंगा और दीगर दरियाओं में भी पानी की सतह में इजाफा हुआ है। ईरान के साबिक रहबरे आला आयतुल्ला सैयद अली खामनाई की 6 रोजा सरकारी आखिरी रसूमात का सिलसिला आज से तेहरान में शुरू हो गया। इसमें हजारों सोगवार शिरकत कर रहे हैं और ईरान के मरहूम रहनुमा को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। मर्दों के क्रिकेट में मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफोर्ड में दूसरे T20 बैन अलावामी क्रिकेट मैच में भारत ने इंग्लैंड की जीत के लिए 191 रन का निशाना रखा है। अब से कुछ देर पहले तक इंग्लैंड ने 5 ओवर्स में 3 विकेट पर 52 रन बना लिए थे। इससे कबल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करते हुए भारत ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 190 रन बनाए। इससे पहले वैभव सूर्यवंशी भारत के लिए अपना पहला बैन अलावामी मैच खेलने वाले सबसे कम उम्र खिलाड़ी बन गए। वैभव ने 15 साल और 99 दिन की उम्र में अपना पहला मैच खेला। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सानंद में सीजीएसएमई के आउटसोर्स سیمی کنڈکٹر اسمبلی اور ٹیسٹ پلانٹ کا افتتاح کیا تاکہ چپ مینوفیکچرنگ ایکو نظام کو مستحکم بنایا جا سکے. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بھارت نے بر وقت فیصلوں، مؤثر سفارتکاری اور قومی وسائل کے محتاط بندوبست کے ذریعے مغربی ایشیا بحران پر کامیابی کے ساتھ عبور حاصل کیا. پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس اس مہینے کی 20 تاریخ سے لے کر 13 اگست تک ہوگا. مہاراشٹر کے کئی حصوں میں موسلادھار بارش ہونے سے روزمرہ کی زندگی متاثر ہوئی ہے. اور مردوں کے کرکٹ میں مینچسٹر میں بھارت نے دوسرے ٹی ٹوینٹی میچ میں انگلینڈ کے سامنے 191 رن کا نشانہ رکھا. ویبھو سوریا ونشی بین الاقوامی کرکٹ میں قدم رکھنے والے سب سے کم عمر کھلاڑی بن گئے ہیں. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا. یہ آکاش وانی دلی ہے. कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए. ये आकाशवाणी है.

0: नमस्कार। आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। नमस्कार। सावन अगर हकीकत है तो आषाढ़ एक कल्पना, ऐसी कल्पना जिसमें भरे होते हैं खुशी के रंग, झीनी बहार, गर्म हवाओं के बीच हल्की सी फुहरन, जैसे तस्वीर खिंचवाने के बाद उसे देखने की त्वरित ललक होती है या कपड़े सिलवाने के बाद उन्हें पहनने की, ठीक वैसे ही आषाढ़ में धरती खुद को आकाश के आईने में निहारने को आतुर रहती है, खूब सजना संवरना चाहती है, बादलों और हवाओं को हरी ओढ़नी सिलने को दे आती है, खूब बतलाना और जतलाना चाहती है, सिद्ध करना चाहती है अपने होने और जग की सार्थकता को। आकाश और धरा के बीच जो रिक्त है, जो दूरी है, उसे पास लाती है, उसे मिलाती है, उसे बुलाती है ये बरखा। सही मायने में ये बरखा ही सार है, आधार है इस संसार सागर का, जीव जगत के अस्तित्व का। बरखा है तो ये कहानी है, बरखा है तो ये रवानी है, कोई इसमें बहुत ज्यादा डूब जाता है तो कोई सारा का सारा प्यासा रह जाता है। बरखा खुले में मैदानों में होती है, मगर घर की बहुत सी खिड़कियों से प्यास झांकती रह जाती है। बशीर बद्र का एक शेर साया सी याद आ रहा है, जिस बादल की आस में जूड़े खोल दिए सुहागन ने, वो पर्वत से सिर टकरा कर बरस गया सहराओं में। सुनते हैं रूपक, मेघ, मन और मालवा।
1: कृति की लय में आषाढ़ का एक दिन। महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य मेघदूत में लिखा है, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघ माचलिष्ट सानु वप्र क्रीड़ा परिणत गज वृक्षनीयम ददर्श। यानी आषाढ़ के पहले दिन जब यक्ष ने पर्वत के शिखर पर झुके हुए मेघ को देखा तो उसे ऐसा लगा कि एक हाथी क्रीड़ा में मगन हो टीले से मिट्टी खोद रहा है। तो यक्ष अपनी पत्नी यक्षिणी की स्मृति में व्याकुल हो उठता है और मेघ को ही अपना संदेश वाहक बनाने का निश्चय करता है। कालिदास की ही रचना मेघदूत से प्रेरित होकर मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक लिखा। ये कालजयी कृति आधुनिक हिंदी नाटक की आधारशिला मानी जाती है। आषाढ़ का पहला दिन भारतीय काव्य परंपरा में केवल ऋतु परिवर्तन का संकेत नहीं है, वे मनुष्य के भीतर घटित होने वाले भाव परिवर्तन का भी समय है। उमड़ते मेघ, आकाश में फैलती घटाएं और वर्षा की पहली आहट, भारतीय साहित्य में सदियों से प्रेम, प्रतीक्षा, स्मृति और विरह के प्रतीक रहे हैं। कालिदास ने मेघदूत में मेघ को संदेश वाहक बनाया था, ऐसा दूत जो दूरियों को जोड़ता है और स्मृतियों को जीवित रखता है। आधुनिक हिंदी साहित्य में यही प्रकृति बोध एक नए रूप में मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन में दिखाई देता है।

0: प्रेम विरह सृजन और जीवन दृष्टि का संवाद है। प्रकृति है जो पात्रों की मन स्थितियों के साथ चलती है और मालवा का परिवेश है जो पूरे नाटक को संवेदनात्मक धरातल देता है। भारतीय साहित्य में आषाढ़ का महीना विशेष महत्व रखता है। ये केवल वर्षा का आरंभ नहीं बल्कि प्रतीक्षा स्मृति प्रेम और विरह का काल भी है। संस्कृत से लेकर हिंदी तक की काव्य परंपरा में आषाढ़ और मेघ मनुष्य की भावनाओं के वाहक रहे हैं। नाटक की शुरुआत ही आषाढ़ का पहला दिन और मूसलाधार वर्षा के साथ होती है। भारी वर्षा में मल्लिका कालिदास के साथ वर्षा विहार कर गीले वस्त्रों में कांपती सिमटती हुई लौटती है और अपनी माँ से कहती है,
1: आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारासार वर्षा, दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गई और मैं भी तो देखो ना माँ कैसी भीग गई।
0: मल्लिका को भीगने का तनिक भी दुख नहीं होता। वो कहती है, अगर मैं नहीं भीगती तो इस सुख से वंचित रह जाती। वो उस सौंदर्य का वर्णन करती है जो उसकी स्मृति में स्थायी रह जाता है और यहाँ प्रकृति उसके मन की अनुभूति बन जाती है। मल्लिका कहती है,
1: मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि क्यों कोई पर्वत शिखरों को सहलाती मेघ मालाओं में खो जाता है, क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश में बनते मिटते चित्रों का इतना मोह रहता है।
0: मल्लिका केवल कालिदास से प्रेम ही नहीं करती, वह उनके भीतर के कवि को भी पहचानती है। इसीलिए जब उज्जैनी से कालिदास को राजकवि बनने का निमंत्रण मिलता है तो एक बड़ा द्वंद्व सामने आता है। कालिदास का मन तैयार नहीं होता। उन्हें लगता है कि इस गांव, इन पर्वतों, इन मेघों और मल्लिका से दूर होकर कहीं उनका रचनात्मक स्रोत सूख ना जाए। मालवा की प्रकृति, आत्मीय परिवेश और मल्लिका, यही तो कालिदास की रचनात्मकता का आधार हैं। लेकिन मल्लिका अपने प्रेम को बंधन नहीं बनने देती। वह अपने व्यक्तिगत सुख से अधिक कालिदास की रचनात्मक यात्रा को महत्व देती है। वह उन्हें समझाती है कि उन्हें उज्जैनी अवश्य जाना चाहिए। जब कालिदास कहते हैं,
2: फिर एक बार सोचो मल्लिका, प्रश्न सम्मान और राजाश्रय स्वीकार करने का ही नहीं है, उससे कहीं बड़ा प्रश्न मेरे सामने है।
1: और वो प्रश्न मैं हूँ ना?
2: तुम पूरी तरह नहीं समझ रही हो मल्लिका, प्रश्न तुम्हारे घेरने का नहीं है। मैं अनुभव करता हूँ ये ग्राम प्रांत मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ, उन सूत्रों में तुम हो, ये आकाश और ये मेघ है, यहाँ की हरियाली है, हरिणों के बच्चे हैं, पशुपाल हैं। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा।
1: विश्वास करो, तुम यहाँ से जाकर भी यहाँ से अलग नहीं होगे। यहाँ की वायु, यहाँ के मेघ और यहाँ के हरिन सब तुम्हारे साथ जाएंगे और मैं भी तुमसे दूर नहीं होंगी। जब कभी तुम्हारे निकट होना चाहूंगी, पर्वत शिखर पर चली जाऊंगी और उड़ते हुए मेघों से घिर जाया करूंगी।
0: कालिदास उज्जैनी पहुँचते हैं, वहाँ उन्हें यश मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, वैभव प्राप्त होता है, उनका व्यक्तित्व विस्तार पाता है और उनकी पहचान दूर दूर तक स्थापित होती है। लेकिन इसी यात्रा के साथ एक दूसरा परिवर्तन भी घटित होने लगता है। वे धीरे धीरे उस भाव भूमि से दूर होते जाते हैं जहां उनकी सृजनात्मक चेतना ने जन्म लिया था। जिस प्रकृति ने उन्हें संवेदना दी, जिन आत्मीय संबंधों ने उनकी कल्पना को आकार दिया और जिस सहज परिवेश ने उनके भीतर के कवि को जन्म दिया था, वही संसार अब उनसे छूटने लगता है। नाटक का अंतिम भाग इसी गहरी

0: की वर्षा में उल्लास, प्रेम और संभावनाएं हैं, वहीं अंत की वर्षा में समय, दूरी और जीवन की अनकही रिक्तता का बोध है। इसीलिए आषाढ़ का एक दिन केवल कालिदास की कथा नहीं है, यह नाटक हमें बताता है कि हर बड़ी उपलब्धि के पीछे कुछ ऐसी स्मृतियां और संबंध भी छूट जाते हैं जिनका मूल्य समय बीतने पर अधिक गहराई से समझ में आता है।
1: वही आषाढ़ का दिन है, उसी तरह मेघ गरज रहे हैं, वैसे ही वर्षा हो रही है, वही मैं हूँ, उसी घर में हूँ, किंतु
2: लोग सोचते हैं मैंने उस जीवन और वातावरण में रहकर बहुत कुछ लिखा है, परंतु मैं जानता हूँ कि मैंने वहाँ रहकर कुछ नहीं लिखा। जो कुछ लिखा है वो यहाँ के जीवन का ही संचय था। कुमार संभव की पृष्ठभूमि ये हिमालय है और तपस्विनी उमा तुम हो मलिका, मेघदूत के यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है और विरह विमर्दता यक्षिणी तुम हो।

0: मेघ मन और मालवा, अभी आपने ये रूपक सुना। आलेख और वाचन सुश्री भावना झा का था और नाट्य स्वर था नेत्रा और प्रांजल का। साथियों, कहते हैं इंसान कुछ नहीं करता, समय प्रावर्तिक रहकर उसे उस ओर आकर्षित करता है। मोहन राकेश की कृति आषाढ़ का एक दिन विवेक, आत्मबोध और अनुभव जैसे बिंदुओं पर मौन रहकर भी बहुत कुछ कह जाती है, चिंतन के नए द्वार खोल जाती है और यथार्थ कुछ कुछ तत्कालीन समाज को आगाह करता है। लेकिन एक सीढ़ी नीचे उतरा जाए तो वहाँ एक ऐसी पीढ़ी दिखाई देती है जो जड़ता, बंधन, दमन और शोषण में लिपटी हुई है। निराशा के बीच वहाँ कोई उम्मीद भी नहीं। साहित्य के हर अनुयायी ने किसी न किसी मोड़ पर प्रेमचंद को अवश्य पढ़ा है। सब कुछ न सही पर बहुत कुछ जरूर पढ़ा है। कुछ ऐसा भी है जो नहीं पढ़ा होगा। आइए ऐसी ही कुछ रचनाओं पर चर्चा करते हैं वरिष्ठ प्रसारण कर्मी, लेखक और आलोचक श्री राजीव कुमार शुक्ल से। आपसे बातचीत कर रही हैं युवा लेखिका नवोदिता मिश्रा।
1: 31 जुलाई को महान कथाकार साहित्यकार प्रेमचंद की जयंती है और प्रेमचंद जैसे बड़े और प्रसिद्ध लेखक की कुछ रचनाएं जो कालजयी हो गई, मगर ऐसी भी बहुत सी रचनाएं हैं जिनका जिक्र कम होता है या जिनको एक आम पाठक द्वारा या कुछ खास पाठकों द्वारा भी कम पढ़ा गया है। हालांकि वो बहुत अच्छी रचनाएं हैं अपने कथ्य में, अपने प्रभाव में। प्रेमचंद कुछ अनपढ़े कुछ अनसुने, इस विषय के इर्द गिर्द आज हम बात करने का प्रयास करेंगे। तो पहला सवाल वो ये है कि कुछ रचनाएं जो इतनी लोकप्रिय हो गई कि उनकी पहचान ही बन गई, तो क्या इसी लोकप्रियता ने उनकी अन्य उत्कृष्ट रचनाओं को पाठकों की दृष्टि से ओझल कर दिया?
2: देखिए, ओझल कर दिया शायद ज्यादा बड़ा एक बयान होगा, और वैसे एक हद तक तो ये देखिए होता ही है कि किसी भी रचनाकार ने अगर प्रचुर मात्रा में लिखा है तो उस प्रचुर मात्रा में लिखी गई रचनाओं में से कुछ रचनाएं अधिक चर्चित होती हैं, किसी समय विशेष में ज्यादा चर्चित होती हैं। समय बदलता है, युग के मानदंड और मान्यताएं बदलती हैं, आवश्यकताएं बदलती हैं, मनुष्य के सरोकार बदलते हैं, तो उसके साथ साथ कई कहानियां, कई रचनाएं, कई कविताएं, कई उपन्यास फिर से वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, फिर से प्रकट हो जाते हैं। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आपकी साहित्य में रुचि है और आपको साहित्य पढ़ने में सुख मिलता है और उससे आप कुछ समृद्ध होते हैं, तो हर साहित्यकार की और खासतौर से खूब लिखने वाले साहित्यकारों की जो बहुत चर्चित रचनाएं हैं, उनके अलावा भी कई रचनाएं होती हैं जिनको पढ़ने से आप समृद्ध होते हैं और उनकी रचना धर्मिता के बहुत सारे ऐसे पहलू आपके सामने आते हैं जो कुछ रचनाओं विशेष पर अगर आप केंद्रित बने रहें तो उसमें प्रकट नहीं होते हैं।
1: वो रचनाएं भी बहुत इजाफा करती हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि प्रेमचंद की ऐसी कौन सी रचनाएं हैं जिनका साहित्यिक मूल्य आपकी दृष्टि में बहुत ऊंचा है लेकिन कम पढ़ी गई या कम चर्चित है या बिल्कुल ही अनदेखी रह गई?
2: देखिए, बिल्कुल अनदेखी रह गई वाली बात तो थोड़ी कठिन होगी, क्योंकि प्रेमचंद का जैसे मानसरोवर है जिसमें उनकी कहानियां संग्रहित हैं, वो बहुत

0: सारी कहानियां हैं। उन सारी कहानियों की चर्चा तो शायद एक बातचीत में एक आदमी के द्वारा करना लगभग असंभव ही होगा। एक संयोग है, मेरी स्कूली शिक्षा उत्तर प्रदेश में हुई और ये दौर था, ये 1960 के दशक का अंत था और उस समय उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में हिंदी के विद्यार्थियों के लिए एक पुस्तिका हुआ करती थी जिसमें प्रेमचंद की ऐसी कहानियां थी जिनको बाल मनोविज्ञान के साथ जोड़ करके ज्यादा बच्चों के लिए इनको अनुकूल माना जाता था और प्रेमचंद की कई कहानियां एक साथ पढ़ने का जो सौभाग्य था वो उससे शुरू हुआ। उसमें जहां तक मुझे याद है कि कफन शायद नहीं थी, सबसे चर्चित कहानियों में कफन है, पूस की रात है, लेकिन कई कहानियां थी जो बहुत चर्चित हैं और सब जानते हैं, ईदगाह जैसे महान कहानी है और ईदगाह उसमें थी। हाँ, एक कहानी और जो बहुत लोकप्रिय भी है और मुझे बहुत प्रिय है, बड़े भाई साहब, जिसमें अगर आप पढ़ें तो शिक्षा की बात है लेकिन साथ साथ मनोविज्ञान भी है, अद्भुत कहानी है। अगर इससे हम जोड़कर देखें तो मुझे एक कहानी जो बहुत प्रिय है वो गुल्ली डंडा है। इस कहानी में ये है मूल रूप से कि एक आदमी है जो अब किसी कस्बे में रहता था बचपन में, वहां उसका बचपन बीता है और अब वो बाद में उसके पिता का ट्रांसफर हो गया, वो थोड़ा ठीक ठाक समृद्ध घर का था, वो इंजीनियर बन गया और बहुत साल बाद उस अपने कस्बे में लौट गया है। अब वो याद कर रहा है तो उसमें उससे मीठी याद है वो गुल्ली डंडा के खेल की है और फिर उसके जो रोमांच का वर्णन करते हैं पर गुल्ली डंडा का पूरा जो आनंद होता है, लेकिन साथ साथ एक सामाजिक चेतना अपने आप आती है। और कहा जाता है कि हिंदी में ऐसी कहानियों की कमी है जिनमें खेल का, विज्ञान का, ऐसे विषय जो है प्रेक्षकत कम आते हैं। तो ऐसी ही अगर आप प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी, आप जो कि बड़ी काफी प्रसिद्ध कहानी है, पर उसमें जो आप याद करें कि भारतीय ढंग के शतरंज में प्यादे किस तरह चलते हैं और विलायती शतरंज में कैसे चलते हैं, इसको वो कहानी की विकास में और कहानी के मर्म के बयान में इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि सिर्फ शतरंज का ही नाम नहीं रख दिया है। ऐसी एक कहानी जो मुझे याद आती है इसमें बाल मनोविज्ञान की अगर बात करें तो रामलीला कहानी। रामलीला कहानी हमारे आज के समय में मुझे लगता है बहुत ही सार्थक और प्रासंगिक है। अब इस कहानी में क्या है कि रामलीला हो रही है। अच्छा, शुरुआत इससे होती है कि वो आदमी जो कहानी लिख रहा है वो फिर वही मामला है कि वो बूढ़ा हो चला है और लिखते हैं कि अब जब मैं लोगों को ठोटे लगाकर और हू हू करते दौड़ता हूं तो कई बार हंसी आती है, पर बचपन में लगता था कि उसका जादू था, उसका रोमांच था। और फिर लिखते हैं कि मेरे बगल वाले घर में ही वो मेकअप हुआ करता था और जिसमें वो सीता का मेकअप और तमाम देवियों का मेकअप और उनपे बुंदिया चिपकाना और रज पीस करके लगाना उनके ऊपर जो पाउडर, और मैं बहुत उत्साहित रहता था। और जब राम का सीता लक्ष्मण का रथ निकलता था तो राम के पीछे खड़े होते थे और लिखते हैं कि मुझे ये लगता था कि जो आनंद उसमें आता था वो लाठ साहब के चैम्बर में बैठकर भी नहीं आया। मतलब लाठ साहब उस जमाने में जो ब्रिटिश टाइम था, हम जानते हैं कि प्रेमचंद चले गए 8 अक्टूबर 1936 को। यहाँ तक तो कहानी बच्चे की है, लेकिन उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है कि रामलीला का मंचन हो चुका है लगभग, और अब स्थिति यह है कि उसमें चर्चा चल रही है कि जो कराने वाले लोग हैं, जो कमेटी है, जो जमींदार साहब हैं, कि चढ़ावा कम आया है तो मतलब ये कि जो मुनाफा होता था, जो कमाई होती थी रामलीला के जरिए, वो उतनी हो नहीं पाई, तो उसकी भरपाई कैसे की जाए। तो भरपाई के लिए अंत में ये होता है कि कोई नाचने वाली एक महिला है, उनको बुलाया जाता है और फिर उनको ये काम दिया जाता है कि अपनी अदाओं से आप लोगों से कुछ पैसे निकलवाइए, और वो निकलवाती हैं। और उसमें होता ये है कि बालक जो कहानी कह रहा है, इस बालक के पिता पुलिस में है और बड़े कड़क आदमी है, तो इसे भी वो मांगती है कुछ पैसे दीजिए इस तरह का, तो लोग कहते हैं कि इससे तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, तो वो बड़े गुस्से से देखते हैं और निकाल के अशर्फी दे देते हैं। इनको बड़ी शर्म भी आती है कि मेरे पिताजी जो है वो यहाँ आकर के इस तरह पैसे दे रहे हैं। अगले दिन स्थिति ये होती है कि राम, सीता और लक्ष्मण रो रहे हैं, मतलब वो बच्चे रो रहे हैं जो उनका अभिनय करते थे, और राम का अभिनय करने वाला जो बच्चा है वो उनको समझा रहा है। तो बताते हैं कि इस बार जमींदार साहब ने कुछ दिया नहीं, कहा कि बहुत कम आमदनी हुई है, आगे कभी ले जाना, रास्ते के लिए भी कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करें, कैसे जाएं सोच रहे हैं। तो ये पिताजी से पैसे मांगने जाता है कि आप 2 रुपए दे दीजिए तो उन लोगों को दे दूं, तो वो नहीं देते। अब यहाँ बाल मनोविज्ञान का एक रूप देखिए। उस दिन से मुझे अपने पिता से ऐसी चिढ़ हो गई कि जीवन में उनके किसी सीख को फिर मैंने माना ही नहीं। इससे मेरा नुकसान भी हुआ, लेकिन मेरे अंदर ऐसी एक जुगुप्सा पैदा हुई कि आप उस नाचने वाली को अशर्फी देने को तैयार थे लेकिन इन बच्चों को आप नहीं दे सके। और फिर वो कहते हैं कि मैं कहीं से, मुझे 2 आने कहीं पड़े थे या मिल गए और वो जाकर माँ से मांग के या कहीं से 2 आने दिए। यानी एक कहानी का वो एक सिरा उठाते हैं और उस सिरे से वो उसे कहाँ तक ले जाते हैं। कई कहानियां और दिमाग में घूमने लगी। प्रेरणा कहानी याद आ रही है, एक बच्चे की कहानी जिसको अपने शिक्षक से प्रेरणा मिली। ये सही है कि ज्यादा चर्चा के केंद्र में वही कहानियां रहती हैं जो बहुत चर्चित हैं और होनी भी चाहिए। मतलब यहाँ पर मैं इस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ।
1: तो जहाँ आप होनी भी चाहिए, जहाँ आप कह रहे हैं, वहाँ एक सवाल मन में आता है कि क्या जिन रचनाओं को हमने मान लिया है कि जो बहुत चर्चित हैं, बहुपठित हैं, उनमें और जो दूसरी और रचनाएं जिनका भी आप जिक्र भी कर रहे थे उदाहरण सहित, तो क्या उनमें अपने कथ में, अपने प्रभाव में या उनकी अपनी शैली में, रचने की शैली में

0: कुछ मूल अंतर है?
1: नहीं, अंतर नहीं है, विस्तार है। मुख्य बात यह है कि प्रेमचंद का एक तो विकास हुआ लगातार। प्रेमचंद ने बिल्कुल सामान्य किस्सा गोई से शुरू किया और वो निखरते चले गए। प्रेमचंद जो है उनकी जो आखिरी दौर की कहानियां हैं, कफन है या पूस की रात है, ये उनकी सबसे महान कहानियां मानी जाती हैं। उनका अंतिम पूरा जो उपन्यास है वो गोदान है, जो उनका महानतम उपन्यास माना जाता है। और सच्चाई ये है कि उनका वैचारिक विकास भी हुआ, वो एक किस्सा गोई से आगे बढ़े, अपने समय से प्रभावित थे, आदर्शवादी चेतना के साथ आगे बढ़े, हृदय परिवर्तन बहुत होता था उनकी कहानियों में। लेकिन ये है कि प्रेमचंद के यहाँ हमें क्या मिलता है, आपने पूछा, वो ये मिलता है कि जब आप कुछ कहानियों पर ही केंद्रित रहते हैं तो आपको एक वानगी मिलती है उनकी कहानी कला की, उनके सरोकारों की। जब और कहानियां पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि जीवन के इतने सारे तमाम पक्ष और हैं। प्रेमचंद उतने तक ही नहीं थे, वो सामाजिक यथार्थवाद की चेतना, सामाजिक प्रतिरोध की चेतना, बदलाव की चेतना, आजादी की लड़ाई का हिस्सा, मजदूरों किसानों के हकों के लिए लड़ने वाले। तो वो आप देखें कितनी चीजें हैं जो आपको लगता है कि बिल्कुल आपके आसपास घट रही हैं। इसको देखने के लिए आपको पढ़ना चाहिए कि कितने तरह से जीवन को उन्होंने देखा, इस पर विचार किया। प्रेमचंद ने कहा है कि सच्चा साहित्यकार स्वभावतः प्रगतिशील होता है और साहित्य जो है राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है, उनके वाक्य हैं। लेकिन यह है कि मनुष्य से और सृष्टि से बहुत गहरा और आत्मीय प्रेम किए बिना आप साहित्यकार नहीं हो सकते, कलाकार नहीं हो सकते, अच्छे मनुष्य नहीं हो सकते। और प्रेमचंद के यहाँ उनकी कहानी कला में कितने व्यापक स्तर पर, कितनी सूक्ष्मताओं के साथ हमारा संसार, हमारा जीवन मिलता है, जो तब था और जो आज 9 दशक बाद भी प्रेमचंद हमारे पुरोधा हैं और हमारी उंगली पकड़कर हमें ले चल रहे हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतने विस्तार में प्रेमचंद की कहानियों के बारे में हमारे श्रोताओं को अवगत कराया आपने।
2: ये भी प्रेमचंद, अभी आप इस विषय पर वरिष्ठ प्रसारण कर्मी, लेखक और आलोचक श्री राजीव कुमार शुक्ल से बातचीत सुन रहे थे। आपसे बातचीत कर रही थी युवा लेखिका नवोदिता मिश्रा। साथियों, प्रेमचंद का युग यकीनन वैसा ही रहा होगा जैसा उनकी कृतियों में है, पर देश को आजादी मिलते ही सब कुछ न सही पर बहुत कुछ बदला। राष्ट्रीय धारा के कवियों की चेतना प्रस्फुटित हुई। अतीत और तत्काल के महासंगम की ज्वाला ने देशभक्ति, एकता और अखंडता के नए सूत्र रचे। आइए उस धारा के महत्वपूर्ण कवि रामधारी सिंह दिनकर की राष्ट्रभक्ति और शक्ति पर एक वार्ता सुनते हैं। दिनकर राष्ट्र के हितकर वार्ताकार हैं, वरिष्ठ लेखक, स्तंभकार और प्राध्यापक डॉक्टर अवनिजेश अवस्थी।
3: भारत के स्वाधीनता संग्राम में जो भारत के और भारतीय भाषाओं के, विशेष रूप से हिंदी के कवियों ने जो योगदान दिया, उसमें एक लंबी चौड़ी सूची है। माखनलाल चतुर्वेदी हैं, सोहनलाल द्विवेदी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, और इसमें एक नाम है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का। रामधारी सिंह दिनकर न सिर्फ राष्ट्रीय भावना के कवि हैं, बल्कि उनकी वाणी में और उनकी लेखनी में जो ओज था वो अद्भुत ओज था। और मंचों पर जिस तरीके से वो कविता का गायन किया करते थे, उसमें मुझे लगता है कि शायद सचमुच लोगों की भुजाएं फड़कने लगती होंगी।
4: सुख से नहीं, विवश उड़ने के पंख नहीं होने थे, और मूक इसलिए कि उनके कंठ नहीं खुलते हैं। सोचा है यह कभी कि गूंगापन कैसी पीड़ा है, भीतर भीतर दर्द भोगना लेकिन बटा न पाना, उसे किसी से कहकर मेरे मन को चोट लगी है। बोल नहीं सकता जो उसका भी दुख कोई दुख है, कितने लोग समझते हैं आशा उदास आंखों की।
3: आप लोगों को हैरत होगी कि रामधारी सिंह दिनकर 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो बारदोली में किसान आंदोलन कर रहे थे, उसके संदर्भ में उस समय जब विजय संदेश रामधारी सिंह दिनकर कविता लिखते हैं, तो उस कविता को पढ़ करके आज भी भुजाएं फड़कने लगती हैं। और वो दृश्य सामने आ जाता है कि जब सरदार पटेल ने बारदोली के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था और उसमें ब्रिटिश सरकार को पराजय का मुंह देखना पड़ा था। मैं आपको उनकी 4 लाइनें सुना सकता हूँ और अद्भुत आपको आनंद आएगा उस कविता को सुनने में। तेग तोप तलवार उधर थी, इधर निरीहों की थी आह, उधर मिटा देने की धुन थी, इधर प्रबल मिटने की चाह, इधर उठी हुंकार सृष्टि सारी वह डावा डोल हुई, प्रलय कारणी ध्वनि जनसत्ता की अतिशय अनमोल हुई, ठोक ताल दुंद भी बजा शासन की हस्त हिलाई है, वीर बार डोली वालों की गाओ विजय बधाई है। निरे निहत्थे हैं पर क्यों डर जाएं तेरी फटकारों से, गगन गूंज जाएगा

0: भीषण सहस हुंकारों से। दमन जेल से डरे कौन, पाशवी शक्ति में क्यों भूला, भारतीय बच्चे झूलेंगे फांसी का प्यारा झूला। बलिवेदी पर चढ़कर जग में अनुपम कीर्ति कमाई है, वीर बारदोली वालों की गाओ विजय बधाई है। और एक कविता नहीं, उनकी लंबी कविताओं की ऐसी सूची है जो बार बार जहां पर वो इस तरीके की बात करते हैं। और जिस तरीके से फांसी के फंदों पर झूल जाने वाले हमारे क्रांतिकारी थे, शहीद थे, उनके लिए ये कविताएं एक ऐसा संजीवनी का काम करती थीं कि उन कवियों की कविताएं पढ़ करके लोग भारत के स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़ते थे। रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मि रथी जैसी काव्य कृति लिखी। और न सिर्फ राष्ट्र के स्तर पर, वो जिस तरीके से समाज में भी बात करते हैं, जाति जाति रटते केवल जिनकी पूंजी पाखंड, मैं क्या जानूं जाति जाति हैं ये मेरे भुजदंड। एक कविता और मैं आपको सुनाना चाहूंगा, 1945 में ये कविता लिख रहे हैं। हा भारत की लाल भवानी, जवा कुसुम के हारों वाली, शिवा रक्त रोहिणी वसना कबरी में लाल सितारों वाली, कर में लिए त्रिशूल कमंडल, दिव्य शोभनी सुरसर स्नाता, राजनीति की अचल स्वामिनी, साम्य धर्म ध्वज धर की माता। भारत भूमि के मिट्टी से श्रृंगार सजाने वाली, चढ़ हिमाद्री पर विश्व शांति का शंख बजाने वाली। 1945 के आसपास ना एक बहुत बड़ा ये चल रहा था कि राष्ट्रीयता क्या होती है, और राष्ट्रीयता कहीं अंतर्राष्ट्रीयता में बाधित तो नहीं होती। इसलिए रामधारी सिंह दिनकर भारत भूमि पर भारत के स्वाधीनता आंदोलन की आवाज बुलंद करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को उस देश के रूप में स्थापित करते हैं जो विश्व शांति की बात करता है। जिस समय भारत परतंत्र था उस समय ये बात कहना बड़ा मुश्किल था, लेकिन दिनकर जी ने बात कही। जयप्रकाश नारायण रामधारी सिंह दिनकर जी से बहुत अधिक प्रभावित थे। उस समय उनकी कविता बड़ी प्रसिद्ध हुई, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दिनकर जी ने कुछ साम्यवादी स्वभाव की भी कविताएं लिखी और गांधी जी पर भी कविताएं लिखी उन्होंने, लेकिन खुद उन्होंने कहा ये कि मैं जीवन भर गांधी और मार्क्स के बीच में झटके खाता रहा हूं, इसीलिए उजले को लाल से गुणा करने पर जो रंग बनता है वही रंग मेरी कविता का रंग है, वही रंग केसरिया रंग, वो रंग, उन्होंने कहा। और स्वयं ये किसी आलोचक ने नहीं कहा, किसी दिनकर जी के पाठक ने नहीं कहा, स्वयं दिनकर जी स्वीकार करते हैं। 1965 के युद्ध के समय सैन्य शिविरों में वो कविताएं गाई जाती थी, और दिनकर की अन्य कविताएं जो हैं सैनिकों के लिए शिविरों में, वहां के आम आदमी जो थे, जब गांवों से सेनाएं निकलती थी तो दिनकर जी की कविताएं गा गा करके सैनिकों का उत्साह बढ़ाया जाता था। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनको रश्मि रथी पूरी याद है, परशुराम की प्रतीक्षा से वो उद्धृत करते हैं, क्षमा क्षोभती उसी भुजंग को जिसके पास गरल हो। ये कविता की लाइन ऐसी है जो आम तौर पर तब से पिछले 50-60-70-80 वर्षों से लेकर के आज तक जो है लगातार उद्धृत की जाती है, मुहावरा बन गई है, अपनी बात को कहने का अंदाज बन गया है। दिनकर जी की कविताएं जो है, श्वानों को मिलता दूध दही, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, ये कविता की पंक्तियां ऐसी हैं जो आम आदमी के मुंह पर, आम आदमी की जुबान पर आती हैं। अपनी बात को कहने के लिए दिनकर जी की पंक्तियों का उदाहरण देकर के जिस तरीके से अपनी बात को यहां पर पुष्ट किया जाता है या स्पष्ट किया जाता है, यह वास्तव में कवि दिनकर की वो सार्थकता है या वो उनकी सफलता है जो शायद हर कवि को नहीं मिलती। दिनकर जी की बहुत प्रसिद्ध कृति है उर्वशी, अपने समय का सूर्य हूं मैं। जब दिनकर जी इस तरीके की पंक्ति पढ़ा करते थे तो समूचा मंच जो है अनगिनत तालियों से भरा रहता था। एक लंबी उनका काव्य नाटक जिसमें चंद्रगुप्त के बारे में है, सेल्यूकस का उदाहरण देते हैं वो कि सेल्यूकस आपने आकर के हमें बहुत अच्छा किया कि हमें अपने आत्मगौरव का भान करा दिया। वो लिखते हैं, भारत भूमि है एक हिमालय से आसेतु निरंतर, पश्चिम में कंबोज कपिश तक उसकी ही सीमा है, किया कौन अपराध गए जो हम अपनी सीमा तक, अनाहूत हमसे लड़ने को क्यों सेल्यूकस चढ़ आया, मदोन्नमत यूनान जानता था न मगत के बल को, समझा था वह हमें छिन्न शायद पुर के कैसा, वह कलंक का पंख आज धुल गया देश के मुख से, हम कृतज्ञ हैं सेल्यूकस ने अवसर हमें दिया है। दिखा दिया पूरे विश्व को भारत के उस आत्मगौरव का व्यक्त करने का अवसर दिया सेल्यूकस ने। वीर सिकंदर के गौरव का प्रतिभू सेल्यूकस था, आज खड़ा है वह विपन्न आहत सा मगध सभा में, उस बलिष्ठ शार्दूल सदृश निष्प्रभ हत तेज अकिंचन, पर्वत से टकराकर जिसने नखरद तोड़ लिए हों, उस भुजंग सा जिसकी मणिमस्तक से निकल गई हो। तो ये है रामधारी सिंह दिनकर।
1: दिनकर राष्ट्र के हितकर। अभी आप ये वार्ता सुन रहे थे वरिष्ठ लेखक, स्तंभकार और प्राध्यापक डॉक्टर अवनिजेश अवस्थी की इस वार्ता के साथ ही हम अमित घोष, उमा शंकर जोशी, अजीत कुमार, महाश्वेता देवी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, गोपाल दास नीरज, कुंवर बेचैन, कन्हैया लाल नंदन की स्मृति को नमन करते हुए आपसे यही विदा लेते हैं। वाचन स्वर नीलम मलकानिया, प्रस्तुति सहयोग वंदना, आलेख और प्रस्तुति राम अवतार।

0: ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज रात प्रस्तुत है ख्याल गायन। कलाकार हैं पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय। किराना घराना के दिग्गज कलाकार उस्ताद अब्दुल करीम खां और उस्ताद वाहिद खां का हाथ थाम कर जिस सांगीतिक विरासत की शुरुआत हुई थी उसने युगों का सफर तय किया और आज इसे आगे बढ़ाने वाले गुणी कलाकारों में पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय का नाम बड़े अदब से लिया जाता है। कोलकाता के निकट स्थित उपनगर बोशीरहाट में जन्मे और संगीत के माहौल में पले बढ़े पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय ने अपने पिता संगीताचार्य श्री अरुण कुमार चट्टोपाध्याय से महज 5 वर्ष की आयु में संगीत सीखना आरंभ किया। आगे चलकर आपने पंडित ए कानन, विदुषी मालविका कानन और उस्ताद मशकूर अली खान जैसे प्रख्यात कलाकारों से शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण प्राप्त किया। पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय ने बड़ी ही छोटी उम्र में मंच पर कदम रखा। केवल 7 वर्ष की आयु में सन 1979 में कोलकाता में आयोजित सुरेश संगीत सम्मेलन में उस्ताद अमजद अली खान के साथ आपको कार्यक्रम प्रस्तुत करने का सुयोग प्राप्त हुआ। आकाशवाणी और दूरदर्शन के टॉप ग्रेड के कलाकार होने के साथ साथ आप संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के तहत ICCR के सूचीबद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ भी हैं। आज की पीढ़ी के सुविख्यात ख्याल गायकों की श्रेणी में आपका नाम शामिल है। किराना घराना की पारंपरिक पहचान को अक्षुण्ण रखते हुए पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय अपनी ख्याल और ठुमरी की प्रस्तुतियों में अद्भुत सुंदर गायकी का मिश्रण करते हैं जो आपकी पेशकश को रंगदार और लोकप्रिय बनाता है।
1: Tonight in the National Program of Music, we present Khayal Recital by Pandit Arnob Chattopadhyay, the musical heritage initiated by Ustad Abdul Karim Khan and Ustad Abdul Wahid Khan. The doins of Kirana Gharana has meandered through the ages and is still survived by a few vocalists such as Pandit Arnob Chattopadhyay. Born and groomed in a musical ambience in the suburban town of Boshirhat near Kolkata, Pandit Arnob Chattopadhyay was initiated into the world of music at a tender age of 5 years by his father, Sangeetacharya Sri Arun Kumar Chattopadhyay. Later, he was trained in classical music by such stalwarts as Pandit A. Kanan, Vidushi Malavika Kanan and Ustad Mashkur Ali Khan. Pandit Arnob Chattopadhyay flowered into a young performer very early in his life. At the age of 7 only, he shared the stage with Ustad Amzad Ali Khan at the Suresh Sangeet Sammelan, Kolkata in the year 1979. A top-grade artist of Akashvani and Doordarshan and an empaneled Hindustani classical music artist at ICCR, Ministry of Culture, Government of India, Pandit Arnob Chattopadhyay is one of the most acclaimed vocalists of the present generation. While maintaining the pure tradition of Kirana Gharana, Pandit Arnob Chattopadhyay is known for mixing the other forms of Gayaki both in Khayal and Tumri presentations, which makes his renditions quite colorful and popular.
0: Aaj raat Pandit Arnob Chattopadhyay ke saath sangat karenge तबले पर इमोन शौरकार, हारमोनियम पर कमलाक्ष मुखोपाध्याय और तानपुरा पर कोयल शाह।
1: Tonight, Pandit Arnob Chattopadhyay is accompanied on the tabla by Imon Sarkar, on the harmonium by Kamalaksh Mukhopadhyay and on the tanpura by Koel Saha.
0: ख्याल गायन के इस कार्यक्रम की शुरुआत पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय राग यमन के साथ करेंगे। यह बंदिश पूर्वार्ध में विलंबित एक ताल, तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: Pandit Arnob Chattopadhyay begins his Khayal recital with Rag Yaman. The composition is set to Vilambit Ektal, followed by Drut Tiktal.

0: ख्याल गायन के अंतर्गत आप पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग यमन सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग हमीर। यह बंदिश पहले मध्य लय तीन ताल, तत्पश्चात द्रुत एक ताल में आबद्ध है।
1: यू वर लिसनिंग टू राग यमन इन द ख्याल रिसाइटल बाय पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय। ही नाउ प्रेजेंट्स राग हमीर, द कंपोजिशन ऑफ विच इज सेट टू मध्य लय तीन ताल, followed by Drut Ek Tal.

0: पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग हमीर सुन रहे थे। ख्याल गायन की इस प्रस्तुति का समापन आप राग वाचस्पति के साथ करेंगे। यह बंदिश मध्य लय तीन ताल और द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: यू वर लिसनिंग टू राग हमीर। पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय कंक्लूड्स हिज ख्याल रिसाइटल विद राग वाचस्पति। The composition of the rag is set in Madhyalaya Teen Taal and Drut Teen Taal.

0: खयाल गायन के इस कार्यक्रम में आप पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग वाचस्पति सुन रहे थे। आपके साथ संगत कर रहे थे तबले पर इमोन सरकार, हारमोनियम पर कमलाक्ष मुखोपाध्याय और तानपुरा पर कोयल शाहा। और इसी के साथ आज रात संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।
1: यू आर लिसनिंग टू राग वाचस्पति इन द खयाल रिसाइटल बाय पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय। He was accompanied on the tabla by Imon Sarkar, on the harmonium by Kamalaksha Mukhopadhyay, and on the tanpura by Koel Saha. And with this, we come to the end of National Program of Music Tonight. This program was recorded at the studios of Akashvani, Kolkata.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय

0: सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष देश के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के माध्यम से मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयातुल्ला सैयद अली खामनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। वैभव सूर्यवंशी 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renuka. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test OSAT plant in Sanand, Gujarat. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnaw and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Earlier, Prime Minister Modi inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth over 1,05,000 crore rupees in Rajasthan. During his day-long visit, the Prime Minister inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport. Addressing the program, the Prime Minister said the conflict in West Asia had triggered the biggest energy crisis of the 21st century, but India successfully overcame the challenge through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources.
0: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
2: Mr. Modi also handed over appointment letters to around 54,000 youth recruited across various departments of the government of Rajasthan. Home Minister Amit Shah called the inauguration of the new CG Semi OSAT facility and India's new leap towards self-reliance in technology. In a social media post, Mr. Shah said the new facility will further invigorate Gujarat as the country's growth engine and open vast employment opportunities for youth. Prime Minister Modi will be on a six-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand from Monday. At the invitation of Indonesian President Prabowo Subianto, Prime Minister Modi will undertake a state visit to Indonesia from the 6th to 8th of this month. This will be Mr. Modi's fourth visit to Indonesia and his first bilateral visit since India-Indonesia relations were elevated to a comprehensive strategic partnership in May 2018. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will be on an official visit to Qatar, Bahrain, Kuwait and Oman from tomorrow till 10th of this month. During the visit to these countries, Dr. Jaishankar will be meeting with his counterparts and the leadership. The Ministry of External Affairs said the visit will focus on enhancing India's bilateral relations with the countries and also provide an opportunity to exchange views on regional developments and issues of mutual interest. The monsoon session of the Parliament will commence on 20th of this month. It will continue till 13th of August. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju today informed that President Draupadi Murmu has approved the proposal of the government to convene the monsoon session of Parliament from 20th of July. Mr. Rijiju said the session will focus on meaningful debate, discussion and decisions on issues of national importance. Industry experts have said that ethanol blending program has not been introduced overnight but has been implemented through a measured, step-by-step and scientifically driven process. Addressing a press conference in New Delhi, former chairman and managing director of Engineers India Limited, Vartika Shukla said that ethanol blending program was placed in the public domain for a structured discussions and stakeholder consultations in 2018.
3: The ethanol blending program, particularly in 2018, it was in a structured manner put out for discussion and deliberation by all stakeholders. It is supported by scientific evidence, extensive testing by the automotive manufacturers and the agencies who support them, namely the Automotive Research Association of India. And also it is in line with the global best practices which is followed to green the fossil fuels to lower the carbon emissions.
2: In men's cricket, England defeated India by 4 wickets in the second T20 international of the 5-match series at Old Trafford in Manchester. India set a target of 191 runs for England. In reply, England scored 191 runs for 6 in 19 overs. Opting to bat first, India posted 190 runs for the loss of 7 wickets in the allotted 20 overs. Jacob Bethel was declared player of the match. And that's the end of this news bulletin.
4: Medium wave 314.47 meter, yani 954 kilohertz per. हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। हमारी दूसरी सभा के प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। प्रातःकालीन सभा में सुबह सवेरे 5:55 पर हम पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।